यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि तदनुसार 11 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 10 सेकेंड्स हुए हैं। अब आकाशवाणी शिवपुरी से प्रसारण आरंभ होता है।

0: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल

0: यह संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं मातृवंदना से। हम अपनी मातृभूमि को सादर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और देश की वंदना करते हैं।

श्रोताओं, समूह स्वर में भी आप सुन रहे थे ये मातृ वंदना, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं ये भजन। लीजिए।

पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। श्रोताओं, आपको बता दें कि भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। सावनी शिंदे की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं ये भक्ति गीत।

श्रोताओ, तकनीकी खराबी के कारण हम ये भजन आपको ठीक तरह से नहीं सुनवा सके, इसका हमें खेद है। हरिओम शरण की आवाज में एक भजन आपको सुनवा रहे हैं, लीजिए।

0: हरिओम शरण के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओ, समय है कार्यक्रम चिंतन का, और चिंतन कार्यक्रम में आज का विषय है अतिथि। आलेख डॉक्टर उमाशंकर नगाइच का है और वाचक हैं श्री अरविंद सोनी। लीजिए सुनिए।
1: भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के समान माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, अतिथि देवो भव, अतिथि तुम्हारा देवता है। अर्थात अतिथि को देवता के तुल्य सम्मान दो। तैत्तरीय उपनिषद में माता पिता एवं आचार्य के साथ साथ अतिथि को भी देवता के समान सम्मान देने का उपदेश दिया गया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव एवं अतिथि देवो भव। अतिथि में तिथि शब्द आया है, आ धन तिथि, आ यानी नहीं, तिथि दिन या समय, अर्थात जिनके आने की कोई तिथि दिन या समय निश्चित या पूर्व निर्धारित न हो, वो अतिथि हुआ जो अचानक अकस्मात उपस्थित हो जावे। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में इस विषय का विस्तृत विवेचन करते हुए लिखा है, अतिथि उसको कहते हैं जिसकी कोई निश्चित तिथि न हो। अथर्व वेद में कहा गया है, एशवा अतिथिर्यच्छो त्रियस्तस्मात् पूर्वो नाशनीयात्, अतिथि वेद विद ब्राह्मण के तुल्य है, इसलिए उससे पहले गृहस्थ को भोजन नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार, संप्राप्ताय त्वतिथये प्रदद्यादासनोद के अन्नम चैव यथाशक्ति संस्कृत्य विधिपूर्वकम् तृणानि भूमि रुदकम् वाक चतुर्थी च सुनृता एतान्यपि सताम गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। मनुस्मृति के अनुसार आए हुए अतिथि के लिए यथाशक्ति आसन, जल और अन्न सत्कृत करके विधि पूर्वक दें। तृणासन विश्राम के लिए स्थान, जल और मीठा बोल, इन चार बातों की कमी तो सत्पुरुषों के घर में कभी नहीं होती। कठोपनिषद में अतिथि सत्कार के महत्व का प्रतिपादन करते हुए आचार्य यम की पत्नी उनसे कहती है, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम चा इष्टापूर्ते पुत्र पशुंश्चा सर्वान एतद् व्रंगते पुरुषस्याल्प मेधसो यस्या नश्नन वसति ब्राह्मणो गृहे। घर आए अतिथि का समुचित आदर सत्कार न होने पर मनुष्य की आशा, अज्ञात प्राप्त वस्तु की चाहना, प्रतीक्षा ज्ञात प्राप्य वस्तु की चाहना, संगतम सत्संगति से प्राप्त होने वाला फल, सुनृताम प्रिय वचन बोलने का फल, इष्ट यज्ञ का सुफल, आपूर्त समाज के कल्याणार्थ किए कर्मों का फल, संतान और पशु आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर यमाचार्य ने अपने घर पर 3 दिन तक भूखे रहने वाले

0: ब्राह्मण अतिथि को प्रसन्न करने के लिए नचिकेता को 3 वर मांगने के लिए कहा। इस पर नचिकेता ने यमाचार्य से पितृदोष, स्वर्ग सुख की साधना तथा आत्मज्ञान के लिए 3 वरों की याचना की। गृहस्थ व्यक्ति से अन्न, जल एवं आवास आदि सुविधाओं का लाभ लेने वाले अतिथि का अनिवार्य कर्तव्य सुनिश्चित करते हुए कहा गया है कि यदि अतिथि गृहस्थ के घर 1 दिन या रात्रि विश्राम करे व अन्न जल का सेवन करे, तब उस सद्गृहस्थ की कल्याण कामना करते हुए उसे सत्य एवं धर्म युक्त ज्ञान का उपदेश अवश्य करें, अन्यथा वो अतिथि पाप का भागी होगा। भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार को यज्ञ के समान पुण्य कर्म माना गया है। अकस्मात घर पर आ जाने वाले अतिथि का सेवा सत्कार करना अतिथि यज्ञ कहलाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में अतिथि यज्ञ का विस्तृत विवेचन करते हुए कहा है, अब 5वां अतिथि यज्ञ अर्थात जिसमें अतिथियों की यथावत सेवा करनी होती है उसको लिखते हैं। जो मनुष्य पूर्ण विद्वान, परोपकारी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, सत्यवादी, छल कपट रहित और नित्य भ्रमण करके विद्या धर्म का प्रचार और अविद्या अधर्म की निवृत्ति सदा करते रहते हैं, अतिथि कहते हैं। इस प्रकार भारत की सांस्कृतिक परंपरा में अतिथि सत्कार को यज्ञ के समान पुण्य कर्म एवं अतिथि को देवता के समान मानते हुए कहा गया है, अतिथि देवो भाव।
1: अतिथि विषय पर आज आप सुन रहे थे आज का चिंतन। आलेख डॉक्टर उमाशंकर नगाइच का था और वाचक थे श्री अरविंद सोनी। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस पाठ। स्वर दे रही हैं अनुराधा।

गरुड़ की जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से काकभुशुंडी ने विस्तार से सतयुग, त्रेता और द्वापर में सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों की व्याख्या की। फिर अयोध्या के शूद्रकुल में कलयुग का अपना वो अनुभव सुनाया जब भीषण अकाल पड़ा था और जिससे त्रस्त होकर वो उच्च

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ, स्वर दे रही थी अनुराधा पौडवाल। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कृषि सामयिक के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं टमाटर में संतुलित उर्वरक उपयोग। इस विषय पर डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह से जानकारी लीजिए, सुनिए।
1: नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे शिवपुरी जिले में टमाटर एक प्रमुख सब्जी वाली फसल है जो खरीफ सीजन में लगाई जाती है और ये लगभग 7 से 8 महीने तक चल जाती है यहाँ। तो इस एक लंबी अवधि वाली फसल होने के नाते इसमें जो उर्वरक प्रबंधन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अन्य विषयों के साथ जैसे आपको कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन या जल प्रबंधन करना रहता है, उसी तरह उर्वरक प्रबंधन भी बहुत आवश्यक विषय है। और इसके लिए किसान भाई एक तो अपनी मिट्टी का नियमित जांच करवाते रहें, उसमें जो पोषक तत्व की उपलब्धता है और उसका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का मतलब है कि उसमें कार्बन की उपलब्धता है, इसे पीएच मान है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता है, वो इस सब चीज़ों को भी समय समय पर जानकारी लेते रहें किसान भाई, जो मृदा परीक्षण के माध्यम से जाना जा सकता है या उसकी जानकारी रखी जा सकती है। लेकिन सामान्य एक जो रिकमेंडेशन है टमाटर में 100-50-50 का एक रिकमेंडेशन आता है जो एनपीके का होता है। इसके अलावा एनपीके के अलावा उसमें और कई महत्वपूर्ण जो दूसरे तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी भी आवश्यकता होती है, जिनके अभाव में फल में विकृतियाँ या कई तरह की समस्याएँ आ सकती हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि किसान भाई मृदा परीक्षण करवा के अपनी मृदा की जाँच जो रिपोर्ट है उसको रखें और जानकारी रखें कि उसमें किन पोषक तत्वों की उपलब्धता है, किनकी कमी है और कैसा है, उसी के अनुसार जो हम ना पोषक तत्वों का जो प्रबंधन करें। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर आप एक संतुलित प्रयास करते हैं या समन्वित उर्वरक प्रबंधन का प्रयास करते हैं तो उसमें जो जैविक खाद है उसका भी प्रयोग करें जो मृदा के स्वास्थ्य को सुधारता है और कार्बन के तत्व को बढ़ाता है मिट्टी में। उसके कारण जो है ना बहुत सारे जो सूक्ष्मजीवी गतिविधियां हैं वो बढ़ जाती हैं और जो अन्य पोषक तत्व हैं उनका उपलब्धता को भी बढ़ाते हैं। तो जो कार्बन तत्व है उसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। और ये टमाटर की बात कर रहा हूँ लेकिन टमाटर के अलावा जो भी फसल है सभी फसलों के लिए आवश्यक होता है कि हमारी जमीन में कार्बन तत्व पर्याप्त मात्रा में हो, यानी 0.5 से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और ये समस्या देखी जा रही है कि वर्तमान में कई जमीन में कई खेतों में जो कार्बन की मात्रा है 0.5% से कम हो रही है, तो एक समस्या है। तो टमाटर में भी इसको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके अलावा देखना पड़ेगा कि जैसे टमाटर की फसल होती है वो उसकी 2-3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले टमाटर को हम नर्सरी तैयार करते हैं या नर्सरी क्रय करते हैं, मान लीजिए कि हम नर्सरी खुद स्वयं अपनी तैयार कर रहे हैं तो एक पहली अवस्था हो गई। यहाँ जो है लगभग अगर हम फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, जो कम ग्रेड के फर्टिलाइजर होते हैं जैसे 10-10-10 या 5-5-5 जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की कम मात्रा होती है, उनका उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसे जो प्रारंभिक अवस्था में पोषक तत्वों की बहुत कम आवश्यकता होती है तो इस तरह से कम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है वो वृद्धि अवस्था आती है। वृद्धि अवस्था का मतलब होता है ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद जो फ्लावरिंग अवस्था आने तक की जो अवस्था होती है, ये इसमें सबसे ज्यादा जो ऊपर का विकास होता है वैसे ही जमीन के अंदर जड़ों का विकास होता है। तो जड़ों के विकास के अवस्था में जो फास्फोरस तत्व होता है उसका पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक होता है। तो किसान भाई जिस भी तरीके से हम फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, मुख्य रूप से जिसे केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, तो जो बेसल उपयोग करते हैं जब फसल लगाते हैं उस समय देते हैं, या टॉप ड्रेसिंग करते हैं, या कि आप जैसे हाईटेक एग्रीकल्चर में जा रहे हो, जैसे आपने ड्रिप करवा रखी है, मल्चिंग करवा रखी है, तो ड्रिप के माध्यम बेंचुरी के माध्यम से भी हम फर्टिलाइजर देते हैं। तो देखें इस अवस्था में जो है ना फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा जानी चाहिए जिससे जड़ों का अच्छा विकास हो, और जब जड़ों का विकास अच्छा होता है तो पौधे का विकास भी अच्छा होता है। उसमें उसके बाद की जो गतिविधियां हैं फसल की जैसे फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और ये सब चीज़ें, तो अच्छा होता है। लेकिन इसके बाद जब तीसरी अवस्था आती है कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मैच्योरिटी, जब फल की वृद्धि होती है, उस अवस्था में पोटास की आवश्यकता ज़्यादा होती है। देखें जैसे मिट्टी में जितना पोटास है उसके हिसाब से टमाटर को पोटास ज़्यादा लगता है, तो पोटास की कमी नहीं होनी चाहिए। इससे जो है ना आपके फल ज़्यादा बनेंगे, अच्छे बनेंगे और उसमें चमक शाइनिंग रहेगी, उससे आपको बाजार में कीमत भी अच्छी मिलेगी। इसके अलावा जो अन्य मुख्य पोषक तत्वों के अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरान, ये तीन तत्व भी होते हैं जो टमाटर के लिए आवश्यक होते हैं। और अगर ये आपकी मिट्टी परीक्षण में जानकारी है कि इन पोषक तत्वों की कमी है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो मिक्सर आते हैं बाजार में मिल जाते हैं, उनका उपयोग भी आप ड्रिप के माध्यम से कर सकते हैं या स्प्रे भी किया जा सकता है। इनका जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनका फोलियर एप्लीकेशन भी किया जा सकता है, इससे आपकी फसल जो है ना स्वस्थ बनी रहेगी और उसमें फल भी अच्छे लगेंगे, जिसकी मार्केट में कीमत अच्छी मिल सकती है।
0: टमाटर में संतुलित उर्वरक उपयोग, श्रोताओं इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह से जानकारी, और इसके साथ ही कृषि समय की कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। श्रोताओं समय है कार्यक्रम विवरण का, जानकारी लीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आपको सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। श्रोताओं अब से कुछ देर बाद सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय एकता विषय पर लघु वार्ता हिंदोस्तान हमारा। फिल्म संगीत सुनिएगा आज सुबह 7:20 पर। आज सुबह 7:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी शिवपुरी का विशेष सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। आज सुबह 9 लोक संगीत के कार्यक्रम लोकरंग में हम आपको सुनवाएंगे हरगोविंद कुशवाहा और रंजना तिवारी पुरोहित के गाए लोकगीत। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे आज सुबह 9:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा आज सुबह 10:05 पर और फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा आज सुबह 10:30 पर। श्रोताओं शाम 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे करें योग रहें निरोग और दूषित जल के सेवन से बचें, इन दो विषयों पर बातचीत सुनी जा सकती है। आज शाम 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मोटे अनाजों की खेती से उठाएं लाभ, भूमि कटाव को कैसे रोकें और सेवा के 12 साल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इन विषयों पर बातचीत सुनी जा सकती है। इसके अलावा आज हम आपको सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता, विषय होगा मत्स्य संपदा योजना से किसानों को लाभ। विषय एक बार फिर सुन लीजिए मत्स्य संपदा योजना से किसानों को लाभ। इस विषय पर पूजा श्रीवास्तव से डॉक्टर समर्थ अग्रवाल की बातचीत। श्रोताओं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आज हम पुनः प्रसारण करेंगे। श्रोताओं अब आपको उन कार्यक्रमों की जानकारी दिए देते हैं जिनका हम अनुप्रसारण करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आज सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे आज सुबह 10:00। आज दिन में 1:00 होगा महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:00 कार्यक्रम युववाणी। श्रोताओं महिला कार्यक्रम, लोक संगीत, सुगम संगीत और कार्यक्रम युववाणी ये आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। आकाशवाणी दिल्ली से रिले कार्यक्रम सुनिएगा आज शाम 6:10 से शाम 6:30 तक। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदेहल्याः राष्ट्रपतिभवनस्य सांस्कृतिक केन्द्रे नीति आयोगस्य एकादशे शासी परिषदोपवेशने अध्यक्षतां विधास्यति। विकसित भारताय प्रधानमन्त्रिणः टीम इंडिया इति संकल्पानुगुणम् अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारतम् @2047 इत्यस्य कृते समावेशी मानव विकासः इन्क्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047 इति अस्ति। विषयोयम् आयु क्षेत्र लिंग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिकायाः भेदं विनैव प्रत्येकं भारतीयस्य कल्याणाय विकासाय च केन्द्रीकृतो वर्तते। उपवेशनेऽस्मिन् अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये दृष्टिं समेत्य देशस्य प्रत्येकं नागरिकं प्रति अस्य सुदृढमापनयोग्यपरिणामेषु परिवर्तनस्य विषये गभीरं मन्थनं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः केन्द्रशासित प्रदेशानाम् उपराज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य 44,00,000 नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं एनडीए सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: अस्मिन् अवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्णविश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दनसन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन इटलीदेशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी जर्मनीदेशस्य चान्सलर फेडरिक मोर्स इज़राइलदेशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू कनाडादेशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरियादेशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुखवैश्विकनेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनम् प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः

0: घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः अष्टोत्तरैकशत प्रसिद्धाः कलाकाराः चतुर्विंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य अथ च पञ्चविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री

0: जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए राष्ट्रीय एकता विषय पर लघु वार्ता हिंदोस्ता हमारा। श्रोताओं, हमारे देश की भाषा और संस्कृति को राष्ट्रीय एकता का आधार स्तंभ माना जाता है और इसके अभाव में हमारी जो राष्ट्रीय एकता है वो कभी भी स्थायी नहीं हो सकती। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि न जाने कितने पराक्रमी शासक इस देश को एकताबद्ध करने में असमर्थ रहे, क्योंकि उन्होंने कभी भी राष्ट्रीय भाषा के सिद्धांत को नहीं अपनाया। केवल सम्राट अशोक के काल में थोड़ा सा प्रयास किया गया, परंतु वह भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका और इसके परिणाम स्वरूप बल से स्थापित शासन बार बार टूटते रहे। उस कारण से देश में स्थायी एकता नहीं आ सकी। श्रोताओं, भारत में हमें जो भी भावात्मक एकता दिखाई पड़ती है उसका कारण है हमारी सांस्कृतिक एकता। भारत में स्थापित चार धाम और भारतीयों द्वारा सफल जीवन के लिए उसकी यात्रा की अनिवार्यता का नियम ही इस एकता के लिए जिम्मेदार है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अंग्रेजों ने केवल भाषा और संस्कृति के बल पर विश्व पर शासन किया और जैसे जैसे उनके उपनिवेशों में स्थानीय भाषाएं और सांस्कृतिक जागरूकता पनपी, वैसे वैसे वो स्वतंत्र और संप्रभु राज्य बनकर खड़े होते गए और अंग्रेज साम्राज्य ढहता चला गया। श्रोताओं, जैसे हम अपने देश के कुछ रचनाकारों की, साहित्यकारों की बात करें तो बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा। अमीर खुसरो साहब की हम एक बात करते हैं, वे अपनी रचनाओं के माध्यम से जनता से सीधे जुड़े हुए थे। उनकी विनोदी प्रकृति, उनकी हसमुख प्रकृति जो थी वो सबके साथ घुल मिलकर एक हो जाती थी, सबके मन की बात कहते थे। कुछ इस प्रकार की कहावत है या कुछ इस प्रकार का प्रसिद्ध है कि एक बार वह घूमते घामते दिल्ली शहर के बाहर पहुंच गए थे। प्यास लगी थी, पास के पनघट पर जाकर पानी मांगा। पानी भर रही रमणियों में से एक ने कहा, खीर पर कविता सुनाइए तो पानी पिलाऊंगी। दूसरी बोली, चरखे पर कुछ सुनाइए तो पानी पिलाऊंगी। इसी प्रकार किसी ने कुत्ते पर और किसी ने ढोल पर कविता सुनाने को कहा। अमीर खुसरो ने देखिए, साहित्यकारों की, कवियों की, लेखकों की विशेषता देखिए। अमीर खुसरो साहब ने तुरंत सारी पानी भर रही रमणियों को जवाब दिया। उन्होंने कविता सुनाई, कहा कि खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। तो श्रोताओं, ये बहुत सारी कविताएं, कहानियां हमारे साहित्यकारों के द्वारा कही गई, कुछ रचनाएं, कुछ बातें, कुछ एक ऐसा प्रसंस्करण है, एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है अंदर से जो हमें राष्ट्रीय एकता के भाव को मजबूत करने में सहायक होती है। आपको कबीरदास जी की एक लाइन सुनाता हूं। कबीरदास जी ने क्या है कि भावात्मक एकता की प्राप्ति हेतु वंशगत, धर्मगत, जातिगत, रूढ़िगत और संप्रदायगत और शास्त्रगत अंधविश्वास के जाल को छिन्न भिन्न करके मानव में मानव के प्रति प्रेम भावना को जागृत किया। उन्होंने पूरे जन सामान्य के कल्याण की कामना की और कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू ते दोस्ती और ना काहू से बैर।

अंतर, द्वेष और भेद आदि का जन्म होता है गतानुगति और अंधविश्वास से। यदि ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो सारा द्वंद ही मिट जाएगा, क्योंकि उस प्रकाश में ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना कोई भला ना कोई मंदा, सब एक समान है। तो श्रोताओ, और वहीं पर पार्षद कृत एक झंडा गीत है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हम यही कामना करते हैं, अपने सभी श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि आपसी प्रेम और विश्वास के दम पर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करें। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय एकता विषय पर लघु वार्ता हिंदुस्तान हमारा। इस समय सुबह के 7:10 होने को है। कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आज नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा, देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दौरान कल विदेशी मेहमानों ने किया ग्रामीण हाट का दौरा। और प्रदेश के ग्वालियर और जबलपुर समेत 34 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए टीम इंडिया के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे, जो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिनमें आधारभूत मानव पूंजी, भविष्य के लिए आवश्यक कौशल विकास, उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकरण विकास, स्वास्थ्य, पोषण और जन कल्याण तथा सभी के लिए समानता और गरिमा सुनिश्चित करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और एनडीए ने हमेशा राष्ट्र के विश्वास को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है, देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: इसके पूर्व एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। सम्मेलन में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के प्रमुख नेता, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर भी चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भावनात्मक पत्र लिखा है। डॉ यादव ने इस विशेष उपलब्धि पर श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण, अधोसंरचनात्मक विकास तथा देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को मिले अभूतपूर्व सहयोग के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया है। राज्यसभा में मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर उम्मीदवारों की अंतिम सूची कल जारी कर दी गई है। रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा

0: द्वारा जारी सूची में भाजपा उम्मीदवार तरुण चुग, महेश केवट और रजनीश अग्रवाल के नाम शामिल हैं। इससे पहले 9 जून को कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया था, जिसके खिलाफ कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कल नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। कांग्रेस आज इस मामले में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 15 जून को शिलांग के मावक सियांग स्थित लारिती परफॉर्मिंग केंद्र में पूर्वोत्तर भारत अवसंरचना शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी एनईआई इंफ्रा शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करेंगे। मेघालय सरकार 15 और 16 जून को पूर्वोत्तर भारत अवसंरचना शिखर सम्मेलन और एनईआई इंफ्रा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी, जिसमें पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ 8 केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से आकाशवाणी एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है, जिसके आज के अंक में हम पेश कर रहे हैं सरकार द्वारा युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए किए गए प्रयासों पर एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने कल ग्रामीण हाट का भ्रमण किया। 5 दिवसीय इस सम्मेलन में 21 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ग्रामीण हाट में विदेशी मेहमानों ने प्रदेश के कृषि उत्पादों, हस्तशिल्प, प्राकृतिक खेती आधारित उत्पादों और एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रदर्शित वस्तुओं को देखा। वहीं मंडला की मिलेट क्वीन लहरीबाई के दुर्लभ बीज संग्रह ने भी विदेशी मेहमानों का ध्यान आकर्षित किया। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु अनुकूल खेती और कृषि नवाचार जैसे अहम विषयों पर चर्चा हो रही है। 12 जून को कृषि मंत्रियों का एक विशेष संवाद भी इस सम्मेलन में आयोजित किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर राष्ट्रव्यापी अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू करके यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस ऑडिट में स्टेशन भवन, विद्युत उपकरण, वातानुकूलन और वेंटिलेशन सिस्टम तथा आपातकालीन निकास द्वार और अग्निशमन उपकरण सहित सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा अवसंरचनाओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी। इसके साथ ही उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कारों की घोषणा भी की गई। सामान्य परिषद ने वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के लिए संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक लोक, आदिवासी संगीत, नृत्य, रंगमंच और कठपुतली कला सहित विभिन्न क्षेत्रों से 108 कलाकारों का चयन किया है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून आने के पहले की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। चक्रवात के 2 अलग अलग सिस्टम बनने से कल कुछ हिस्सों में आंधी के साथ बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने आज ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के 34 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार आंधी बारिश का यह दौर कल भी जारी रह सकता है और प्रदेश में मानसून के अगले सप्ताह सक्रिय होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत इंदौर और आसपास के जिलों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थ यात्रा आयोजित की जा रही है, जो कि 20 जून को शुरू होगी। इस यात्रा में इंदौर के साथ धार, बड़वानी और देवास के वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय की स्थापना के 13वें वर्षगांठ समारोह पर आयोजित 5 दिवसीय महुआ महोत्सव का समापन कल 13 राज्यों के पारंपरिक और जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुति के साथ हुआ। मैहर जिले की प्रभारी मंत्री राधा सिंह ने कल जिला मुख्यालय में 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नवीन जिला पंचायत भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। शिवपुरी कलेक्टर ने आवास प्लस के लंबित आवासों की लंबित

सभी किश्तों का भुगतान समय सीमा में करने के निर्देश दिए। आगरमालवा जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी कल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के सफल संचालन के 10 वर्ष पूरे होने पर झाबुआ में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गुना में जिले की सहकारी दुग्ध समितियों के सदस्यों और अध्यक्षों के लिए चारा विकास कार्यक्रम के तहत साइलेज एवं गोरस ऐप की उपयोगिता विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंदौर के ग्राम माचल में एमपीआईडीसी द्वारा अत्याधुनिक एवं एकीकृत लॉजिस्टिक हब के लिए 23 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि आवंटित की गई है। झाबुआ के राणापुर में एसडीएम ने फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए और पन्ना टाइगर रिजर्व में विशेष स्वच्छता पखवाड़े के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर से प्लास्टिक कचरे को हटाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आज नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। इंदौर में वृक्ष कृषि सम्मेलन के दौरान कल विदेशी मेहमानों ने किया ग्रामीण हाट का दौरा और प्रदेश के ग्वालियर और जबलपुर समेत 34 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 7:20 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं रफी साहब के गाए इस गीत से, लीजिए।

0: बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों। रफी साहब का गाया ये खूबसूरती से भरा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था आया सावन झूमके, गीत आनंद बख्शी साहब का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओ, रफी साहब की आवाज में इसी तिकड़ी का एक गीत आपको सुनवा रहे हैं, यानी कि आवाज रफी साहब की है, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। गीत सुनिएगा, उसके बाद आपसे बातचीत।

0: रफी साहब की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये गीत। फिल्म थी आन मिलो सजना, गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, एक बार फिर आपको सुनवा रहे हैं रफी साहब की आवाज में गीत, गीत आनंद बख्शी साहब का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। लीजिए सुनिए

मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। आए दिन बाहर के इस फिल्म का ये खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे रफी साहब की आवाज में। श्रोताओ, रफी साहब के साथ लता जी को सुनिएगा आप आए बाहर आई फिल्म से।

आप आए बाहर आई। श्रोताओ, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे रफी साहब के साथ लता जी को। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। श्रोताओ, इस समय सुबह के 7:45 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए आकाशवाणी शिवपुरी का विशेष सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार।

नमस्कार शिवपुरी कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और श्रोताओं, आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र योगेंद्र सिंह यादव। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कार्यक्रम की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और इस समय हमें जो भी श्रोता रेडियो पर सुन रहे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखें। श्रोताओं, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आती हैं, बहुत सारी बातें मन और मस्तिष्क में घूमती हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम अपने जीवन के पीछे की तरफ देखते हैं तो हमें वहां से कुछ ज्ञान की प्राप्ति तो होती है, लेकिन उस ज्ञान को हम आपसी समन्वय के आधार पर हम अपने आप को बदल नहीं पाते। उसके पीछे कारण क्या है? श्रोताओं, बहुत सारे हमारे यहां लेखक, साहित्यकार, बहुत महान एक से एक व्यक्तित्व इस दुनिया में आए और उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे संदेश दिए जो आज भी हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, अपने जीवन को सकारात्मक रूप से चलाने की अभिव्यक्ति की एक ऐसी अनुशंसा करते हैं जो हम और हमें अपने राष्ट्रीय हित में, देश के हित में, समाज के हित में, अपने आसपास के पड़ोसियों और मित्रों के हित में हम इतना बदलाव ला सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए। श्रोताओं, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए हैं चार्ली चैपलिन, नाम सुना होगा आपने। चार्ली चैपलिन बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी इतने साधारण किस्म के इंसान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन साधारण मनुष्य की तरह जिया। वो चाहते तो विलासिता से संपूर्ण एक जीवन जीने की परिकल्पना उनके दिमाग में तो थी, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी आप सामान्य रूप से भी जीवन जी सकते हैं, सामान्य रूप से व्यवहार कर सकते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को एक पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा, उसका एक मजमून आपको सुनाता हूं। उड़ो और उड़ो, खूब उड़ो, लेकिन यह ध्यान रहे कि आपके पांव धरती पर टिके रहे। श्रोताओं, यहां पर मुझे विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित रोमियो जूलियट में एक अंश याद आता है। अंग्रेजी के बहुत बड़े लेखक और बहुत बड़े साहित्यकार की श्रेणी में विलियम शेक्सपियर का नाम बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। रोमियो जूलियट में उन्होंने एक जगह लिखा है, एक अंश आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा,

कि आज मेरी हैसियत है कि मैं आसमान की ओर सिर करके यदि देखूं तो मेरी हैसियत है, लेकिन नहीं, मेरी निगाह आज भी सीढ़ी के उस पहले पायदान पर है जिससे चढ़कर मैं यहां ऊपर आया हूं और आज इस उच्च पायदान पर खड़ा हूं। श्रोताओ, वही है ना कि हम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, लेकिन हमें अपने आप को उस सीढ़ी के पहले पायदान पर खड़ा करके देखना चाहिए कि जहां से हम ऊपर आए थे वहां से हमारी निगाह उस पहले पायदान पर है या नहीं। श्रोताओ, यहीं पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए सरकार ने अपने सफल 12 वर्ष पूरे किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी निर्वाचित प्रधानमंत्रियों के लगातार कार्य करने की सूची में अब सबसे ऊपर है। उसकी वजह जानते हैं आप क्या है? सामान्य रूप से बात करना, क्या आपने इससे पहले कभी देखा था कि कोई प्रधानमंत्री बच्चों को बुलाकर बच्चों से बात करता हो, कोई प्रधानमंत्री मन की बात करता हो, कोई प्रधानमंत्री बिल्कुल आपसी घुल मिलकर आपसे बातचीत करता हो, जनजातीय समुदायों को बुलाकर उनके कार्यक्रम को रंगमंच पर लाकर आपसे बातचीत करता हो। श्रोताओ, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें हम, देश की नीतियों की बात करें हम, और अब बता दूं आपको कि आज नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है नई दिल्ली में और उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। इस नीति आयोग का जो आज की बैठक का जो विषय है वो है विकसित भारत 2047, समावेशी मानव विकास। मानव विकास को सारी अच्छाइयों के साथ समावेश करके हम विकसित भारत 2047 भारत को उस विकासशील देशों की श्रेणी से ऊपर ले जाकर विकसित भारत की श्रेणी में लाना चाहते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी आज नीति आयोग की उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और इस विषय पर बहुत आवश्यक और जरूरी मंथन किया जाएगा। तो श्रोताओ, होता यही है कि जब हम उच्च पायदान पर पहुंच जाएं तो भी हम उस बात को हमेशा याद रखें कि हम जिस पहली सीढ़ी से चढ़कर आज उच्च पायदान पर खड़े हैं हमारी निगाह वहीं होनी चाहिए। ये मैं नहीं, विलियम शेक्सपियर ने बहुत जोर देकर रोमियो जूलियट में लिखा है, कहा है। तो क्यों ना हम अपने जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाएं, एक ऐसा उत्परिवर्तन लाएं जो आपको इस समाज के हित में, देश के हित में, राष्ट्र हित में अपने आप को स्थापित कर सके। श्रोताओं, बातें बहुत सारी हैं, छोटी छोटी आपको खबरें दे देते हैं कि यदि कोई बुजुर्ग दुर्व्यवहार से लेकर परेशान है, कोई बात है तो आपको एक टोल फ्री नंबर बता रहे हैं 1-4-5-6-7। श्रोताओं, ये हेल्पलाइन नंबर है और इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा एक श्रोताओ नंबर हमेशा याद रखिएगा 1930। आपको इसलिए बता रहा हूं कि यदि आपके साथ किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड होता है, आपके साथ किसी भी तरह की अश्लीलता की जाती है या आपके साथ कोई आपत्तिजनक वीडियो या किसी अन्य तरह की कोई इस तरह की घटना होती है, कोई दबाव का काम होता है, किसी घटनाक्रम के दौरान आपके ऊपर कोई अनावश्यक दबाव बनाया जाता है, तो आप सबसे पहले 1930 नंबर याद रखिए, इस नंबर पर तुरंत कॉल कीजिएगा।

श्रोताओं एक और बात बता दूं, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने अभी हाल ही में यह कहा है कि यदि ग्राहक को हिंदी में पढ़कर यदि बीमा पॉलिसी की शर्तें नहीं सुनाई गई हैं तो और आपके हस्ताक्षर हैं तो यह नहीं माना जाएगा कि आपने अपने उपभोक्ता को ये सारी शर्तें सुनकर पढ़कर बताई गई थी। आप समझ लीजिए कि कुछ शर्तें जो होती हैं कंपनियों की वो अंग्रेजी में लिखी होती हैं और अंग्रेजी जिस क्षेत्र में या जिस राज्य में प्रचलित है वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों में यदि अंग्रेजी में कोई टर्म्स कंडीशन किसी कंपनी की लिखी है और उस कंपनी का प्रबंधक यदि आपको हिंदी में वो टर्म्स कंडीशन नहीं बताता है तो वो सभी सेवा शर्तें जो है उस पॉलिसी की वो नहीं मानी जाएंगी। आप इस आधार पर अपने प्रकरण को ले जा सकते हैं। श्रोताओं अब आपको बता दें कि इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मी पड़ रही है, धूप भी बहुत अत्यधिक तेज है। इससे बचने के लिए हम अपने सभी श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि समय समय पर पानी पीने का ध्यान रखिए, बस यह हम कहना चाहते हैं। और जहां तक संभव हो वहां तक आप जो है घर से बाहर ना निकलिएगा। घर से बाहर निकलने का समय है तो आप दिन में 11 बजे तक निकल जाइए, जरूरी आवश्यक कार्य कर लीजिए और तुरंत घर वापस आइए, या अगर आप कार्यालय में काम करते हैं तो आप अपने ऑफिस टाइम में जाइए और शाम कार्यालय समय के उपरांत ही घर आइएगा। इस बीच आप थोड़ा थोड़ा कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कोई पेय पदार्थ ठंडा पेय पदार्थ पी सकते हैं, कुछ फल फ्रूट भी खा सकते हैं। हल्के फल फ्रूट खाने से आप शारीरिक रूप से संतुलित बने रहेंगे। श्रोताओं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय आ गया है और आईटी डिपार्टमेंट ने लगभग सभी फॉर्म अपलोड भी कर दिए हैं। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताता हूं जब आप अपना आईटीआर भर रहे हो। एक तो गलत आईटीआर फॉर्म न चुने, आपके लिए जो संबंधित आईटीआर फॉर्म है वही चुने। फॉर्म 16 और 26 एएस जरूर चेक करें, अपना एआईएस भी जरूर चेक करें और ब्याज से यदि आपको कोई आय हुई है तो उसकी जानकारी देना बिल्कुल ना भूलें। कैपिटल गेन की सूचना देने में बिल्कुल गलती ना करें और बैंक खातों की डिटेल बिल्कुल सही भरिएगा। और रिटर्न भरने के बाद यदि आपने उस रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया है तो आधार से लिंक जो आपका नंबर है उससे जरूर वेरीफाई कीजिएगा। श्रोताओं अब थोड़ी सी बात हम कर लें। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल के प्रबंध संचालक हैं माननीय श्री ऋषि गर्ग, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। और श्रोताओं इन्होंने इस कंपनी के प्रबंध संचालक के रूप में जब से कार्य करना शुरू किया तो इनकी पहली सोच ये थी कि कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के बीच आपसी समन्वय होना चाहिए, यानी कि कर्मचारी अधिकारियों के बीच और अधिकारियों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा एक जनसंपर्क होना चाहिए। तो उन्होंने संपर्क अभियान शुरू किया। श्रोताओं इस संपर्क अभियान की शुरुआत की गई थी 14 मई 2026 से। लगातार इसमें क्लस्टरों में इस वृत्त स्तर पर लागू हुए क्लस्टर में विभाजित किए गए और उन क्लस्टरों में भी उसमें रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में डिवाइडेशन किया गया। और इन डिवाइडेशन के आधार पर माननीय प्रबंध संचालक की यह सोच है कि यदि आपको बिजली से संबंधित कोई भी समस्या है, मीटर से संबंधित समस्या है, सर्विस केबल से संबंधित समस्या है, डीटीआर से संबंधित समस्या है, बिल सुधार से संबंधित समस्या है, भुगतान में यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है, नए कनेक्शन लेने में कोई तकलीफ है, लोड परिवर्तन में, नाम परिवर्तन में, या ईकेवाईसी या एनओसी से संबंधित, श्रोता बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन समस्याओं के निपटारे के लिए आपको कंपनी और उपभोक्ताओं के बीच में संपर्क अभियान जारी है। आप अपने विद्युत वितरण केंद्र स्तर पर उस प्रबंधक से या उस क्षेत्र के उप महाप्रबंधक से या वृत्त स्तर पर महाप्रबंधक महोदय से संपर्क करके आप अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। इन सभी सूचनाओं के साथ अब अपने रेडियो मित्र योगेंद्र सिंह यादव को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए।

0: नमस्कार शिवपुरी।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी शिवपुरी का विशेष सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
2: घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है। विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
6: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
5: भारतीय जनता

0: जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है। कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य

0: मत्स्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
3: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
0: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्य ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में NTA अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने NTA ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में POK की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने POK में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है, उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का POK में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी ITBP। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खानपान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना NDA सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू चेयर 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग इन न्यू दिल्ली टुडे। Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. A report from our correspondent.
6: Measures for promoting entrepreneurship, enhancing skilling and creating sustainable employment opportunities across the country will also be deliberated upon in the meeting. The discussions will further focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers including governance, digital public infrastructure, convergence, partnerships and data-driven systems alongside a structured mechanism to track short, medium and long-term outcomes ensuring accountability and measurable impact. A key thrust will be on aligning state visions with the national vision on inclusive human development, reinforcing a unified and collaborative approach towards equitable and sustainable growth. The Governing Council of Niti Aayog will also focus on the recommendations of 5th National Conference of Chief Secretaries held during 26th to 28th December last year. With Anupam Mishra, Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
5: Prime Minister Narendra Modi has said aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said that National Democratic Alliance NDA has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday evening. He said the rising sun of hope in 2014 has today transformed into a ray of renewed confidence. He said for the first time the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, the development also takes place at a rapid pace. Mr. Modi said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
7: NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 crore se zyada logon ka garibi se bahar nikalna ye dikhata hai ki hamari neetiyan sahi hain, hamari disha sahi hai. Ye safalta आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
5: In his address, the Prime Minister said that at a time when the economies of major countries around the world are struggling, India has still achieved a growth rate of 7.7% in 2025-26. He said the country has moved out of the fragile 5 category and has now become one of the fastest growing economies in the world. Earlier yesterday, the National Democratic Alliance adopted a resolution lauding Mr. Modi on achieving the feat of becoming the country's longest-serving elected Prime Minister. BJP President Nitin Naveen has said that a total of 75 delegates from 35 political parties participated in the NDA conclave held at Bharat Mandapam in New Delhi.
8: Speaking to the media, Mr. Naveen said the NDA leaders expressed their gratitude for Prime Minister Narendra Modi's leadership and congratulated him on a historic milestone, calling it a moment of pride for 140 crore people of the country. Mr. Naveen said, under Prime Minister Modi's leadership, India is moving forward towards the vision of Viksit Bharat. He added that the Prime Minister's guiding mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas has connected people across the country. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the measures taken by the government towards the welfare of the poor. Over the past 12 years, the Narendra Modi government has implemented several flagship schemes for the welfare of the poor and to strengthen social security. Housing for the poor is the major focus area of the Modi government. Under the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen, more than 4 crore houses have been allocated to states for economically weaker families in rural areas. In the area of food security, the government is providing free food grains to over 81 crore beneficiaries across the country under the Pradhan Mantri Gareeb Kalyan Anna Yojana. Talking to Akashwani News, Indramani Nayak of Kalahandi in Odisha said that the poor people are benefiting through this scheme.
9: My name is Indramani Nayak. I belong to Kamthana Panchayat in Bhavanipatna, Kalahandi. Under the Gareeb Kalyan Anna Yojana that Narendra Modi has started, our family consists of 5 members and we are receiving 5 kg of grains per person. Earlier we used to face a lot of hardships, but now we are all living in peace and happiness.
8: The world's largest public health care scheme, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, is providing health coverage of 5 lakh rupees to vulnerable families, while Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendras are offering generic medicines at affordable rates. Around 10 crore 82 lakh beneficiaries have availed cashless treatment under the Ayushman Bharat scheme. Talking to Akashwani News, Fayaz Ahmed of Baramulla, Jammu and Kashmir said that the Ayushman Bharat scheme is facilitating the poor to avail treatment during emergencies.
10: I am very grateful to the NDA government and Modi ji for launching so many schemes. For the first time in the country's history, a poor person has received direct benefits through digitalization. I would like to talk about Ayushman Bharat. What used to happen in the country earlier before Modi ji's government was that when someone fell ill, people either had to sell their land or some expensive household item to arrange money for operations and other treatment. But ever since Modi ji launched the Ayushman Bharat scheme, there is no longer the case across the country.
8: Over 10 crore 55 lakh women have been provided free LPG gas connections under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, freeing them from the health hazards of traditionally cooking fuels. Meanwhile, under the PM Swanidhi scheme, more than 1 crore 12 lakh loans have already been disbursed to street vendors so far. India's social protection coverage has risen sharply from 19% in 2015 to more than 64% in 2025, covering nearly 94 crore citizens under the government welfare schemes. Around 25 crore people have been lifted out of poverty, reflecting a significant shift towards inclusive growth and welfare-driven governance. With Dipendra Kumar, Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
11: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The Indian Chamber of Commerce plans to facilitate investments worth 1 lakh crore rupees in West Bengal through its member companies, reflecting growing industry confidence in the state's economic potential and growth prospects. The proposal was discussed during a meeting in New Delhi between the Indian Chamber of Commerce delegation, led by its president Brij Bhushan Agarwal, and Union Minister Jitendra Singh. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Bulgaria's Prime Minister Ruman Radev in Sofia yesterday. Dr. Jaishankar highlighted India's robust bilateral ties, recent opportunities created by the strengthening India-Bulgaria strategic partnership, and the imperative for

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है मोहन किशोर नामदास। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा और महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारतीय ज्ञान परंपरा के आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र उदित हुए हैं जिनका प्रकाश समय की सीमाओं को लांघकर पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करता रहा है। आयुर्वेद के पुनरुत्थान से जुड़े एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। जब परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने आयुर्वेद की सनातन चेतना को नए युग की धड़कनों से जोड़ा। उनके लिए आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं थी, बल्कि वो आयुर्वेद को भारतीय संस्कृति की जीवंत आत्मा मानते थे। उसे जीवन को संतुलन, स्वास्थ्य और समरसता प्रदान करने वाली एक संपूर्ण दृष्टि मानते थे। ज्ञान उनकी साधना था, सेवा उनका धर्म और आयुर्वेद का उत्थान उनका संकल्प। वो आधुनिक भारत में आयुर्वेद चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सबसे प्रमुख प्रणेताओं में से एक थे। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति का जन्म 3 मार्च सन 1880 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के माधववरम गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अचंता रमैया था। परिवार के आध्यात्मिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। पिता की प्रेरणा से ही उन्होंने वेद पुराण और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। उनके बाल्यकाल पर उनके दादा सुब्बा रायडू और प्रसिद्ध समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेश लिंगम का गहरा प्रभाव पड़ा। इन दोनों विभूतियों के सानिध्य ने उनके भीतर ज्ञान और समाज सेवा के बीज बोए। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनकी माताजी गंभीर रूप से बीमार हुई। उपचार के दौरान अचंता लक्ष्मीपति की भेंट राजमहेंद्रम के एक प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर सीतारमैया से हुई। ये केवल एक वैद्य से भेंट नहीं थी, बल्कि आयुर्वेद से उनका पहला सटीक परिचय था। डॉक्टर सीतारमैया ने उन्हें आयुर्वेद के व्यावहारिक सूत्रों से परिचित करवाया और उनके मन में इस भारतीय चिकित्सा परंपरा के प्रति आदर भाव

ये वो समय था जब भारत में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा था। अचंता लक्ष्मीपति ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को समझने का निश्चय किया। सन 1904 में उन्होंने बीए की शिक्षा पूरी की तथा छात्रवृत्ति प्राप्त कर मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। इस तरह सन 1909 में उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा में प्रामाणिक डिग्री हासिल की। सन 1910 में उन्होंने मद्रास में अपनी प्रैक्टिस शुरू की और वो वेंकटगिरी के राजा जैसे संभ्रांत वर्ग के पारिवारिक चिकित्सक बने। लेकिन सन 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति घोषित करना था। इसके विरोध में डॉक्टर लक्ष्मीपति ने अपना नाम एलोपैथी के मेडिकल रजिस्टर में दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम को उन्होंने केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं माना, उन्होंने इसे भारतीय ज्ञान परंपरा के सम्मान का प्रश्न समझा। ये उनके पेशेवर जीवन के लिए जोखिमपूर्ण समय था, लेकिन इसी समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का प्रवेश हुआ, वैद्य रत्न पंडित दीवी गोपाल चारलू। वो मद्रास के सुप्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे जिन्होंने अचंता लक्ष्मीपति की प्रतिभा को पहचाना तथा अपने संरक्षण में उन्हें आयुर्वेद के गहन अध्ययन का अवसर दिया। सन 1914 से 1919 तक अचंता लक्ष्मीपति ने उनसे गहन ज्ञान प्राप्त किया। सन 1919 में विश्व स्पेनिश फ्लू नामक घातक महामारी की चपेट में आ गया। इस महामारी ने दुनिया की एक तिहाई आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये महामारी फैली थी। ऐसे कठिन समय में डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हजारों रोगियों को राहत पहुंचाई। इस अनुभव ने उनके इस विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने एलोपैथी इलाज पूरी तरह से छोड़ दिया और स्वयं को आयुर्वेद के लिए समर्पित कर दिया। सन 1920 में उनके गुरु वैद्य रत्न पंडित दीवी गोपाल चारलू का निधन हो गया और गुरु का दायित्व शिष्य के कंधों पर आ गया। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। सन 1920 से 1928 तक उन्होंने इस संस्था को केवल एक शिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि उसे आयुर्वेदिक चेतना का केंद्र बिंदु बना दिया। इस कॉलेज को चलाने के लिए मुंगला के राजा ने भी बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति स्वास्थ्य को जीवन पद्धति का विषय मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने सन 1926 में मद्रास के पास स्थित आवड़ी में आरोग्य आश्रम समिति की स्थापना की। ये केवल एक आश्रम नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य और प्रकृति के समन्वय का प्रयोग था। एक ऐसा स्वास्थ्य ग्राम जहां उपचार के साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने युवा वैज्ञानिक डॉक्टर यल्ला प्रगदा सुब्बा राव की प्रतिभा को पहचान कर उनके प्रारंभिक शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया और उनकी उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्हें चमत्कारिक औषधियों का जनक माना जाता है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति पर रमण महर्षि के आध्यात्मिक विचारों का गहरा प्रभाव था, जिन्होंने उनके चिंतन और विचारधारा को एक सार्थक दिशा प्रदान की। वो गांधी जी के विचारों से भी अत्यधिक प्रभावित थे तथा स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

सन 1933 में डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति की सेवाओं और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। बीकानेर में आयोजित ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे देश में फैल रही थी। लोग उन्हें केवल एक चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि आयुर्वेद का पुनरुत्थान करने वाले मनीषी के रूप में देख रहे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी यात्रा अभी शेष थी, एक यात्रा जो उन्हें गांधी जी के और निकट ले गई, एक यात्रा जिसने गांव गांव जाकर स्वास्थ्य संदेश पहुंचाया। सन 1938 का साल भारत की स्वाधीनता के स्वप्न से आंदोलित साल था। महात्मा गांधी ग्रामोदय और स्वावलंबन के विचार को जन जन तक पहुंचा रहे थे। इसी समय डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति ने एक अभिनव अभियान आरंभ किया जिसका नाम था आरोग्य यात्रा। वो लगभग 100 चिकित्सकों के साथ पैदल चलते हुए गांव गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों को स्वच्छता, संतुलित जीवन शैली और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सिद्धांतों का महत्व समझाया। वो पंच शुद्धि प्रणालिका के 5 नियमों का संदेश लिए आगे बढ़ते रहे। अपने इस अभियान में उन्होंने प्रत्येक गांव में कम से कम 1 एकड़ भूमि पर औषधीय पौधों का उद्यान विकसित करने हेतु लोगों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि स्वास्थ्य अस्पतालों से नहीं बनता, वो विकसित होता है स्वच्छ विचारों, संतुलित आहार और प्रकृति के सानिध्य में। डॉक्टर लक्ष्मीपति के इन प्रयासों से गांधी जी अत्यंत प्रभावित हुए। सन 1939 में गांधी जी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सेवाग्राम आश्रम आने का निमंत्रण दिया। वर्धा का सेवाग्राम आश्रम उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। सेवाग्राम पहुंचकर उन्होंने केवल एक चिकित्सक की भूमिका नहीं निभाई बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य और ग्राम विकास के गांधीवादी स्वप्न को मूर्त रूप देने में सहयोग दिया। गांधी जी ने उन्हें आश्रम में एक विशाल उद्यान विकसित करने का दायित्व सौंपा। इस उद्यान का उद्देश्य केवल औषधियां उगाना नहीं था बल्कि ये सिद्ध करना था कि भारत के गांव अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीपति की धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति भी राष्ट्र सेवा को समर्पित रहीं। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं और सन 1946 में मद्रास प्रांत की सरकार में वो सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। इस तरह पति पत्नी ने साथ मिलकर भारतीय चिकित्सा के विकास की एक नई धारा प्रवाहित की। सन 1947 में भारत की आजादी के बाद भी वो राष्ट्र सेवा को समर्पित रहे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वो समाज सुधार के कार्य में भी निरंतर संलग्न रहे। डॉक्टर लक्ष्मीपति अंतरजातीय विवाह के प्रबल पक्षधर थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपनी जाति से बाहर एक गैर ब्राह्मण युवक से किया। इसके साथ ही वो पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के भी पक्षधर थे। सन 1960 में भारत सरकार ने उन्हें योजना आयोग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया जहां उन्होंने रोग प्रतिरोधक चिकित्सा और जीवन शैली सुधार पर विशेष बल दिया। उन्होंने तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में चिकित्सा पद्धतियों पर लगभग 100 पुस्तकें लिखीं जिनमें से 63 पुस्तकें विशुद्ध रूप से भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और आयुर्वेद के अनुवादों पर आधारित थीं। उनकी आत्मकथा आयुर्वेद के पुनरुत्थान का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति को देश भर में भिषग रत्न, प्राणाचार्य तथा आयुर्वेद वाचस्पति जैसी कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 6 अगस्त सन 1962 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है।
2: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको रंजना तिवारी पुरोहित के अलावा हरगोविंद कुशवाहा के गाए लोकगीत सुनवाएंगे। कार्यक्रम का आरंभ

संगीत का कार्यक्रम लोकरंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे रंजना तिवारी पुरोहित की आवाज में ये लोकगीत। एक और लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: रंजना तिवारी पुरोहित की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। श्रोताओं, लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। रंजना तिवारी पुरोहित की आवाज में सुनिए ये लोग।

रंजना तिवारी पुरोहित की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। श्रोताओं, लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं हरगोविंद कुशवाहा की आवाज में लोकगीत।

0: जा गर्मी के मारे खटिया हम नीम तले डारे। श्रोताओ, गर्मी पर आधारित ये लोकगीत अभी आप सुन रहे थे हरगोविंद कुशवाहा और साथियों की आवाज में। आपको बता दें कि लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। हरगोविंद कुशवाहा और साथियों की आवाज में

हरगोविंद कुशवाहा और साथियों की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग। इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में लीजिए सुनिए हरगोविंद कुशवाहा और साथियों का गाया ये

भी जरूरी है कि इस घटनाक्रम को जानने के बाद आपको इस गीत का जो आनंद अंतर आत्मा से प्राप्त होगा उसकी बात ही कुछ निराली होगी। श्रोताओं, हम आपको जो गीत सुनवाने जा रहे हैं वो गीत कम गजल है, और फिल्मों में गजलों का पदार्पण कहां से शुरू हुआ मैं आपको बताता हूं, और कैसे शुरू हुआ। एक पंजाबी सिख लड़का, हम उस युग में आपको ले जा रहे हैं, 1980 के दशक में, एक पंजाबी सिख लड़का पंजाब से चलकर मुंबई पहुंचता है इस उद्देश्य से कि वह फिल्मों में संगीत देगा, गीत गाएगा। लेकिन जैसे ही वह मुंबई में पहुंचा और मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो कहीं कोई बात नहीं बनी, क्योंकि सिर पर जो पगड़ी रखी हुई थी और जिस तरह का वेशभूषा और कहना चाहिए कि जो आउटपुट थी उसको देख के उस फिल्म इंडस्ट्री के तमाम प्रोड्यूसर और तमाम डायरेक्टर उन्हें देखते ही इनकार कर दिया करते थे। बड़ा दुख हुआ, बिल्कुल एक ऐसा दुख जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि जब व्यक्ति किसी काम को करने जा रहा होता है तो उसके मन में एक खुशी और उत्साह एक सामान्य रूप से होती है, और वो खुशी और उत्साह अगर किसी कारणवश काफूर हो जाए तो क्या हो, कोई बात नहीं। जीवन इसी का नाम है और इसी को जीवन कहते हैं, कि जब आप अपनी किसी कठिन परिस्थिति से निकलकर जब आप बाहर आ जाएं दुनिया में और अपने आप को स्थापित कर दें, इंसान तो वही है। एक सुपरिचित अंदाज में जब उस सिख युवक को लोगों ने संघर्ष करते देखा तो एक इंसानियत के देवता जिसे कहना चाहिए, उस व्यक्ति ने उस सिख युवक को सलाह दी कि यदि आपको फिल्म इंडस्ट्री में सफल होना है तो आप अपनी यह पगड़ी हटा दीजिए और आप सामान्य वेशभूषा में आ जाइए। उसके बाद तो जो कमाल हुआ वह अद्भुत और अद्वितीय था। लेकिन किसको प्यार नहीं होता अपने बालों से, बालों की कट से, बालों की डिजाइन से। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी किसी पसंदीदा चीज को ठुकरा दें, लेकिन एक सिद्धांत है इस दुनिया का कि अगर हम कुछ देते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ प्राप्त भी होता है। यही हुआ, उस सिख युवक ने अपने सिर के ऊपर के बाल मुंडवा दिए और कुछ समय उपरांत वो सामान्य वेशभूषा में जब फिल्म इंडस्ट्री के सामने आया तो लोग हतप्रभ रह गए, चकित रह गए। आप जानना चाहेंगे वो आदमी कौन था, वो व्यक्ति कौन था, वो युवक कौन था। 1980 के दशक में फिल्मों में गजलों का पदार्पण करने वाला वो महान गायक जगजीत सिंह। लेकिन श्रोताओं, जब वो केश कटे, उस समय जब वो रोए हैं, जिस तरह का दर्द उनके दिल में पैदा हुआ, उस दर्द को उन्होंने बयां किया फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर गीतकार इंदिवर साहब के सामने। और इंदिवर साहब की विशेषता बताऊं आपको कि किसी दर्द को, किसी घटना को, किसी अपनी आंखों देखी किसी घटना को तुरंत मस्तिष्क में कैद करके उसे गीतों में ढालने की जो कला फिल्म इंडस्ट्री में इंदिवर साहब के पास थी वो दुनिया के किसी गीतकार में नहीं थी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको वास्तविकता बताता हूं इंदिवर साहब की। इंदिवर साहब एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ एक खुली कार में मुंबई की सड़कों पर घूमने निकले। रेड लाइट पर उनकी कार रुक गई। उनके ठीक बगल से आकर एक कार और रुकी, जिस कार को एक सुंदर युवती चला रही थी। उस युवती का ध्यान सीधे सीधे रेड लाइट पर था, लेकिन इंदिवर साहब का ध्यान उस युवती पर था। उसका आकर्षण और उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि इंदिवर साहब ने जो गीत लिखा वो मैं आपको बताता हूं।

श्रोता, हुआ भी यही था कि उस आकर्षक खूबसूरत युवती ने इंदिवर साहब को एक बार भी नहीं देखा और जैसे ही रेड सिग्नल ग्रीन हुआ वो युवती कार चलाकर आगे बढ़ गई। इनकी कार वहीं खड़ी रही और उस पर फाइन देकर उनको आगे जाना पड़ा। तो श्रोता, ये तो बात थी। और इंदिवर साहब को जब जगजीत सिंह ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई कि वो केश कटते समय उनके अंदर का जो दुख और दर्द था, तो उन्होंने इंदिवर साहब ने कहा कि गजल मैं लिखता हूं, गाएंगे आप। और जगजीत सिंह ने जो गाया है श्रोताओ, वहां से जगजीत सिंह की फिल्म इंडस्ट्री में जो पहचान बनी वो आज तक कायम है। 1980 के दशक से आज हम बात कर रहे हैं 45 साल बाद इस घटना की। इस गीत को सुनिएगा और उस दर्द को महसूस कीजिए जब जगजीत सिंह की जब पसंदीदा, जिसको सबसे ज्यादा वो पसंद करते थे, उनके सामने ही उनकी इच्छा के विपरीत जाकर, क्योंकि उन्हें अपनी फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित करना था, तो गिव एंड टेक वाली बात थी। उन्होंने अपने आप को स्थापित किया लेकिन कुछ देकर, त्याग करके, समर्पण भाव से। इस गीत को सुनिएगा, उसके बाद बताइएगा कि इस दुनिया में क्या नहीं हो सकता, हम क्या नहीं कर सकते। बस सिर्फ एक संकल्प की जरूरत है।

0: तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। श्रोताओं, प्रेम गीत फिल्म का यह गीत जगजीत सिंह की आवाज, इंदिवर साहब की रचना और संगीत स्वयं जगजीत सिंह का, यह खूबसूरत गीत, इसे सुनने की फरमाइश की थी। अब आपको फरमाइशी नाम बताना जरूरी है कि किन किन लोगों ने फरमाइश किया था इसको। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। फिजिकल रोड शिवपुरी से सादिक खान मेवाती और उनके सभी पारिवारिक सदस्यगण। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा और उनके तमाम मित्र। गांधीनगर कॉलोनी शिवपुरी से श्वेता गंगवाल, राहुल गंगवाल, सम्यक गंगवाल और इनके सभी पारिवारिक सदस्यगण। इन सबकी फरमाइश पर अभी आप सुन रहे थे प्रेम गीत फिल्म का ये गीत। श्रोताओं, फरमाइशी फिल्म गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: फरमाइशी फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे थे आपसे जगजीत सिंह की और इसके अलावा हमने आपसे बात की इंदिवर साहब की। इंदिवर साहब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे गीतकार हैं जो तुरंत फुरत कोई चीज सामने देखी और उस पर गीत लिख दिया। ऐसा ही उन्होंने एक खूबसूरत गीत लिखा धर्मात्मा फिल्म के लिए। कल्याण जी आनंद जी की कंपोजिंग में यह गीत लिखा उन्होंने, आवाज मुकेश के साथ कंचन की है इस

तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। धर्मात्मा फिल्म का ये खूबसूरत गीत मुकेश और कंचन की आवाज में, इंदिवर साहब की रचना और कल्याण जी आनंद जी का मधुर संगीत। और इस गीत को सुनने की फरमाइश हाजी सन्नू मार्केट एबी रोड शिवपुरी से जाहिद खान और उनके तमाम पारिवारिक मित्रगण, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रियांश और सुजला ठाकुर, लेवा खेल मोहल्ला चांदूर विश्वा से नारायण भाव खड़से, ललिता खड़से, परी खड़से, गणेश कार्तिक भाव खड़से, स्वाति चौधरी, प्रयाग चौधरी और पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया, इन सबकी फरमाइश पर हमने आपको अभी सुनवाया धर्मात्मा फिल्म का यह गीत। श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकना है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में श्रोताओं एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि ये फरमाइशी फिल्म गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, अब आपको मैं लिए चलता हूं 1970 के दशक में। एक ऐसे गीतकार की बात कर रहा

हूं जो बाल मन में यानी कि जब बालक के मन में कोई बात चल रही हो और उस बात को जब वो कागज पर उकेर दे और उस कागज को जहां तक वो पहुंचाना चाहता था वहां तक ना पहुंचे और उस बाल मन के द्वारा लिखित वह पत्र उस अपनी हसरतों को लेकर और जब वो जयपुर से चलकर मुंबई आ जाए तब क्या हो। श्रोताओ, कुछ चीजें जीवन में बड़ी प्रासंगिक होती हैं। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती। कुछ चीजें हम मन और मस्तिष्क में लिए चलते रहते हैं और जीवन जीते रहते हैं, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है। श्रोताओ, हुआ भी यही। हसरत जयपुरी साहब मूलतः जयपुर के हैं। जयपुर के होने के नाते उनका जयपुरी एक उपनाम है। हसरत जयपुरी साहब जब अपने किशोर अवस्था से युवक अवस्था में पदार्पण कर रहे थे तब उनके ही मोहल्ले में उनकी ही हम पड़ोसी एक खूबसूरत युवती को एक पत्र लिखा। उन्होंने पत्र लिखा, लिखने के बाद उसको वहां तक पहुंचा नहीं पाए और उस पत्र को अपने मन में अंतर ध्यान करते हुए, क्योंकि एक जज्बा हुआ करता था एक युग में कि लोगों के मन में थी कि हम फिल्मों में काम करें, फिल्मों में गीत लिखें, कंपोजिंग करें, स्टोरी लिखें, अभिनय करें, कुछ तो भी करें जाकर, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का रुतबा आज भी है, उस समय भी था और उस समय जिस जोर और शोर से था उसका प्रभाव आज की डेट में कुछ कम है, लेकिन प्रभाव अत्यंत लुभावना और प्रभावशील है। तो श्रोता, हुआ यह कि हसरत जयपुरी साहब अपनी हसरतों को लेकर पहुंचे मुंबई और मुंबई पहुंचकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अपने आप को स्थापित तो किया उन्होंने गीतकार के रूप में, लेकिन वो जो मन में एक टसक थी, कसक थी, उस कसक को कैसे निकालते, तो राज कपूर साहब से उन्होंने उस घटना का को बयां कर दिया और राज कपूर साहब को तो मौका चाहिए था। राज कपूर साहब ने उस गीत का इस्तेमाल बखूबी ढंग से संगम फिल्म में किया। संगम फिल्म का एक गीत आपने सुना होगा, मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना कि तुम मेरी जिंदगी हो कि तुम मेरी बंदगी हो, यह तो वहां इस्तेमाल हुआ। श्रोताओं, यह घटनाक्रम हुआ। 70 के दशक में एक फिल्म बन रही थी ब्रह्मचारी, अभिनेता शम्मी कपूर, सिप्पी साहब उस फिल्म को बना रहे थे। सिप्पी, जीपी सिप्पी बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का और उनकी प्रोडक्शन कंपनी के तले ये ब्रह्मचारी फिल्म बन रही थी। उसके एक गीत को गाने के लिए रफी साहब को 22 बार रिहर्सल करना पड़ी थी और उनसे कहा गया था, शम्मी कपूर साहब ने कहा था कि इस गीत को आपको एक ही लय में गाना है, दिल के झरोके में तुझको बिठाकर आपको सांस नहीं लेना है, बीच में आपको पूरा मुखड़ा एक ही बार में गाना है। श्रोताओं, कमाल किया था रफी साहब ने इस गीत में और एक कमाल दूसरे गीत में किया जो सिप्पी साहब ने हसरत जयपुरी के माध्यम से कराया और इच्छा थी शम्मी कपूर साहब की। शम्मी कपूर साहब ने कहा कि एक गीत रफी साहब से ऐसा गवा दीजिए और हसरत जयपुरी साहब से लिखा दीजिए। तो हसरत जयपुरी साहब ने जो गीत लिखा और रफी साहब ने जिस अंदाज में उसे गाया, तो आपको यह बता दूं, बहुत कम लोग जानते हैं कि जब शम्मी कपूर पर फिल्माए गए गीत जब स्टूडियो में रिकॉर्ड होते थे, रफी साहब गाते थे, तो वो ये चाहते थे कि जिस तरह की मेरी स्टाइल है, जो मेरी कला है, उस कला में वो झूमे और गाएं। श्रोताओं, ऐसा हुआ भी, कई बार हुआ और रफी साहब ने हू बहू उनके ही अंदाज में उस गीत को गा दिया और गीत अमर हो गया। इस गीत को सुनिए।

तू बेमिसाल है, तारीफ क्या करूं। ब्रह्मचारी फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ ही अब अपने रेडियो मित्र योगेंद्र सिंह यादव को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार, हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 10 बजने को है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा।

0: प्रस्तुत है निवाड़ी जिले की चिट्ठी। आलेख है विवेक दांगी का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है निवाड़ी जिले की चिट्ठी। आलेख विवेक दांगी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। निवाड़ी जिले में आजकल मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कभी धूप है तो कभी हल्की बारिश, जिससे उमस बढ़ रही है और गर्मी अपना असर दिखा रही है। प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार आमजन की समस्याओं और शिकायतों के मौके पर त्वरित निराकरण के लिए कलेक्टर जमुना भिड़े की अध्यक्षता में बीते दिनों जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों के साथ आमजन

की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुना। आवेदनों पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर ने कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया तथा जांच और कार्यवाही योग्य आवेदनों में से अतिशीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। राजस्व शिकायतों के निराकरण में लंबित स्थिति पर कलेक्टर ने अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तरमीम और सीमांकन के शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए राजस्व अधिकारी स्वयं फील्ड पर विजिट करें, निष्पक्ष जांच कर पात्र हितग्राहियों को तत्काल लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने पृथ्वीपुर निर्वाचन कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के आवेदकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। पृथ्वीपुर तहसील के अंतर्गत आवेदकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए SDM मनीषा जैन और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में जनसुनवाई को वर्चुअली जोड़ा गया था। पिछले दिनों कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ जेरोन तालाब का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तालाब की साफ सफाई, स्वच्छता और जल संरक्षण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलकुंभी और अन्य जलीय खरपतवार को मशीन और श्रमिकों के माध्यम से पूरी तरह से हटवाया जाए। तालाब किनारे जमा कचरा और प्लास्टिक को भी साफ करवाया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निवाड़ी जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शासन के आदेश के अनुसार इस अवधि में विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इस कड़ी में दिनांक 12 जून से 18 जून तक जिले के प्रत्येक विकास खंड और नगरी निकाय मुख्यालयों पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर लगाया जाएगा। शिविर का मुख्य उद्देश्य शासन की योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर मौके पर ही लाभान्वित करना है। इसके साथ ही आमजनों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। शिविर में राजस्व, पंचायत, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय और कृषि सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। कलेक्टर जमुना भिड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविर में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, आयुष्मान कार्ड, BPL कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, PM आवास, लाडली बहना, पेंशन और राशन पर्ची जैसे प्रकरणों का भी त्वरित निराकरण किया जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर ने जिले के सभी हितग्राहियों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी विकास खंड या नगरी निकाय मुख्यालय पर लगने वाले जन कल्याण शिविर में पहुंचकर योजनाओं का लाभ अवश्य लें। इसके साथ में वे जरूरी दस्तावेज लेकर जरूर आएं ताकि मौके पर ही पात्रता जांच कर लाभ दिया जा सके। जन कल्याण शिविर 12 जून से 18 जून की अवधि में समस्त नगरी निकायों और जनपद मुख्यालयों में कुछ 5 स्थानों पर लगाए जाएंगे, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं आयुष्मान भारत, वय वंदन, PM सूर्य घर, PM स्वनिधि, लखपति दीदी और VBG राम जी के अंतर्गत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। बीते दिनों एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत ग्राम पंचायत कुलवा में आयोजित वृहद पौधरोपण कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला प्रशासन ने परमार्थ समाज सेवी संस्था के सहयोग से ग्राम पंचायत कुलवा में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस दौरान चंदेली तालाब पर वृहद पौधरोपण भी किया गया। श्री राम राजा सरकार मंदिर ओरछा धाम की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के उद्देश्य से बीते दिनों कलेक्टर जमुना भिड़े की अध्यक्षता में ओरछा में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. राय सिंह नरवरिया और जिला पंचायत CEO रोहन सक्सेना विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में मंदिर के उत्कृष्ट प्रबंधन, समन्वय और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा कर निर्णय लिए गए। निवाड़ी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे निवाड़ी जिले की चिट्ठी। आलेख था विवेक दांगी का, वाचन स्वर थे अभिषेक कटियार के। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
1: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुप्रसिद्ध गजल गायिका, गजल गायकी की साम्राज्ञी बेगम अख्तर साहब की आवाज में आपको खूबसूरत गजलें सुनवाएंगे। कार्यक्रम का आगाज इस गजल से लीजिए।

0: बेगम अख्तर की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये गजल। श्रोताओं, सुगम संगीत का कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सुगम संगीत का कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। बेगम अख्तर की आवाज में सुनिए।

मेरे हम नफस मेरे हम नवाब मुझे दोस्त बन के दगा न दे। बेगम अख्तर साहब की यह गजल अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं आपको बता दें कि सुगम संगीत का कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। एक ब्रेक

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुगम संगीत के कार्यक्रम का प्रसारण इस समय आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से हो रहा है। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं बेगम अख्तर साहब की गाई गजलें।

वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो। बेगम अख्तर साहब की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये गजल। श्रोताओं, आपको बता दें कि सुगम संगीत का कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति लीजिए, सुनिए बेगम अख्तर की आवाज में

बेगम अख्तर साहब की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं रफी साहब के गाए इस गीत से।

महबूब की मेहंदी। श्रोता, इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे रफी साहब को। गीत आनंद बख्शी, कथा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने अपनी संगीत यात्रा शुरू की 1963 में, और फिल्म थी पारसमणि। पारसमणि फिल्म का एक गीत, जिस गीत को रफी साहब ने आवाज से संवारा, लेकिन उस फिल्म के पहले रफी साहब ने दोस्ती फिल्म के गीत गाए थे, और दोस्ती फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर चाहते थे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ये गीत रफी साहब से गवाएं। और जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने रफी साहब से संपर्क किया और हाथ जोड़कर विनती की, कहा कि हम आपको आपकी फीस नहीं दे सकते, तो रफी साहब ने एक को दाईं तरफ, एक को बाईं तरफ, और दोनों को अपने बाजुओं में लेकर कहा कि दोस्त, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, बेफिक्र रहिए। तो यहां से जब रफी साहब के आशीर्वाद से कहना चाहिए, और जब उन्होंने डरते डराते उन्हें एक लिफाफे में रुपए जीत दिए थे, वो मैं आपको बता दूं कि 1,000 रुपए थे। रफी साहब ने लिफाफा खोला, 1,000 रुपए देखे।

सौ के 10 नोट, 5 नोट लक्ष्मीकांत को और 5 नोट प्यारेलाल को दिए। वो दोनों लोग जीवन भर उन नोटों को संभाल कर रखे रहे। श्रोताओ, यह होती है इंसानियत, यह होता है आशीर्वाद। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी भारतीय फिल्म संगीत की जब भी बात चलेगी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में एक और खूबसूरत गीत आपको सुनवा रहे हैं। रफी साहब की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत है। आपको बता दें कि मजरूह सुल्तानपुरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के पहले ऐसे गीतकार हैं जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था। तो बहुत खूबसूरती है इस गीत में, उसका आनंद लीजिए।

0: मेरे हमदम मेरे दोस्त, इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे रफी साहब को। गीत मजरू सुल्तानपुरी का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: ब्रेक के बाद फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, एक बार फिर आपका स्वागत है। फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, अब एक ऐसे गीतकार के द्वारा लिखित गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जो जीवन से परिपूर्ण है, जीवन की संपूर्णताओं से परिपूर्ण है। और गीतकार जिन्हें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता, अनजान के नाम से, अनजान उनका नाम रखा गया, अनजान जिन्हें कोई ना जाने। लेकिन आपको बता दूं कि इस समय के जो सुप्रसिद्ध गीतकार समीर है, समीर के पिता का नाम अनजान है। अब आपको लगेगा कि उन्हें कोई ना जानता हो। उन्होंने एक ऐसा सुपरहिट गीत लिखा और किशोर कुमार ने जिस अंदाज में उस गीत को गाया है, गायकी का कमाल है। इस गीत को सुनिएगा, जीवन से परिपूर्ण गीत है। जीवन की सफर की जब शुरुआत जहां से है और जहां तक आप इस गीत की संपूर्णता को देख सकते हैं, उसकी आत्मीयता को उतार कर जिस अंदाज में किशोर कुमार साहब ने इस गीत में जान डाल दी, अद्भुत और अद्वितीय है।

मुकद्दर का सिकंदर। श्रोता, इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। कमाल तो गीतकार अनजान साहब का था जो उन्होंने इतने खूबसूरत गीत की रचना की, और अद्भुत कमाल जब शब्दों में, स्वरों में जिस तरह से किशोर कुमार साहब ने इसे पिरो दिया। तो श्रोताओ, कुछ चीज़ें अद्भुत और अद्वितीय होती हैं, हर क्षेत्र में होती हैं, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में भी। आज फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक पंजाबी सिख युवक अपने मन में और मस्तिष्क में ये बात लेकर मुंबई पहुंचा था कि उसे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, और वहां जब उनके फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित करने के लिए जो गिव एंड टेक वाली बात थी, वो सिद्धांत पर जब उन्होंने काम किया तब जाकर वो इस फिल्म इंडस्ट्री में एक सफल गायक के रूप में स्थापित हो पाए थे। और उसमें इंदिवर साहब की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि जब इंदिवर साहब को ये बातें पता चली थी, जब उनके बारे में जाना कि एक युवक इस तरह से जो है अपने आप को संघर्षरत है इस इंडस्ट्री के अंदर, तब उन्होंने एक ऐसे गीत की रचना की और कहा कि जगजीत सिंह तुम खुद इस गीत को गाओ और इस गीत में वो दर्द लाकर दिखाओ जो दर्द तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे समर्पण के दौरान, तुम्हारे जो पसंदीदा चीज को देने के दौरान आई है। तो श्रोता, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन को बदलने में सक्षम होती हैं और जीवन में अपने आप को बदलने का मादा रखती है। श्रोताओं,

हम आपसे बात कर रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी एक एक ऐसा कमाल किया है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि जब तक संगीत की बात होगी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बिना कोई संगीत बच ही नहीं सकता, पूरा हो ही नहीं सकता। और अगर गीतकार आनंद बख्शी साहब की बात करें तो आनंद बख्शी साहब एक ऐसे गीतकार हैं, अनमोल, अद्भुत, अद्वितीय, जो शब्द इस्तेमाल किए जाए आनंद बख्शी साहब के लिए कम है। आनंद बख्शी साहब ने लगभग हर मूड के गाने लिखे, हर तरह के गाने लिखे, और गाने लिखे, गानों के दौरान, लिखने के दौरान ये भी सजेशन दिया कि इस गीत को इससे गवाइएगा, इस गायक से गवाइएगा, ये गीत सुपरहिट हो जाएगा। श्रोताओ, ऐसा ही एक गीत रचना तो की आनंद बख्शी साहब ने, लेकिन जब गवाने का नंबर आया तो बहुत सारे गायकों की श्रेणी में एक ऐसा नया गायक उभर कर सामने आया जिसकी मखमली आवाज ने एक ऐसा जादू बिखेरा कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में वो आवाज एक नायाब आवाज बनकर उभर गई। पंकज उधास साहब। पंकज उधास साहब को अगर आप याद करें आज तो आपको नाम फिल्म की एक गीत याद आएगा, चिट्ठी आई है, और उस चिट्ठी ने जो कमाल किया था वो उस कमाल को हम आपको सुनवा रहे हैं। लीजिए।

नाम फिल्म में पंकज उधास और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही श्रोताओं आपको बता दें कि इसे लिखा था आनंद बख्शी साहब ने और संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय दिन के 11 बजने को है। श्रोताओं कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम जिसका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे।
1: श्रोताओं नमस्कार। फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन के साथ आज चुने हुए विषय पर आपसे करेंगे बात और सुनवाएंगे गीत हमारी पसंद के। दोस्तों जैसा हमारा चित्त होता है हमें संसार भी वैसा ही दिखाई देता है। यदि मन में सकारात्मक और सद्भाव हो तो हर ओर अच्छाई नजर आती है। हालात भले डगमगाए लेकिन मन अच्छाई पर डिगा रहता है।

0: हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, अगर हम वहीं देखें और उससे सीखें तो रिश्ते भी बेहतर बनते हैं और मन भी हल्का रहता है। शोध से पता चला है कि दूसरों की सराहना करने से मस्तिष्क में फील गुड हार्मोन बढ़ते हैं और तनाव कम होता है। जब आप दूसरों की अच्छी आदतों और गुणों को पहचानते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। दूसरों की अच्छी आदतों पर ध्यान देने से हम अनजाने में उन्हें अपने जीवन में अपनाने लगते हैं और ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारा दिमाग उसी दिशा में ढलता है जिस दिशा में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। दूसरों में अच्छाई देखने का अभ्यास मस्तिष्क की संरचना तक बदल सकता है जिससे लोग स्वाभाविक रूप से अधिक शांत और खुश रहने लगते हैं। तो चलिए लोगों में अच्छाई देखने के गुण और सकारात्मक रवैया यानी जित देखूं तित भला के बारे में आप क्या कहेंगे? जुड़ते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से। हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते जी।
0: हमारा आज एक विषय रहता है, उस पर हम आपसे बात करते हैं, तो क्या आप अपने उस विषय पर आप हमें अपने विचार बताएंगे?
1: तो विषय बताएं क्या है जी?
0: जित देखूं तित भला, जहां हम देखें वहां हमें भला दिखाई दे, अच्छाई दिखाई दे, इस विषय पर आप क्या कहेंगे?
1: जहां हम देखें
0: वहां हमें अच्छा दिखाई दे, क्या ऐसा होता है?
1: हाँ होता है ना।
0: हाँ बताइए, इस विषय में आप क्या कहेंगे?
1: गांधी जी के तीन बंदरों की याद है, बुरा मत देख, बुरा मत बोल, वो अच्छे से अच्छे विचार रखें, अच्छा से अच्छी सोच रखें, अच्छा से अच्छा काम करें, अच्छा देखें, सबके प्रति अच्छा सोचें।
0: तो आपको किसमें क्या बात अच्छी लगती है? आपके दोस्त, परिवार, नाते रिश्तेदार, या आप जहाँ कहीं भी, एक कोई अनजान भी यदि आपको मिल जाता है तो उसमें आपको कभी कोई अच्छाई दिखाई दी हो तो एक आध उदाहरण या कोई इंसिडेंट हमें बताइए।
1: हम तो सब जितना मन का अच्छा करते, हमारे पिताजी ने एक अच्छा काम किया, देश हित के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़के महात्मा गांधी के नेतृत्व में जेल गए।
0: अच्छा,
1: फ्रीडम फाइटर थे हमारे पिताजी, 13 मार्च सजा काटी आजादी में।
0: क्या नाम था आपके पिताजी का? सादर नमस्कार है हमारा आपके पिताजी के लिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बता दीजिए, क्या कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बता जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार।
2: नजर

0: हेलो, नमस्ते जी। कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैम, मैं पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीश कुशीवगढ़ जिला रायबरेली से। जी
0: अरे पिंकी जी, रायबरेली से बहुत दूर से बात कर
1: जी
0: रहे हैं।
1: जी आज मैं आपके कार्यक्रम से फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ मैम। मुझे आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। मैं आपका कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर से सुनते हैं।
0: अच्छा, अच्छी तरह से सुनाई
1: वहाँ
0: देता
1: से
0: है।
1: कनेक्ट करके सुनाते हैं ना मैम, सुनते हैं हम।
0: जी
1: तो
0: जी
1: आज मैं आपके कार्यक्रम में पहली बार जुड़ी हूँ।
0: अच्छा, आप कार्यक्रम इतने समय से सुन रहे हैं तो आज पहली बार क्यों लगाया आपने फोन? पहले क्यों ट्राई नहीं
1: जी
0: किया?
1: मैम, पहले मुझे नॉलेज नहीं था, तो मुझे किसी ने जानकारी दी। मैंने
0: हाँ
1: मतलब कार्यक्रम के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे नंबर भी दिया और बोला कि कॉल ट्राई करना। तो कल से ट्राई कर रही थी, कल भी मिल गई थी, तो कल नहीं कॉल रिसीव हुई, आज हो गई।
0: आज हो गई। चलिए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि पहली बार
1: जी, और
0: आपका
1: मैम
0: फोन
1: मैं
0: लगाए।
1: आपका शुभ नाम जानना चाहूंगी, क्योंकि आज मेरी फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है।
0: जी, तो हम बता दें, हम प्रियंका बात कर रहे हैं आपसे।
1: जी, और मैम मुझे ना आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने ये सब मतलब जो बोलना और ये मतलब सब एक मतलब रेडियो से ही मैंने सीखा है मैम, आप लोगों को सुन सुन के। और
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है।
1: मैम कैसी हैं आप?
0: हम बहुत अच्छे हैं। और आपने जो ये बात कही ना कि हमने रेडियो से सुन सुन के बोलना सीखा है या बोलने का तरीका सीखा है, तो ये एक अच्छी बात आपने हमसे और रेडियो से सीखी है। तो पिंकी जी, आज हमारा विषय भी ऐसा ही कुछ है, तो बताइए, जित देखूँ
1: जी
0: तित भलो, तो इस बारे में
1: बिल्कुल
0: आप क्या
1: मैम। और मैम
0: कहेंगे?
1: रेडियो के माध्यम से ये मोहब्बत ही ऐसी है कि सभी श्रोता इतनी दूर होते हैं, फिर भी रेडियो के माध्यम से हम लोग एक दूसरे के माध्यम से कनेक्ट हो जाते हैं।
0: जी बिल्कुल। तो लेकिन यही बात, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जित देखूं तित भला, यानी आकाशवाणी रेडियो जो है वो हर तरफ अच्छाई
1: जी
0: और भलाई का काम कर
1: बिल्कुल
0: रहा
1: मैम,
0: है।
1: बिल्कुल मैम।
0: अच्छा पिंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। और अब एक सप्ताह बाद आप फिर से ट्राई कीजिएगा, है ना, और
1: ठीक
0: हमसे
1: है
0: बात
1: मैम,
0: कीजिएगा।
1: बिल्कुल मैम। मुझे आपके यहाँ का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि मैम आप लोगों से मेरी बात हो, आज हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: जी, तो ऐसी ही
1: और
0: अच्छी
1: मैम मेरे
0: लगने
1: दोस्त
0: वाली,
1: भी आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं मैम, उनका नाम क्या ले सकते हैं आपके
0: बिल्कुल,
1: कार्यक्रम
0: दो
1: में?
0: तीन दोस्तों का नाम लीजिए और उन्हें भी ये जानकारी दीजिए, जैसे आपको कहीं से जानकारी मिली है फोन
1: जी
0: लगाकर
1: जी
0: बात
1: मैम,
0: करने की।
1: मुझे

0: और मेरी दोस्त हैं गुंजन तिवारी, और मेरी सिस्टर है रिंकी, और मेरे भाई है दिलीप राजमाही, नीरज राजमाही।
1: अच्छा
0: श्रोता शिकायत भी करते रहते कि मेरी कॉल नहीं लगती, कॉल नहीं। मैम, जब प्रयास करेंगे तभी तो हमारी कॉल लगेगी, जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे, बस सोचते रहेंगे कि हमारी कॉल नहीं लगेगी, तो मैम कैसे लग जाएगी।
1: बिल्कुल, लेकिन वो श्रोता भी प्रयास करते होंगे तभी तो शिकायत कर रहे हैं ना। बिना प्रयास के
0: नहीं
1: तो कोई
0: मैम, मैं
1: शिकायत
0: बहुत
1: नहीं
0: सारे
1: करेगा।
0: चैनल से सुनती हूँ मैम। देखिए मैम, बहुत सारे श्रोता हैं जो एक साथ कॉल लगाते हैं तो किसी की कनेक्ट हो पाती, किसी की नहीं हो पाती, लेकिन
1: जी
0: कभी शिकायत नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना हौसला ऐसा रखे कि कभी हिम्मत ना हारे, टूटने भी लगे तो अपने हौसलों को बुलंद करे, एक ना एक दिन आपकी कॉल जरूर लगेगी।
1: अरे वाह पिंकी जी, बातों ही बातों में आपने तो कितनी सारी बातें कह दी जीत देखू ते तो भला के बारे में।
0: जी बिल्कुल
1: चलिए,
0: मैम,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे और भी श्रोता इंतजार कर रहे हैं आपसे,
0: जी
1: काफी
0: जी
1: लंबी बात
0: बिल्कुल
1: हो
0: मैम।
1: गई है।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्ते।
1: नमस्कार जी।
0: कौन बात कर रहे हैं? अपना नाम और जगह का नाम बताइए।
1: मैं मनीष कुमार बोल रहा हूँ, आगरा से।
0: स्वागत है आपका मनीष जी। आज हमारा कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, यानी हम एक विषय आपको देते हैं एक, और उस पर आप अपने विचार हमें और हमारे श्रोताओं को बताएं ताकि हम जान सके कि उस विषय पर आप क्या सोचते हैं। जी, हमारा विषय हम बता रहे हैं, बिल्कुल बातचीत तो अभी शुरू हुई है। हमारा विषय है जित देखू तित भला।
1: जैसे दूसरी तरफ देखो तो एक दूसरे को मतलब तो अच्छा लगना चाहिए पहली बात से, और उसकी बुराई मत करो,
0: जी
1: यही है दूसरे का रवैया।
0: जी लेकिन आप दूसरों में कोई अच्छा गुण कैसे देखते हैं? कौन सा गुण ऐसा है जो आपने किसी दूसरे से अपनाया हो, कोई अच्छा गुण?
1: गुण की तो उससे जन्म मालूम पड़ती है, उसके उसके दोनों के तालमेल मिलते हैं, वातावरण से अच्छे गुणों की मालूम पड़ती है।
0: आपने कोई बात अच्छी किसी से सीखी है, हमें बताएंगे आप?
1: अच्छी तो ये मतलब किसी से बुरा मत बोलो, अच्छा बोलो, बुलाओ
0: ये तो एक विचार है ना,
1: है तो।
0: जो हमारे अपने होते हैं कि भाई किसी का बुरा मत करें, है ना, करें हम। और लेकिन ये होता है ना कि जैसे किसी में कोई गुण होता है कि वो बहुत सलीके से रहता है, कोई सलीके से बोलता है, तो क्या उसकी वो बात वैसी बात आप अपनाते हैं या नहीं?
1: बनाते हैं मानव लाख होते हैं, बात वो मानी भी जाती।
0: चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्ते
1: हेलो,
0: नमस्ते
1: नमस्ते जी।
0: जी। बताइए अपना नाम और जगह का नाम। स्वागत है आपका।
1: जी मैं ग्राम अध्यक्ष गोना कुमार थाना सिवना तहसील महरौली जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना वीडियो तो दीपक कुमार नाम से बात कर रहा दीदी।
0: अच्छा जी, दीपक जी, अचानक आपकी आवाज़ थोड़ी कुछ ऐसी आने लगी कि जैसे कहीं नेटवर्क की दिक्कत हो।
1: जी, हमारे यहाँ जियो नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है।
0: हाँ, चलिए ठीक है, आपसे बातचीत हमारी हो पा रही है, बहुत अच्छी तरह तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहेंगे। आज विषय है बात आपकी, गीत हमारे प्रोग्राम है, यानी लोगों में अच्छी बातें और सकारात्मक रवैया को लेकर आप क्या सोचते हैं।
1: जी देखो, ऐसा है कि हम हैं तो हम भले हैं तो सब अच्छे, जैसे आप लोग अच्छे हैं तो सभी अच्छे हैं। कहने लगते कि आप भले तो जग भला।
0: जी
1: जी, व्यक्ति अगर व्यक्ति स्वयं के लिए सोचे, अगर आपके प्रति, अगर जो व्यक्ति स्वयं के लिए देखे कि हम अगर किसी के सामने एक अंगुली बताते हैं कि आप में एक कमी है, तो तीन अंगुली अपनी ही कमी बताती है। पहले तो आदमी को अपनी कमी देखना चाहिए या किसी दूसरे की कमी बताना चाहिए।
0: जी
1: जी, अपन सारे से किसी को एक उंगली बता दे, तीन उंगली गलत आपको ही देती है। हाँ, इसलिए हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी की भलाई करना चाहिए।
0: भलाई करना चाहिए और भलाई सब में देखना भी चाहिए।
1: जी
0: जी, धन्यवाद दीपक जी, आपका नमस्कार।
1: जी दीदी, और हमारी एक आपसे शिकायत है।
0: जी बिल्कुल कीजिए।
1: कुछ श्रोता कहने लगते हैं कि हमारी कॉल नहीं निकल रही है, तो आपसे आपसे विनम्र निवेदन है कि जितना कॉल रिकॉर्ड किया जाए, जितना आप निकाल सको, एक्स्ट्रा कॉलिंग रिकॉर्ड हो जाती है। कुछ श्रोताओं की शिकायत रहती है हमारी कॉल शामिल नहीं हुई है, और कार्यक्रम का इंतजार करते रहते हैं, कॉल भी उसकी रिकॉर्ड हो जाती है, फिर भी परेशान नहीं हो पाता है समय के अभाव से।
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। समय के अभाव के कारण हमारे वो श्रोता रह जाते हैं कई बार, क्योंकि जिनके कॉल हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि कई श्रोताओं की फरमाइश ऐसी होती है कि अगर एक गीत उन्होंने 7 मिनट का चुन लिया है तो फिर हमें कॉल ही नहीं लेना, वही एक हमारे पास रास्ता रह जाता है ना।
1: इसीलिए तो आपसे कहा कि कॉल बिल्कुल सीमित लें, जितना आप कॉल लें तो बिल्कुल सीमित लें। जान लो हमें 10 कॉल प्रसारण कर पा रहे तो 10 ही कॉल लें, ज्यादा कॉल एक्स्ट्रा ना लें, क्योंकि श्रोता को दिक्कत हो सुनने के लिए। श्रोता 1 घंटा का कार्यक्रम का इंतजार करते हैं और उनका
0: जी,
1: कॉल ना निकले तो उनको बहुत दुख होता है।
0: लेकिन देखिए दीपक जी, ऐसा भी है कि कई बार हम सीमित कॉल ले लेते हैं, लेकिन कई श्रोता के ऐसे रहते हैं कि नेटवर्क की दिक्कत रहती है, कहीं कोई श्रोता अच्छी तरह बात नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, तो फिर हमें उनके कॉल हटा देने पड़ते हैं, इसलिए भी हम एक्स्ट्रा कॉल रिकॉर्ड करते हैं, है
1: जी
0: ना। तो दोनों ही तरह से सोचा जाए तो आपकी भी बात सही है, और क्योंकि हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि श्रोताओं के फोन कॉल भी लिए जाए, उन्हें अच्छी क्वालिटी मिले सुनने के लिए, हम इस पर भी ध्यान देते हैं, और उनकी जो
1: जी
0: फरमाइश है वो भी वो पूरी सुन सके, इस पर भी हमें सोचना पड़ता
1: और
0: है
1: एक
0: ना।
1: सुझाव और है हमारा
0: बिल्कुल।
1: कि जो आप विषय रखती हैं कार्यक्रम में, तो विषय अगर कार्यक्रम के अंत में एक दिन पहले के कार्यक्रम में बता दिया जाए, जैसे कल का विषय है जो आज के कार्यक्रम में बता दिया जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: जी, आपका ये सुझाव बहुत ही सराहनीय है, हम इस विषय पर अवश्य विचार करेंगे आपके।
1: इसलिए कि हम लोग जो आप विषय रखती हैं तो तुरंत की तुरंत जल्दी बात सोचने समझने में दिक्कत आ जाती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: पहले से
0: बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही कि हर व्यक्ति तुरंत बोल पाने में सक्षम नहीं होता है, समर्थ नहीं होता है, तो एक दिन पहले वो उस विषय पर सोच ले और अगले दिन फिर बात कर सकता है।
1: क्योंकि हम लोगों का कॉल लग जाता है तो बहुत खुशी हो जाती है, तो फिर विषय में दिक्कत आ जाती है बोलने में।
0: बिल्कुल, ये बात आप हम मानते हैं और हम ऊपर के अधिकारियों तक आपकी ये बात अवश्य पहुंचाएंगे, तो हो सकता है आने वाले जो भी फोन कॉल्स रिकॉर्ड्स होंगे या प्रोग्राम रिकॉर्ड होंगे तो आप उसमें सुनिएगा अगले

0: दिन का विषय सुन सकते हैं। यदि हमें इजाजत मिली, अनुमति मिली, तो अवश्य इस बात को हम प्रसारित करेंगे।
1: जी दीदी, हमारी बात किससे हो रही है? आपका शुभ नाम?
0: जी, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ।
1: जी दीदी, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। आपके सभी कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
0: जी जी जी, हमें भी आपसे बात करके अच्छा लगा। आपने शिकायत भी बहुत अच्छी की, तो उम्मीद करते हैं उसका समाधान भी आपको मिला होगा, और आपने जो सुझाव दिया वो भी हमें अच्छा लगा। तो हम प्रयास करेंगे कि हम आपके उस सुझाव पर विचार करें और उस पर अमल करें।
1: जी दीदी
0: जी, धन्यवाद दीपक जी।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार।

0: मोबाइल पे सुनते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बात आपकी, गीत हमारे, हम एक विषय दे रहे हैं, आप क्या उस पर बोल सकते हैं?
1: बिल्कुल बोला है। मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ, इनका नाम से मैं जुड़ा हुआ हूँ आकाशवाणी से।
0: जी। आज हमारा विषय है जित देखू तित भला, यानी हम जो भी, जिन भी लोगों से मिलते हैं उनमें हमें अच्छा दिखाई देता है, इस विषय पर आप क्या कहेंगे?
1: अच्छा भलाई मतलब जैसे किसी की तो एक तो बुराई नहीं होनी चाहिए
0: जी,
1: और
0: लेकिन बुराई
1: किसी
0: तो होती ही
1: की
0: है ना, हर सभी में होती है बुराई, तो सभी में होती है और अच्छाई भी होती है, लेकिन हमें
1: अच्छा ही होना
0: देख,
1: चाहिए, सबसे
0: हाँ,
1: ज्यादा अच्छा ही होना चाहिए।
0: अच्छा ही होनी चाहिए। तो वही तो हम कह रहे हैं कि आप लोगों में ज्यादा से ज्यादा अच्छाई देखने का नजरिया रखते हैं, कैसे रखते हैं, और क्या उनकी कौन सी बात आपने किसी दूसरे से अपने जीवन में अमल में लाई हो?
1: भलाई ना आवे उसपे तो उसकी दूसरे की मतलब बुराई भी नहीं करना चाहिए, पहली बात तो एक ये है हमारी।
0: बराबर, ये एक अच्छाई वाली बात आपने कही कि लोगों से ये अच्छाई लेनी चाहिए कि हम किसी की बुराई ना करें।
1: दूसरे बुजुर्गों की उनकी कोई अच्छी बात बताए तो उसके दिमाग में रखनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और जैसे मतलब कोई राम आड़े है वैसी है उसकी बातें बताते हैं तो उसकी भी बतानी चाहिए। दूसरा पूछता है तो मतलब क्या सीख क्या उसमें से तुम,
0: बिल्कुल।
1: ये बात
0: जैसे
1: तो
0: कि हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं और जब स्कूल से बच्चे घर आते हैं तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि आज क्या सीखा है स्कूल में,
1: सही
0: अच्छी
1: बात
0: ही
1: है।
0: बात सीख कर आते हैं बच्चे, पढ़ाई से संबंधित बात सीख कर आते हैं। तो ऐसे ही हम आम जन जीवन में जो है इस तरह की बात को हमें देखना चाहिए कि हम जहाँ सीखें अच्छा सीखें।
1: अच्छा सीखें, सही बात
0: जी
1: है जी, सबसे ज्यादा तो कम ही यही है।
0: बिल्कुल। तो प्रदीप कुमार जी, धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।
1: नमस्कार जी।

0: कर दे।
1: हेलो, नमस्ते। गोंडा?
0: नमस्ते, मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ गोंडा से। हाँ, यूपी।
1: अच्छा जी, क्या नाम बताया, एक बार फिर से बताइए।
0: अनु पांडे
1: अनु जी।
0: जी मैम, आज मेरी फर्स्ट बार कॉल लगी है और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है।
1: जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे नए श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं और पहली बार फोन किया उन्होंने और उनका फोन लगा।
0: हाँ, अब मुझे आपसे जोड़ा है पूनम जी ने, जो कानपुर की है, और मैं आपके लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी।
1: जी।
0: आसमान से तोड़ के एक तारा दिया है, आसमान से तोड़ के एक तारा दिया है, मेरी तन्हाइयों का सहारा दिया है, मेरी किस्मत भी मुझसे नाज करती होगी क्योंकि ऊपर वाले ने दोस्त भी मुझको इतना प्यारा दिया है आप जैसा।
1: तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और जब हमारे दोस्त इतने अच्छे हैं तो हम तो अच्छे होंगे ही, क्योंकि आपसे ही तो हम अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, जो हमारा आज का विषय है कि जित देखू तित भला। हम दूसरे में कोई अच्छी बात देखते हैं, सीखते हैं, उनसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तो इस
0: मैम
1: बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, तो ये जो आपने बात कही कि हम जैसे प्यारे दोस्त आपके जीवन में हैं, तो आप जैसे प्यारे श्रोता है, तभी तो हम भी इतने अच्छे हैं। आपसे बात करके ही हम सीखते हैं अच्छी बातें।
0: जी मैम, ना हम लोग आपसे सीखते हैं, आप लोग कुछ बहुत थोड़ा बहुत मुझसे सीखते होंगे, लेकिन मुझे तो लगता है हम लोग ज्यादा आप ही से सीखते हैं।
1: अच्छा, और हमें लगता है कि हमारे पास श्रोताओं की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है ना, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा हमारे श्रोताओं से सीखते हैं। जी, तब ये बताइए कि आप अपने आसपास के वातावरण में और अपने आसपास मिलने जुलने वाले लोगों से क्या अच्छी बात सीखते हैं?
0: मैम, मेरे आसपास सबसे बड़ी बात ये बहुत अच्छी बात है कि अपनापन बहुत है, और मेरे आसपास कोई भी बात करता है तो तेरा मेरा करके बात नहीं करेगा, अपना करके बात करेगा, कि जैसे लगेगा सब अपना ही है, और एक दूसरे का सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, ये बहुत अच्छा लगता है मुझको।
1: बहुत अच्छी बात है, तो ये चीज आप दूसरों से सीखते हैं।
0: हाँ
1: जी, बहुत अच्छी बात है अनु जी, और हमें इसी तरह आप फोन करते रहिए, अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहिए, हमारे श्रोताओं को भी अवगत कराइए, और हमारे श्रोताओं की और भी संख्या आपके माध्यम से बढ़े, ये हम उम्मीद करते हैं।
0: जी मैम, अब संख्या भी बढ़ाएंगे, जब मुझको सफलता मिल गई, आज मेरी कॉल लग गई, बात हो रही है, तो हम और लोगों को भी जोड़ेंगे और हमेशा जुड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल, क्योंकि अपनी खुशी तो हम सभी को बताते हैं ना। आज आप
0: हाँ,
1: कितने दोस्तों से कहेंगे कि आज हमारा फोन कॉल लगा, है ना?
0: बहुत
1: जी
0: सारे लोगों से बताऊंगी ना, आज मेरी पहली बार कॉल लगी। वैसे तो मैं आकाशवाणी पे, FM पे बहुत सारी जगह कॉल लगाती हूँ, पर आपकी आज मेरी पहली कॉल है, मेरी पहली बार लगी है।
1: जी, तो अनु जी बस इसी तरह हमें फोन करते रहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आज आपका फोन कॉल लगा है तो आप अगला कॉल अब एक हफ्ते के बाद लगाइए, ताकि हमारे दूसरे श्रोताओं को भी अवसर
0: जी
1: मिले।
0: मैम,
1: जी,
0: जी मैम, मैं
1: नमस्ते।
0: इस चीज का हमेशा ध्यान रखती हूँ, मैं कहीं भी कॉल लगाती हूँ तो हफ्ते 10 दिन का गैप कर ही देती हूँ, वहाँ रूल है 10 दिन के गैप का, तो भी नहीं है तो भी, क्योंकि इससे ये अच्छा लगता है कि अलग अलग, मतलब और भी ज्यादा लिसनर को जुड़ने का मौका मिलता है, और नए नए लोग आते हैं तो नई नई बातें जानने का मौका मिलता है, उनके आस पास के बारे में जानने का मौका मिलता है, तो काफी अच्छा लगता है। और
1: बिल्कुल
0: जब हर बार हम ही कॉल करेंगे, हम ही बात करेंगे, तो फिर नई नई बातें कहाँ से जानेंगे और हमारे दोस्तों की संख्या कहाँ से बढ़ेगी।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही अनु जी आपने, मतलब ये तो बिल्कुल सटीक बात है। आज हमारे कार्यक्रम का जो शीर्षक है, बात आपकी गीत हमारे का, उससे संबंधित आपने बहुत अच्छी बात कही है, ये हमारे लिए और हमारे
0: अरे
1: और
0: बहुत
1: श्रोताओं के लिए भी।
0: जी मैम,
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते मैम।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने और टिकाऊ रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कुछ प्रकारों पर उत्पाद शुल्क को माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने ओमान के तट के पास कल भारत के वाणिज्यिक जहाज सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। घटना के बाद मंत्रालय ने अमेरिका के विदेश मामलों के प्रभारी जेसन मीक्स को तलब किया है। जहाज पर सवार 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 3 लापता हैं। राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-6112 का शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से प्रदेश की महिलाएं अपनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव दर्ज कर सकेंगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के 34 जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है फिल्म आशिकी से, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल ने। शब्द रचना है समीर की और गीत की धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, ये गीत पसंद करना चाहा था आप सभी श्रोताओं ने कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने। इसी गीत को सुनना चाहा था गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले ने। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अगली फरमाइश, जिसे हमने लिया है फिल्म सड़क से। स्वर हैं अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू के। ये शब्द रचना है समीर की और संगीत निर्देशन है समीर और सुरेंद्र साथियों का। तो इस गीत को सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। इसी गीत को सुनना चाहा है बिहार कॉलोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी, प्रकाश वीर राजपूत, डोडी लाहौरा बलोद से कमलेश जयपुरिया ने, टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला प्रदीप ने।

फरमाइश गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिल का क्या कसूर से। स्वर है साधना सरगम की, गीत लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत को सुनना चाहे आप सभी ने सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, सादिक भाई और शाहिद भाई। इसी गीत को सुनना चाहे मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, बीर सिंह लाठी, लखविंद सिंह और महावीर संधु, गुरचरण और रमेश मिगलानी ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

0: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।
1: खंधम धम त्रिशूल गाड़ के, प्रलयंकारी गति से भिन्न खेल गगन फाड़ के, ज्वाल से बवाल से

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म रहना है तेरे दिल में, सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। इस गीत को सुनना चाहे यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार ने।

इस गीत को पसंद किया था आप सभी ने, यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार ने। इस गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।

0: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कवि हेमंत देवलेकर।
4: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
5: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जंग लगी तलवार का 6वां भाग।
6: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, शिबू यशवंत के साथ घर लौटता है। यशवंत नारायणी को शिबू के टीबी होने की बात बताता है तो वो दुखी होती है। गेहूं के खेत में मजदूरों की सभा को शास्त्री जी संबोधित करते हैं और हड़ताल का आह्वान करते हैं। गांव के किसान भी मजदूरों का साथ देते हैं। कंपनी की शह पर सभा को सफल होने नहीं दिया जाता। यशवंत बलबीर स्वामी के साथ शास्त्री जी से मिलने जाता है। अगले दिन दलित मजदूरों की सभा करने का फैसला होता है। यशवंत नारायणी को हड़ताल का विरोध न करने के लिए समझाता है। बसुमती का लड़का नौकरी से निकाले जाने के बाद साई नदी के पास बनी दलित बस्ती में अपनी अम्मा से मिलने अपनी लड़की पार्वती के साथ आता है। भृगु यहीं पर रहकर मजदूरी करना चाहता है। अपनी अम्मा के मुंह से हड़ताल की बात सुनकर वो चौंकता है। अब

0: क्या आप लोग तैयार हैं?
1: मजदूर एकता
2: जिंदाबाद।
0: हमारा सच्चा उद्देश्य तभी सफल होगा जब सबके पास आत्मत्याग की भावना होगी। हड़ताल की सफलता में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए।

0: तथा चीफ इंजीनियरों को भेजने के लिए नोटिस तैयार किया है। क्या ये आप सब लोग सुनना चाहते हैं? तो सुनिए, रायबरेली जिले के मजदूर सन 1976 के अप्रैल महीने से काम की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे अनेक प्रतिनिधियों ने अब तक केंद्र और राज्य के मंत्रियों से बात की है, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रही। पिछले लोकसभा चुनाव में सरकार भी बदल गई है। नई सरकार से मजदूरों को आशा की नई किरण दिखाई दी है। नई सरकार बनने के बाद हमने 6 महीने इंतजार किया, पूरे 6 महीने। केंद्र के श्रम मंत्री, राज्य मंत्री, आयुक्त, सहकारी केंद्र और राज्य के मंत्रिमंडलों के सचिव से मिलकर हमारे प्रतिनिधिमंडल ने बहुत बार बात की। सबके जूते घिस गए। कंपनी के अधिकारियों ने सरप्लस मजदूरों की सूची तैयार की, जिससे दिहाड़ी मजदूरों के सिर पर बिजली गिरी। मौखिक रूप से स्थानीय यूनियन के स्थानीय संचालक का जो भी समझौता हुआ वो टूट गया। संचालक ने विश्वासघात किया। अब कोई उपाय नहीं बचा है, इसलिए मजदूरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला किया है। यह हड़ताल 20 तारीख से शुरू होगी और उचित व्यवस्था होने तक चलती रहेगी। मेरे साथ बोलिए, मजदूर यूनियन
1: जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ेंगे,
0: जीतेंगे,
1: लड़ेंगे,
0: जीतेंगे। कल हम 1 हफ्ते का नोटिस देंगे, उसके बाद हम सब लोग इस धर्म युद्ध में कूद पड़ेंगे। मजदूर एकता
1: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
2: हर जोर जुल्म की टक्कर में
3: संघर्ष हमारा नारा है।
2: हर जोर जुल्म की टक्कर में
3: संघर्ष हमारा नारा है।
4: अध्यक्ष महोदय, हमें हड़ताल से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हमारी एक शंका का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है।
0: शंका? कैसी शंका? साफ साफ कहो।
4: हड़ताल के नतीजे के बारे में हमें अभी कोई स्पष्ट गारंटी नहीं मिली है।
0: क्या गारंटी चाहते हो?
4: महोदय, हम लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। हम लोगों को पेट पर गांठ बांधनी पड़ेगी। हमारे बच्चे भूखे भी मर सकते हैं। बोलो, क्या गारंटी दोगे?
1: हाँ, बोलो बोलो,
4: गारंटी दोगे?
1: बोलो।
0: किसने कहा कि हम लोग गारंटी नहीं दे सकते? हम गारंटी देंगे और जरूर देंगे। हर तरफ से पैसों का बहाव आएगा, कोई भूखा नहीं मरेगा। साय की धारा महानदी बनेगी।
4: ठीक है महोदय, हम लोग तुम्हारे आश्वासन पर हड़ताल शुरू करेंगे, लेकिन हड़ताल का नतीजा कुछ बुरा हुआ
0: तो क्या होगा तब?
4: तो हम लोग तुम्हें और दूसरे यूनियन नेताओं को साई के बालू में जिंदा गाड़ देंगे।
1: हाँ।

कितनी अभागी है नारायणी, जिस उम्र में उसे सुख भोगना चाहिए उस उम्र में बेचारी दिन रात मजदूरी में खटती रहती है। पति टीबी का मरीज है, उसकी सेवा अलग करनी पड़ती है। एक नन्ना बच्चा जिसके मुंह से अभी मां का दूध भी नहीं छूटा है, उसकी परवरिश किस तरह कर पाती होगी बेचारी। शायद उसकी किस्मत ही फूटी थी जो बीमार पति उसके पल्ले पड़ा। किसी दूसरे घर जाती तो उसका पति अपनी पलकों पर बिठा कर रखता। लेकिन मैं क्यों सोच रहा हूं ये सब? नहीं, मुझे पर स्त्री के विषय में सोचने का भला क्या अधिकार? कहीं मैं उसकी ओर आकर्षित तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, मुझे अपने आप को भटकने से रोकना होगा। इंसानियत के नाते भले ही मैं उसकी मदद कर दूं, बस इससे अधिक उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है।

0: रहे हैं।
1: काकी तुम मुझसे कोई काम है?
0: हाँ। अच्छा ये बता, हड़ताल होने का फैसला हो गया है क्या?
1: हाँ काकी, अब तो नोटिस भी दिया जा चुका है, हड़ताल तो होकर ही रहेगी।
0: अरे तुझसे हमको ऐसी आशा नहीं थी। अरे तू भी नेताओं के चक्कर में पड़ गया लगता है।
1: काकी है? ये हड़ताल हमारे हक की रक्षा के लिए हो रही
0: है। कैसा हक है? कैसा हक यशवंत? अरे हड़ताल हुई तो चारों ओर भूख नाचेगी, भूख, खून खराबा, लाश, चील, गिद्ध, हिंसा ही हिंसा। हे गांधी भगवान, इस नादान को क्षमा कर, क्षमा कर इसे। तू
1: चली गई काकी भी ना, बस
2: हाँ शिबू, तबीयत कैसी है भाई?
3: अरे लेचू भैया, अब तो काफी आराम है। वैसे लेचू भैया, इस कंपनी में और दलित मजदूरों की बस्ती में हम दोनों एक जैसे ही हैं।
2: है? मतलब?
3: मतलब के दोनों अपंग। मैं टीबी का मरीज, ये हड्डियां निकला शरीर।
2: हाँ भाई शिबू, मैं भी अपंग, मेरा एक पैर खराब है, लेकिन हम दोनों पहले तो ऐसे नहीं थे। हाँ। तुम भी भले चंगे थे, हाथ पैरों में जान थी, खूब मेहनत करते थे तुम।
3: अरे जो मेरा हाल है सो तुम्हारा, तुमको जन्म से तो अपंग नहीं थे ना?
2: हाँ हाँ।
3: कंपनी के काम करते हुए ही तुम्हारी ये टांग कटी।
2: हाँ भैया, सुना है शिबू, सरकार अपने कर्मचारियों को इलाज का रुपया देती है और हमें कंपनी गालियां देती है। अरे इलाज तो दूर, नौकरी से निकाल देती
3: है। अरे लीचू भैया, ये देश हमारा है और हम सब इस देश के रहने वाले हैं, आजाद हैं। अरे वो भी काम करते हैं और हम भी भरपूर मेहनत करते हैं, पर लीचू भैया फिर अलग अलग कानून क्यों है? ये कौन सा न्याय है भैया?
2: अरे शिबू, पढ़े लिखे बताते हैं कि कानून की नजर में तो सभी बराबर हैं, लेकिन अफसर की टेढ़ी नजर है। बराबरी कागजों में बंद है और उसी के साथ बंद है हमारी किस्मत। ये लीडर लोग हम गरीबों को बहका फुसला कर हड़ताल कराते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, और कुछ नहीं बस।
3: हाँ भैया, देखो तो भला, दुहाई देते हैं गरीबों की, बात करेंगे गरीबों की, उनकी भलाई की, और भलाई की मलाई चट कर जाएंगे ये लीडर लोग खुद।
2: अरे शिबू, शिबू, शिबू, आज तक किसी लीडर को पिटते देखा है? किसी लीडर को मार खाते देखा है? किसी लीडर को गरीब देखा है? किसी लीडर को मेहनत करते देखा है? किसी लीडर के बच्चे भूखे सोते हुए देखे हैं तू नहीं?
3: अरे नहीं नहीं नहीं लीचू भैया, काम धाम कोई नहीं, बस ऐश आराम भरपूर, यही तो है लीडर का मतलब।
2: भैया अपनी अपनी किस्मत है और क्या।
3: क्या करें लीचू भैया, क्या करें, हम लोग तो सिर्फ बातें करके रह जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते, नहीं कर सकते कुछ, नहीं तो हालात बदल सकते हैं।
2: अरे भैया, जब मैं साहब लोगों के घरों में सफाई का काम करता था ना, तो कान उनकी बातें सुनने में लगे रहते थे। शिवू भैया, मैंने अपने इन्हीं कानों से सुनी है दूसरे देशों की बातें।
3: अच्छा लीचू भैया, कुछ कुछ हमें भी तो बताओ। देखो लीचू भैया, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो कुछ ही तुम बता दोगे।
2: शिवू शिवू, बड़े लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, गरीब इसलिए गरीब रह जाता है कि वो पढ़ता लिखता नहीं है।
3: हाँ लीचू भैया, ये बात तो सच है। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, वो अपने यशवंत भैया को ही देख लो ना, पढ़ लिख गया तो यूनियन कमेटी में बैठ गया।
2: अरे सुनो सुनो शिबू, मैंने सुना है कि दूर देशों में सिर पर मैला ढोने की प्रथा बिल्कुल नहीं है। हाँ। और सभी को खाने के लायक तो मिल ही जाता है।
3: अच्छा

0: लिचू भैया, हम इसे भाग्य कहें, कर्म गति कहें, अनपढ़ता कहें, क्या कहें।
1: अरे नहीं शिबू,
0: देखो लिचू भैया, हम तो हालात से समझौता करके संतोष कर लेते हैं
1: बस,
0: लेकिन कुछ कर तो नहीं सकते ना।
1: इसी बात का तो रोना है।
0: देखो लिचू भैया, मैं तो बस यही सोचता हूँ कि बेटे को जरूर पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा उसे, लेकिन अभी तो हालात पेट भरने लायक भी नहीं है, कैसे पढ़ाऊंगा उसे। लगता नहीं मैं अपनी उम्र में बेटे को पढ़ता लिखता देख पाऊंगा।
1: अरे शिबू शिबू शिबू, घबराओ नहीं भैया, और सुनो और सुनो, साहिब लोग कहते हैं कि दूर देशों में गरीब भूखे नंगे क्रांति कर देते हैं, और हमारे देश में भूखे नंगों के कारण क्रांति कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं।
0: लेचू भैया, बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। अरे अपनी समझ के ऊपर है।
1: हाँ ऊपर ही है।
0: देखो भैया, हम तो विवश हैं, हमारे भाग्य में लिखा है कि हम अपनी आंखों के सामने अपनी बहू बेटी की इज्जत लुट के देखते रहे।
1: चुप कर शिवा, चुप कर।
0: कानून साहब बहादुर की तरफदारी करता रहे, गरीब की कौन सुनता है, कौन सुनता है।
1: बस कर शिवू, बस कर, तू आराम कर, मैं चलता हूँ, टाइम पास करने के लिए इधर उधर भटकूंगा बस, और कुछ भी नहीं। भगवान ने ये टाइम की कैसी विचित्र बला बनाई है। तू आराम कर, बहुत थक गया है।
0: थक तो गया हूँ, लेकिन लिचू भैया आते रहना। हाँ? अरे सुख दुख में तुम्हारा ही तो सहारा है मुझे।
1: अरे ऐसा क्यों कहता है शिव शिव, आराम से, हमें एक दूसरे का ही तो सहारा है।
0: अरे चुहिया
1: क्या है, तू आराम कर।
2: कहाँ जा रही हो नारायणी?
3: अरे आप यशवंत बाबू, कहाँ जाऊंगी मैं, पर आप कहाँ जा रहे हैं?
2: सच बताऊं नारायणी, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था, माँ विंध्या वासिनी से तुम्हारे पति के ठीक होने की प्रार्थना करके।
3: यशवंत बाबू, मेरे लिए आप कितनी चिंता करते हैं ना।
2: मुझे अच्छा लगता है नारायणी।
3: यशवंत बाबू,
2: हाँ,
3: सुना है कंपनी वाले रंगपुर से नए लोगों को लाए हैं मिट्टी काटने वाले काम के लिए।
2: हाँ सुना तो मैंने भी है नारायणी, शायद नहीं भी, लेकिन ये बात सच्ची समझो तुम।
3: मतलब कि कंपनी वाले ये बताना चाहते हैं कि हम पर हड़ताल का कोई असर नहीं होगा, हम हड़ताल वालों की परवाह नहीं करते। यशवंत बाबू,
2: हाँ?
3: मेरा तो कलेजा धक धक करता रहता है, पता नहीं क्या होगा।
2: देख नारायणी, हड़ताल वाली बात हमारे किसी के हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले लीडर अपनी हेखड़ी चलाने के लिए गरीब मजदूरों को बलि का बकरा बनाते रहते हैं। अरे ये तो उनका खेल है, कोई मरे कोई जिए, इन पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारी तकलीफों के नाम पर इनकी दुकानें चलती रहती हैं। अरे ये भी व्यापारी हैं, बड़े सौदागर।
3: ये बात आप कह रहे हैं यशवंत बाबू, आप भी तो।
2: वो क्या है ना नारायणी, कि अब मैं भीतर की बातें भी जानने लगा हूं, इसलिए कह रहा हूं। अरे हम गरीबों की किस्मत तो गाय बैलों की तरह है, जो मालिक बनता है अपने किस्म से हाँकता रहता है। अरे ये
3: आपका रुमाल गिर गया, मैं उठाए देती हूँ।
2: हाँ।
3: ये
2: अरे नारायणी, तुझे तो बुखार है,
3: वो
2: तेरा बदन तो गर्म हो रहा है, चल घर चल, आराम कर, मैं दवाई लेकर आता हूँ।
3: बाबू इतना बुखार तो रोज ही चढ़ा रहता है।
2: फिर भी तू काम पर जाती है?
3: काम पर नहीं जाऊंगी तो पेट कैसे भरेगा, मेरा काम ही मेरा आराम है। बाबू ये इस तरह मेरी तरफ टकटकी लगाए क्या देख रहे हो?
2: कुछ भी नहीं नारायणी।
3: तो मेरा मेरा हाथ तो छोड़िए ना। कब से मेरा हाथ पकड़े हुए हैं आप? डॉक्टर भी तो ऐसी नब्स पकड़कर रोग पहचानता है। आप डॉक्टर लगते हैं
2: है? क्या? हाँ नहीं पता नहीं कैसे नारायणी मैं बहुत देर से तुम्हारा हाथ पकड़े हुए हूँ। अब लो छोड़ दिया। अच्छा अब चलता हूँ।
3: अच्छा हुआ बाबू कि अभी किसी ने देखा नहीं।
2: हाँ।
3: नहीं तो पूरी लाइन में क्या पूरी कंपनी में हल्ला हो जाता।
2: हाँ हाँ वो ठीक है। अच्छा एक बात बता नारायणी।
3: क्या?
2: तेरे पति कैसे हैं?
3: ठीक है ठीक है। आप घर आएंगे उन्हें देखने?
2: हाँ हाँ आऊंगा जरूर आऊंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना नारायणी।
3: हाँ बाबू आप भी अपना ध्यान रखना।
4: अरे शिवू शिवू हमारे भूमिहीन लोग जिंदगी भर हार तोड़ मेहनत करते थे लेकिन कभी भर पेट खाना नसीब नहीं हुआ। चारे अच्छे दिन आने की आस में टकटकी लगाए इस दुनिया से विदा हुए। मगर उनका सपना कभी पूरा नहीं हुआ शिवू कभी पूरा नहीं हुआ।
5: अरे लिचू भैया वैसा ही सपना ये यूनियन वाले भी हमें दिखा रहे हैं। पर सपना तो सपना ही होता है ना। पर गरीबों के सपने भी कभी पूरे हुए हैं।
4: अरे शिवू गरीब सपनों में जीता जरूर है लेकिन सपनों को हकीकत में बदलता हुआ देख नहीं पाता। शिवू आराम से आराम से। अरे शिवू हमारे समाज की कितनी ही पीढ़ियां इन्हीं सपनों में काल कवलित हो गई हैं।
5: अरे लिचू भैया यहां से अच्छे दिन तो हमारे चारे खेरा वाले दिन थे। तब नारायणी ठाकुर साहब के यहाँ कपड़े धोने जाया करती थी। खाने पीने की कोई कमी थी नहीं।
4: अरे हाँ शिवू सुना है ठाकुर साहब मांगने जाने पर मना नहीं करते थे।
5: हाँ ठीक ही सुना है तूने।
4: अच्छा
5: पर मुझे ठाकुर साहब की एक बात अभी भी याद है।
4: कौन सी बात? हाँ
5: अरे वो चारे खेरा के कंपनी के स्कूल में हमारे दलित लड़कों को बोरी बिछाकर बैठने दिया जाता था।
4: अच्छा
5: हाँ वो एक दिन क्या हुआ कि ठाकुर साहब स्कूल पहुंचे। हाँ? और सब बच्चों की बोरियों को इधर उधर कर दिया।
4: अच्छा
5: हाँ हाँ और तब से दलित बच्चे भी साहब लोगों के बच्चों के साथ बैठने लगे।
4: नहीं मैं नहीं मानता ऐसा हुआ।
5: अरे लिचू लिचू तुझे तो ना मानने की बीमारी है।
4: अरे नहीं शिवू नहीं दलित बच्चे तो अभी भी साहब लोगों के बच्चों के साथ बैठने लायक नहीं हुए। अरे तू बीमार आदमी कंपनी का स्कूल कभी देखा है तूने?
5: देख लीजिए देख तू मुझे ताव ना दिला।
4: अच्छा
5: अरे मैंने कंपनी का स्कूल नहीं देखा तो क्या हुआ? अरे ये बता तूने देखा है क्या?
4: हाँ हाँ देखा है। अरे जब मैं अपंग नहीं हुआ था और मेरा पैर ठीक था तब मैं कंपनी के स्कूल में पखाना साफ करने का काम करता था। अपंग होने से पहले मुझे स्कूल और दफ्तर में ड्यूटी मिलती थी इसीलिए कह रहा हूँ तुझे।
5: हाँ, मैं जानता हूँ कि तू सच कह रहा है।
4: हाँ,
5: भाई मैं तो साहब लोगों के बच्चों के साथ दलित बच्चों के समान होने का सपना बुन रहा था।
4: अच्छा
5: मगर लिचू भैया तेरी सच्चाई ने मेरे सपने को तार तार कर दिया।
4: अरे शिवू मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मेरा बेटा जगन्नाथ पढ़े लिखे। अगर वो पढ़े तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी यशवंत जैसा बन जाएगा। अरे

0: कंपनी में मुंशी गिरी करेगा।
1: अरे भैया लिचू, तेरी तो वही कहानी है, घर में नहीं दाने
2: क्या है?
1: और अम्मा चली भुनाने हैं।
2: ठीक है भैया, छोड़ इस बात को छोड़।
3: सुन शिवू, सुना है बटेली के पास ही मुरादाबाद के सफाई कर्मचारी और दुसाध जाति के लोग मंदिर के आंगन में लंगर खाने बैठने लगे हैं।
1: ओ, वो पासी और सफाई कर्मचारी। अरे जानता नहीं तू
3: क्या?
1: सफाई कर्मचारियों के जायसवार, लाठी कर, कुरार, गावाइलिया और फारीकरों के बीच कैसी सरफुटेबल मारपीट हुआ करती थी।
3: अरे उनकी बात छोड़, हमारे माधिया दर्दावा और चिदरूरिया के बीच भी कैसी मारपीट होती थी, तुझे नहीं मालूम?
1: मुझे पता है। अरे लिचू, लेकिन अब वो पहले जैसे दिन नहीं रहे। अरे काफी बदलाव आ गया है, क्यों है ना?
3: अरे मेरे साहब के ब्राह्मण मुंशी के घरेलू जमादार लक्ष्मण सिंह की कहानी जरा पुरानी है। सुन ब्राह्मण मुंशी साफ सफाई पसंद आदमी थे, सफर करते समय कभी कभी सफाई करने के लिए लक्ष्मण सिंह को भी साथ लेकर जाते थे।
1: हाँ लिचू, अरे वो दिन ही कुछ और तरह के थे।
3: ठीक कहा तूने। अरे और जानता है शिवू, लक्ष्मण सिंह बग्घी के कोचवान के पास बैठकर जाता था। एक दिन लक्ष्मण सिंह का कायस्थ के घर निमंत्रण था।
1: अरे लिच्चू भैया, क्या कहता है तू?
3: हाँ?
1: कायस्थ के घर में लक्ष्मण सिंह का निमंत्रण?
3: अरे हाँ शिवू, हाँ मुंशी के साथ उसे भी बुलाया था।
1: अच्छा?
3: हाँ। अरे और मुंशी के साथ वो साफ सुथरी पगड़ी पहनकर निमंत्रण खाने पहुंचा।
1: अच्छा?
3: किसी मोची से वो चमड़े के जूते भी उधार मांग लाया था।
1: अरे
3: हाँ,
1: चमड़े वाला जूता भी।
3: आप सुन तो, वहाँ एक मजेदार वाकया हुआ। मुंशी के पास लकड़ी की मेज कुर्सी पर कायस्थ परिवार ने उसे बैठाया। अचानक मुंशी और लक्ष्मण सिंह चौंक उठे।
1: है? वो भला क्यों?
3: अरे मुंशी को पीतल की थाली कटोरी में खाना परोसा गया था और लक्ष्मण सिंह को चांदी की थाली कटोरी में। शिवू, चांदी की थाली कटोरी में।
1: अच्छा? पर ये कायस्थ परिवार ने क्या गजब किया?
3: अरे सुन तो सही, चांदी की थाली कटोरी देखकर बेचारा लक्ष्मण सिंह एकदम डर गया। कायस्थ परिवार और मुंशी ने कहा, ए भाई खाओ खाओ, तो उसने डरते डरते खाया।
1: अच्छा?
3: और वापसी में मुंशी ने कहा कि आज तूने पहली बार चांदी की थाली कटोरी में खाना खाया है, क्यों?
1: अच्छा, तो फिर लक्ष्मण सिंह ने क्या कहा?
3: अरे लक्ष्मण सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि प्रभु महाराज, ये तो आपकी कृपा है। तब मुंशी ने हंसते हुए कहा कि ये तेरा सम्मान नहीं है बल्कि अपमान है ये।
1: है? हाँ। भला इसमें लक्ष्मण सिंह का क्या अपमान हुआ?
3: अरे वही तो बता रहा हूँ शिवू, यही बात लक्ष्मण सिंह ने भी पूछी। इस पर मुंशी ने कहा कि दलित के स्पर्श से चांदी पवित्र मानी जाने लगती है, तेरे छू लेने से कायस्थ परिवार के चांदी के बर्तन एकदम शुद्ध हो गए हैं।
1: अरे लिचू भैया, आजकल के कायस्थ लोगों ने हम दुसाध लोगों को कौरव महाराज दुर्योधन के भाई दुशासन का वंशज मानना छोड़ दिया है।
3: अरे शिवु, आजकल राहु की पूजा करने की सामर्थ हमारे पास कहाँ है? पहले के दिनों में हमारे कन्नौजी, मागधी और सिलहटिया लोगों की राहु पूजा में ब्राह्मण भी आते थे।
1: अरे लिचू भैया, मेरा तो मानना ये है कि
3: क्या मानना है शिवु, तेरी खांसी तो बहुत ही जा रही है। शिवु, तेरी तबीयत ठीक है? तू लेट जा, थक गया। लेट जा, आराम। शिवु, लेट जा
1: भैया,
3: आराम कर।
1: हम तो मरने के बाद ही आराम करूंगा भाई।
3: अरे ऐसा क्यों कहता है शिवु?

संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार की 6वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की जा रही है। इस दौरान देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने के साथ ही टिकाऊ रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर कहा है कि इस दौरान विकास, सुशासन, गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों के सशक्तिकरण के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई शक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का नेतृत्व विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु एनसीटी पाठ्यक्रमों बीएड, एमपीड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड के लिए महाविद्यालय आवंटित कर दिए गए हैं। प्रथम चरण में 32,918 अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित किए गए हैं। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून है। राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत की है। राज्य की महिलाएं अब अपनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-233-6112 द्वारा संकेत दे सकेंगी। मौसम विभाग ने प्रदेश में चक्रवात के 2 अलग-अलग सिस्टम बनने से आज ग्वालियर, जबलपुर समेत 34 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 1 सप्ताह में मानसून के सक्रिय होने का अनुमान है। और विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में 48 टीमों द्वारा 104 मुकाबले खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए बहनों का कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की।

महिला सभा सुनने वाली हमारी सभी सखियों का स्वागत अभिनंदन उनके अपने महिला सभा कार्यक्रम में। आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी सखी रुबीना। आप सभी को हमारा नमस्कार। सखियों, प्रकृति विविध रंगों से भरी हुई है। इनमें सबसे खास रंग होता है हरा, जो हरियाली का संदेश देता है, जिसे देख हम भी नई ऊर्जा, नई उमंग से भर जाते हैं। तपती गर्मी में आँखों की ठंडक है ये हरा रंग, जो न सिर्फ हमें सुकून देता है बल्कि जीवन में आशा का संचार करता है। सखियों, हरा रंग हमें प्रकृति से जोड़ता है। जी हाँ, हमारी वही हरी भरी प्रकृति जिसमें हवा, धूप, पानी जैसे संसाधन मौजूद हैं, जो कभी खत्म नहीं होते, और इन्हीं संसाधनों का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसे हरित ऊर्जा कहा जाता है। सखियों, इन दिनों आप रेडियो पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में तो सुन ही रहे होंगे, जिसके तहत सरकार हमें भारी सब्सिडी भी दे रही है। बस यही तो है हरित ऊर्जा, जिसमें सूर्य की किरणों को सोलर पैनल के माध्यम से बिजली में बदला जाता है। यह सौर ऊर्जा कहलाती है। हरित ऊर्जा उत्पन्न करने के और भी कई तरीके हैं, जैसे तेज हवाओं के प्राकृतिक वेग से पवन चक्कियों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। नदियों, बांधों में बहते हुए पानी के दबाव से टरबाइन चलाकर बिजली बनाई जाती है। इसे विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। इतना ही नहीं सखियों, कृषि अपशिष्ट गोबर, जिसे हम जैविक कचरा कहते हैं, इससे बायोमास ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हम सभी जानते हैं पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक गर्मी मौजूद है। इस गर्मी और भाप का उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ये सब हरित ऊर्जा के ही प्रकार हैं। सखियों, पारंपरिक ऊर्जा जिसमें कोयले और पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है, उससे अनेक जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को तो नुकसान पहुंचाती ही हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को भी बढ़ाती हैं। जबकि हरित ऊर्जा इन सभी समस्याओं के खतरे को कम करती हैं। इसके प्रयोग से हम प्रदूषण मुक्त स्वच्छ पर्यावरण तो पाते ही हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण होता है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश हमारा भारत देश ही है, जो हरित ऊर्जा से बिजली उत्पन्न कर रहा है। और यह इसीलिए संभव हो सका है क्योंकि हमारा भारत देश प्राकृतिक संपदाओं से भरा है। ये तो बात हुई हरित ऊर्जा की, लेकिन प्रकृति के नज़दीक रहना, उसे निहारना भला कौन नहीं चाहता। आइए इस गीत के माध्यम से हम भी आपको प्रकृति के करीब लिए चलते हैं और सुनवाते हैं मुकेश का गाया यह गीत। फिल्म का नाम है बूंद जो बन गए मोती।

0: सखियों, हमारे आज के बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं, और ये बच्चे जितना स्वस्थ होंगे हमारे देश की नींव उतनी ही मजबूत होगी। इसलिए ज़रूरी है उनके पोषण, उनके टीकाकरण पर उचित ध्यान दिया जाए। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सुनते हैं यह भेंटवार्ता, जिसका विषय है बच्चों में टीकाकरण कब और क्यों। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल, और इनसे बातचीत की है कामना श्रीवास्तव ने।
1: श्रोता बहनों, माँ बनना सृष्टि की सबसे बड़ी नियामत है, लेकिन 9 माह के लंबे समय के बाद एक माँ की जिम्मेदारी यही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि असली कवायद तो उसके जन्म के बाद ही शुरू होती है। उसकी सही परवरिश, उचित पालन पोषण, आहार और साथ ही साथ टीकाकरण, ये सभी बातें बच्चे के भविष्य को सुखी और सुरक्षित बनाती हैं। तो टीकाकरण क्या है और क्यों ज़रूरी है, और कौन कौन से टीके बच्चों को कब लगवाने चाहिए, इन सारी बातों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल जी को। सर, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
2: जी, धन्यवाद आपको।
1: सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टीकाकरण क्या है और ये क्यों ज़रूरी है।
2: जी हाँ, देखिए, दुनिया में बहुत सारी बीमारियाँ हैं, खासकर बच्चों को कई जानलेवा बीमारियाँ हो सकती हैं, और आप ये देखें कि कोई बीमारी होने के बाद हम इलाज शुरू करें वो ना सिर्फ बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी इलाज सफल भी नहीं होता, और सफल होता भी है तो कई बार बहुत खर्चीला होता है। तो सर्वश्रेष्ठ उपाय ये है कि हम उन बीमारियों को होने ही ना दें, और उनको ना होने देने के लिए इस वक्त जो विज्ञान ने एक बहुत अच्छी जो खोज की है वो है टीकाकरण।
1: जी, तो बच्चों प्रिकॉशन बेटर देन क्योर।
2: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो टीकाकरण की जिसकी हम बात कर रहे हैं, कितना ज़रूरी है।
2: बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है हमारा, जो राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम, उसमें 6 जानलेवा बीमारियों से बच्चों को प्रोटेक्ट जाता है, उनसे रक्षा की जाती है, जैसे कि पोलियो, DPT, हेपेटाइटिस बी भी अभी अभी इंक्लूड किया जा रहा है उसमें, खसरा, मीजल्स जिसको बोलते हैं, ये इस तरह के टीके, जैसे खसरा है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, पोलियो जिंदगी भर के लिए अपंगता कर सकता है बच्चे में, DPT से होने वाली 3 बीमारियां जैसे कि गलघोटू, टिटनस एवं कुकर खांसी भी बच्चे को ना सिर्फ जानलेवा है, बहुत बीमार भी बना सकती है या कमजोर भी कर सकती है।
1: अब ये जानना चाहेंगे आपसे कि सरकारी अस्पतालों में जो टीके उपलब्ध होते हैं, क्या वही लगवाने चाहिए या इसके अलावा कौन से टीके होते हैं।
2: जी हाँ, सरकारी अस्पताल में जैसे मैंने अभी आपको जानकारी दी कि पोलियो, DPT, खसरा और एक जो छूट रहा था वो है BCG। BCG जो TB से बचाव का टीका होता है। इसके अलावा भी जिस तरह से कई बीमारियां हैं उसी तरह से कई तरह के टीके बाजार में आजकल उपलब्ध हैं। 2 तरह के शेड्यूल चलते हैं भारत में, एक है EPI शेड्यूल जिसमें कि सरकारी टीके इंक्लूड हैं, जो कि सरकार सभी राज्यों की सरकारें इसको दे रही हैं। साथ ही साथ दूसरा शेड्यूल होता है हमारी जो एकेडमी है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, ये जो कि शिशु रोग विशेषज्ञों की संस्था है, इसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे दूसरे टीके भी हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल होने चाहिए। बट इन नए टीकों की कीमत क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद वो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाते। उनमें से बहुत सारे टीके आजकल जो इस्तेमाल में हो रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा रोटा वायरस डायरिया का टीका, ये टीका एक पिलाया जाने वाला टीका है, इससे रोटा वायरस नाम के 10 से बचाव होता है। इसी तरह का एक टीका बहुत ही ज़रूरी है और जो कि बहुत महंगा भी नहीं है, वो है हिब। हिब से 3 गंभीर बीमारियों से रक्षा होती है, एक तो निमोनिया, मस्तिष्क ज्वर एवं एक गले का गंभीर इन्फेक्शन होता है उसको एपिग्लोटाइटिस बोलते हैं। तो ये 3 बीमारियों से हिब नाम के वैक्सीन से रक्षा होती है। इसी तरह का एक वैक्सीन जो मैं बोलूँगा कि भारत की हर लड़की को लगा होना चाहिए, खासकर शादी के पहले तो हर लड़की को लग जाना चाहिए, वो है

0: एमएमआर का टीका, जो कि बहुत महंगा भी नहीं है। एमएमआर का टीका 3 बीमारियों से रक्षा करता है, जैसे कि खसरा, मम्स जिसको हम गलसुआ बोलते हैं, और एक रुबेला नाम की बीमारी होती है। ये जो 3 बीमारियां हैं, मम्स, रुबेला और मीजल्स, ये तीनों ही बीमारियां यदि गर्भस्थ शिशु गर्भावस्था के दौरान यदि माँ को हो इनमें से तीनों में से कोई भी एक, तो गर्भस्थ शिशु को अत्यधिक गंभीर कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इस वजह से ये टीका 15 माह की उम्र पर बच्चों को लगता है, तो बच्चियों को खासकर। तो यदि वो 15 माह की उम्र पर आज हम जो लगवा रहे हैं वो न सिर्फ इस बच्चे की रक्षा करेगा इन बीमारियों से, बल्कि अगली पीढ़ी की भी।
1: जी बिल्कुल। तो यानी लड़कों को ये टीका लगना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि लड़कियों को लगे। जी ये बताइए कि इतने जब सारी तरफ बीमारियां फैली हुई हैं और टीके इतने महंगे हो रहे हैं, कई टीके, तो ये क्यों नहीं सरकारी बातों में शामिल किए जाते हैं कि ये सस्ते हो जाएं?
0: जी हाँ, देखिए जब भी कोई नई बीमारी का टीका आता है ना तो वो काफी महंगा होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी रिसर्च इन्वॉल्व होती है, उसको खरीदने वाले लोग कम होते हैं। इसे मोबाइल फोन, जैसे आपने सुना होगा कि पहले मोबाइल फोन बहुत महंगे होते थे, आज उनकी स्लैश डाउन होते जा रही कीमत। तो जो भी टेक्नोलॉजी है यदि कोई रिसर्च करके इमीडिएटली कोई लेकर आ रहा है तब ज़्यादा महंगे होते हैं, फिर वो धीरे धीरे सस्ते होते जाते हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि हेपेटाइटिस बी का टीका जब शुरुआत में आया था तो लगभग 2000 रुपये का हुआ करता था, आज से लगभग 12-15 साल पहले, और आज जो है उस टीके की कीमत 50 रुपये है। तो टीकों की कीमत लॉन्च के समय ज्यादा होती है, बट हम अपने बच्चों को तब तक के लिए इंतजार नहीं करा सकते,
1: बिल्कुल
0: देना होगा। और सरकार अपनी ओर से कोशिशें करती हैं कि जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा टीकों को शामिल किया जाए, जैसे कि अभी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने हेपेटाइटिस बी को हमारे टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया।
1: जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई टीका बच्चे को समय पर नहीं लग पाया, यानी देर हो गई उसे लगवाने में, तो कितने समय के अंदर फिर उसे लग जाना चाहिए?
0: जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कायदे से तो पहला टीका बर्थ के समय लग जाता है, जिसको पोलियो जीरो डोज बोलते हैं हम लोग, और BCG, लेकिन और फिर 6 हफ्ते पर लगता है, 10 हफ्ते, इस तरह से शेड्यूल है। लेकिन सपोज कभी कोई माँ बाप नहीं लगवा पाए समय पर टीका, तो भी उस टीके को समय रहते दिया जा सकता है। उसके लिए जस्ट आपको ये करना है कि अपने शिशु रोग विशेषज्ञ की एक बार सलाह लेनी है, तो वो जो भी टीके छूटे हैं उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बना देगा। हाँ, ये पूरी तरह संभव है कि जो टीके छूट गए हैं उनको भी दोबारा लगाया जा सके।
1: जी डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है कि जब महिलाएं माँ बनती हैं और पहली बार डॉक्टर के पास जाती हैं बच्चे को लेके, तो उन्हें एक कार्ड दिया जाता है बच्चे को टीके लगवाने के लिए। तो ये कौन कौन से टीके इनमें से ऐसे हैं जो कि बेहद ज़रूरी होते हैं? जैसे सबसे पहले आपने बताया BCG का टीका लगना।
0: जी
1: हाँ। और कितने वर्ष तक, 7 साल 8 साल 9 साल, कितने समय तक बच्चे को रेगुलरली डॉक्टर के पास टीका लगवाने के लिए ले जाना चाहिए?
0: जी हाँ, देखिए सबसे ज़रूरी टीके तो जो हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हैं, BCG जो, और पोलियो जन्म के समय, इसके बाद DPT 6 हफ्तों पर, 10 हफ्ते की उम्र पर DPT और पोलियो का डोज फिर से, फिर 14 हफ्ते की उम्र पर फिर से DPT और पोलियो का डोज, और 9 महीने पर खसरा, 1.5 साल पर DPT पोलियो अगेन, और 5 साल पर DPT एवं पोलियो फिर से। ये टीके सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, यदि कभी छूट जाते हैं तो भी संभव है कि इनको दोबारा लगाया जा सके।
1: जी आपसे फिर जानना चाहेंगे कि कितने वर्ष तक, कितने उम्र तक बच्चों को टीके लगवाए जाएं ताकि इसका असर बना रहे?
0: हाँ जी, जन्म से लेके 5 साल की उम्र तक रेगुलर टीकाकरण होता है, वो जो आपने कहा था जो चार्ट के हिसाब से, तो वो चार्ट के हिसाब से 5 साल तक, लेकिन 5 साल के ऊपर के भी बच्चों को कई टीके लगाए जा सकते हैं, जैसे कि टाइफाइड का होता है, टिटनस का टीका होता है, और आजकल एक आधुनिक टीका अभी अभी जो आया है वो है गर्भाशय के कैंसर से बचाव का टीका, जो कि ज्यादातर किशोर लड़कियों को लगाया जाता है, वो 10 साल से ऊपर की लड़कियों को और 10 से 45 साल की बीच की युवती को ये लग सकता है टीका।
1: जी जागरूकता की अगर हम बात करें तो आप चूंकि डॉक्टर हैं तो कितने प्रतिशत लोग आपके पास ऐसे आते हैं जो कि कहते हैं कि हम समय पे टीका नहीं लगवा पाए, यानी कि सरकार जो इतना जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है तो आज लोग कितने पीछे हैं?
0: जी हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा जो देश है ये विश्व के मानचित्र में हम यदि हम देखें तो टीकाकरण कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है ये कि हम सारी कोशिशें सरकार की, संस्थाओं की, इसके बावजूद भी हम अपनी बहुत सारी जनता को इसके लिए मोटिवेट नहीं कर पाए, प्रेरणा नहीं दे पाए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, इनफैक्ट हर एक बच्चे को टीकाकरण कराएं। आपको उदाहरण के लिए मैं बता दूँ कि पोलियोमाइलाइटिस सिर्फ पूरी दुनिया में तीन देश बचे हैं, पाकिस्तान, नाइजीरिया एवं भारत, जहाँ से इरेडिकेट नहीं, अभी तक उसका स्टेटस मिला, जड़ से खत्म नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ ये हमारे समाज को भी देखने की जरूरत है, और मैं समझता हूँ कि एक शर्मनाक बात है कि पूरे विश्व में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो उसको हम सफलता से नहीं चला पा रहे।
1: जी, तो आपके कहने का अर्थ है कि सभी पेरेंट्स को, सभी माता पिता को ये बेहद जरूरी है कि जब भी बच्चा छोटा हो उन्हें टीकाकरण।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। आप क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों को, माता पिता को?
0: देखिए, टीकाकरण से संबंधित कुछ भ्रांतियां रखते हैं माता पिता की, इससे कभी कभी साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक और भ्रांति हमारे गाँव में है, आसपास के, जैसे मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स की क्लास लेता हूँ तो मुझे पता चली कि कुछ लोग सोचते हैं कि टीका लगाने से बच्चा दुबला हो जाता है।
1: जी
0: ठीक है, ये सभी तरह की व्यर्थ की भ्रांतियां हैं। हाँ, थोड़े से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स मैं आपको टीकों के बताता हूँ, जो कि पूरी तरह से कोई उनमें नुकसान नहीं होता बच्चे को, जैसे कि DPT से बुखार आना। DPT से बुखार आ सकता है और थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है, और ये भी मात्र 24 घंटे से 48 घंटे के लिए होता है। मार्केट में इस एक टीका उपलब्ध है जो कि पेनलेस बोला जाता है, जिससे बाद में दर्द एवं बुखार कम होता है। बट मैं कहूंगा कि नहीं, वो थोड़ा दर्द और बुखार होगा भी तो भी उससे कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि वो अत्यधिक महंगा टीका है, और जो माता पिता खरीद सके उनको लगाना चाहिए। लेकिन बाकी माता पिता यदि दर्द वाला टीका लगवा रहे हैं तो वो भी कोई गलत तरीका नहीं, गलत ऑप्शन नहीं है।
1: जी, अगर हमें भविष्य सुखद बनाना है, स्वस्थ बनाना है, तो ये 24 और 48 घंटे का बुखार ज्यादा मायने
0: रखता है बच्चे की भलाई के लिए। जी
1: जी, तो डॉक्टर साहब, और ऐसी कोई बात टीकाकरण के संबंध में जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाह रहे हो और छूट रही हो?
0: एक तो जब बच्चा हो तो एक ना एक बार जरूर शिशु रोग विशेषज्ञ से आप जरूर मिलें। ठीक है, वो उससे ना सिर्फ आपको टीकाकरण से संबंधित बल्कि खान पान, दूध कैसे देना है, माँ की देखरेख से संबंधित जो वैज्ञानिक सलाहें मिल जाएंगी। उसी दौरान पर आपको वो टीकाकरण का कार्ड भी मिल जाएगा और उसमें सब कुछ डेट सहित शिशु रोग विशेषज्ञ आपके लिख लेंगे। यदि आप ऐसे जगह रहते हैं जहाँ शिशु रोग विशेषज्ञ की उपलब्धता नहीं है तो अपने नज़दीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पताल में जाएं, वहाँ भी आपको एक कार्ड मिलेगा और इससे संबंधित जानकारी दी जाएगी, और अपने बच्चों को जरूर अस्पताल में देखरेख में रहें, डॉक्टर की या फिर जो भी उपलब्ध चिकित्सक या एक ट्रेन्ड पर्सन वहाँ पास में।
1: जी, तो डॉक्टर साहब आप हमारे प्रोग्राम में आए और टीकाकरण से संबंधित इतनी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हमें बताई, निश्चित रूप से सभी श्रोता इससे लाभान्वित होंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बच्चों में टीकाकरण कब और क्यों, इस विषय पर आपने सुनी डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल से कामना श्रीवास्तव की बातचीत। सखियों, जीवन में स्वस्थ रहना और निरंतर विकास करना बहुत जरूरी है, और यदि पर्यावरण के साथ संतुलन बनाते हुए हम अपना विकास करेंगे तब तो पर्यावरण से अच्छा और सच्चा मित्र हमारा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन यदि हमने पर्यावरण में थोड़ा भी असंतुलन की स्थिति निर्मित की या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया तो धरती के अंदर और बाहर की हलचल प्राकृतिक आपदा का कौन सा भयावह रूप ले ले कहा नहीं जा सकता। भूकंप, बाढ़, तूफान, भूस्खलन, सूखा, सुनामी, ये प्राकृतिक आपदाओं का ही रूप है। लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि प्राकृतिक आपदाएं मानव निर्मित नहीं होती। भूल, लापरवाही, व्यवस्थाओं में कमी का नतीजा ही है सड़क या रेल दुर्घटना, कारखानों में आग लग जाना। कहने का मतलब यह है कि ऐसी अनअपेक्षित घटनाएं जिससे सामान्य जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो जाए उसे आपदा कहते हैं। सखियों, आपदाओं को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही प्रबंधन से उनके जोखिम और नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा समय समय पर रेडियो, टीवी और घोषणाओं के माध्यम से दी जाने वाली चेतावनी का पालन किया जाए। ये तो हुई आपदा प्रबंधन से पहले की तैयारी। आपदा प्रबंधन के दूसरे चरण की बात करें तो ये है आपदा के तुरंत बाद प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना, चिकित्सा, भोजन, पानी उपलब्ध कराना। इस बचाव कार्य का बहुत अहम हिस्सा सखियों आप और हम भी बन सकते हैं। और आपदा प्रबंधन का अंतिम चरण है बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, रेल मार्ग, घरों का पुनर्निर्माण और प्रभावित लोगों का पुनर्वास यानी जीवन को दोबारा

सामान्य और स्थिर बनाना ताकि आपदा प्रभावित लोगों का घर और जीवन दोबारा बस सके। और इन सब में सबसे जरूरी है धैर्य बनाए रखते हुए हमेशा एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहना। प्रबंध कार्यों में सरकार को सहयोग देना ताकि आप औरों के लिए मिसाल बन सकें।

सुदेश भोंसले, मोहम्मद अजीज और उदित नारायण की आवाज में यह गीत हमने सुना। फिल्म का नाम था हम। उम्मीद करते हैं सखियों, इस गीत की ही तरह आप और हम हमेशा एक साथ होंगे, आपका और हमारा स्नेह यूं ही बरकरार रहे और हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपनी प्रगति के मार्ग प्रशस्त करते रहें। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ महिला सभा कार्यक्रम से रुबीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की थी।
1: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
2: आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा

चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां।

सदियों बाद पैदा होता है एक महापुरुष और हमें दिखा जाता है रोशनी की अनगिनत राहें। आइए हम सब चलें उस मार्ग पर जो दिखाया महात्मा गांधी ने।

वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं साधना जैन के गाए हुए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे देवी गीत गैल्हाई

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे साधना जैन के गाए हुए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ, प्रस्तुत कर रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार हैं रागिनी तैलंग। इनके स्वर में आज आप सुनेंगे कुछ गीत और भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे रागिनी तैलंग के गाए हुए कुछ गीत और भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,

0: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन?
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
2: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चूनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली तान।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत दबंग फिल्म से हमने लिया है। आवाजें श्रेया घोषाल और सोनू निगम की हैं, गीतकार जलीस शेरवानी और संगीतकार साजिद वाजिद।

ओम शांति ओम फिल्म का ये गीत है। आवाज़ें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की हैं। गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार विशाल शेखर।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल हुए। इस वर्ष की बैठक का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है। बैठक में उद्यमिता, कौशल विकास, रोजगार सृजन और डिजिटल सार्वजनिक ढांचे पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए आदर्श नेतृत्व का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का कर्तव्य सेवा और समर्पण के जरिए समाज के सभी वर्गों में न्याय, समरसता और लोक कल्याण को बढ़ावा देना है। ये संदेश उनकी संस्कृत सुभाषितम श्रृंखला का हिस्सा है। इससे पहले 10 जून को उन्होंने जनसेवा को सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया भर के नेताओं से मिली बधाइयों के लिए आभार व्यक्त किया है। 10 जून को 12 वर्ष पूरे कर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। श्री मोदी 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए। उन्होंने अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी, इसराइल, इटली, गुयाना और भूटान के नेताओं का धन्यवाद करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर से राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये पहल सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि कश्मीर से लेकर देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक कवरेज देने की योजना है। कार्यक्रम में प्रसार भारती अध्यक्ष प्रसून जोशी, आकाशवाणी महानिदेशक राजीव कुमार जैन और जयपुर सांसद मंजू शर्मा भी उपस्थित थीं। इंदौर में जारी 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज तीसरा दिन है। भारत समेत 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। सम्मेलन में संयुक्त घोषणा पत्र पर पहला सत्र पूरा हो चुका है और दूसरे चरण की चर्चा जारी है। कृषि, खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार और किसानों की आय बढ़ाने जैसे अहम विषयों पर मंथन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कल होगी। कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज ही सुनवाई की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि उन्हें याचिका की प्रति नहीं मिली है। केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 14 जून का दिन क्षेत्र के किसानों के लिए ऐतिहासिक होगा। इस दिन सुबह 10 बजे विदिशा के बेरखेड़ी जट्टू में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा, जिसे भारत का मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही विदिशा, रायसेन, सीहोर और देवास जिलों के लिए तैयार वैज्ञानिक कृषि रोडमैप को भी लागू किया जाएगा। कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान के तहत नकली खाद की पहचान, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन और नई कृषि पद्धतियों की जानकारी भी दी जाएगी। भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच कर रही सीबीआई को दिल्ली एम्स की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंप दी गई है। सीबीआई अब इस रिपोर्ट का गहन अध्ययन कर रही है। इसे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। ट्विशा के पति समर्थ सिंह और उनकी सास किरेबाला सिंह फिलहाल भोपाल की केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में है। और अब बात मौसम की। प्रदेश में आज मौसम के 2 रंग देखने को मिलेंगे। ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, बुंदेलखंड संभाग के कई जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश हो सकती है। वहीं मुरैना, भिंड, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी में ओलावृष्टि का अलर्ट भी है। दूसरी ओर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, मालवा, निमाड़ के जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुर जिले के माकनगर में कल 12 से 15 जून तक अंबेडकर भवन हाई स्कूल परिसर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। आगर मालवा कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र हितग्राहियों का ईकेवाईसी निर्धारित समय सीमा 30 जून तक पूरा कराया जाए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही है, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
2: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
2: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे हैं। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
1: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
3: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
3: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्यवाही में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
4: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद ड्रोन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
5: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
3: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुँच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर कुछ फिल्मी गीत लेकर हम हाजिर हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आनंद फिल्म के गीत से। इस गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत सलिल चौधरी का है और आवाज लता मंगेशकर की। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, नेपानगर से सुदर्शन शाह, ताविश शाह, कुंश शाह, पल्लवी सुरभि, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। ये खत आया हुआ है बगबुड़वा पथरिया से, लिखने वाले हमारे श्रोता हैं नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, और इसी गीत को पसंद करते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म आनंद में।

आपकी फरमाइश का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर है। धरसीमा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव। ये चिट्ठी आई है आमा खोडरा कबीरधाम से। लिखने वाले श्रोता हैं देवी सिंह नेताम, राजेंद्र, कृष्णा, चंद्रदीप, संदीपा और दक्ष प्रिया नेता। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से इसी गीत को पसंद करते हैं रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, प्रगति नाचानी, मिथिल नाचानी और उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी। सह्याद्री परिसर भदभदा रोड भोपाल से ये खत आया है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं योगेश्वर सिंह भारती, डॉक्टर शेखावत सिंह भारती, भैरव प्रताप सिंह, लोकेंद्र, प्रेमाबाई और ग्राम पोस्ट बाया तहसील रेहटी जिला सीहोर से अमर सिंह भारतीय, कोशाबाई, लक्ष्मी, महेंद्र, सचिन और तरु। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म जहरीला इंसान में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत निर्देशक हैं आर डी बर्मन।

0: श्रोताओं, आपकी फरमाइश के कुछ गीत हम आगे भी आपको सुनवाएंगे, फिलहाल एक छोटा सा अंतराल
1: सुनिए। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं, आनंद बख्शी का लिखा हुआ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसका संगीत तैयार किया है, आवाज किशोर कुमार की है और फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी। सुनना चाहते हैं कमर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया, जानवी, तृप्तेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। भाटापारा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद करते हैं सोहन जोशी, विष्णु जोशी, अंकिता, अमृता और लोकेश जोशी। इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। देवास मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल और संदलपुर से कालीचरण यादव।

अब हम आपको सुनवाते हैं रजिया सुल्तान फिल्म का गीत, लता मंगेशकर का गाया हुआ। बोल जानिसार अख्तर के हैं और धुन बनाई है खैयाम ने। पसंद आप सबकी है। मोटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर। ये चिट्ठी आई हुई है शाजापुर से। लिखने वाले श्रोता हैं MM राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को पसंद करते हैं। तिलदा छत्तीसगढ़ से प्रदीप कुमार चंद्र, सीमा रानी चंद्र, पिया रानी चंद्र, ओशीम कुमार चंद्र और सोमेन कुमार चंद्र, और धमतरी से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार और गजेंद्र कुमार चंदन।

और कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं, हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर। आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और सौरभ, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, और ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। आप सबकी फरमाइश पर फकीरा फिल्म में सुनते हैं लता मंगेशकर को, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर से राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया और इंदौर में जारी 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज तीसरा दिन है। भारत समेत 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। आकाशवाणी

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी जबलपुर द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:33 पर, 6:30 पर, रात 8:35 पर और 9:30 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे शाम 6:00, रात 8:00 सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष के अंतर्गत साइंस एंड टेक पर केंद्रित कार्यक्रम। रात 10:00 सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 सुनिएगा उस्ताद रहमत अली खां का सरोद वादन राग रागेश्री। और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज ग्रामीण बहनें सुनेंगी सुश्री ममता वाजपेयी के साथ की गई भेंट वार्ता, मॉनसून के दौरान किचन गार्डन और बगीचे की देखभाल। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, वेब्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हो चुके हैं, मीडियम वेव पर हमारी ये सभा संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी है।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि गृहिणियों का कार्य केवल घरेलू कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि वे परिवारों और भावी पीढ़ियों के निर्माण में अतुलनीय योगदान देती हैं। न्यायालय ने कहा है कि घर का प्रबंधन करने वाली महिलाओं को केवल गृहिणी कहकर संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये शब्द समाज में उनके योगदान को कम आंकता है। यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय रेल देश भर के स्टेशनों पर फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगी। इसमें स्टेशन भवन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, फायर फाइटिंग सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम समेत सभी अग्नि सुरक्षा इंतजामों की जांच होगी। और पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। ले जब सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अमीषा पटेल
1: और मैं आद्या नायक।

0: साथियों, हमेशा की तरह हम फिर लेकर आए हैं आप सभी के लिए नई नई जानकारियाँ और युवा सोच से जुड़े कुछ खास विषय। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की आज के दो प्रश्नों के साथ।
1: हमारा आज का पहला प्रश्न है, AI शब्द का पहली बार प्रयोग किस वर्ष में किया गया था।
0: और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है। साथियों, इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आज की चर्चाओं में। आद्या, अगर कोई हमसे पूछे कि हमारी पहचान क्या है तो हम क्या जवाब देंगे?
1: हमारा नाम, हमारा शहर या कुछ और?
0: आद्या, मुझे लगता है कि हमारी पहचान सिर्फ हमारे नाम या पते से नहीं बनती। हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार और जिन मूल्यों के साथ हम बड़े होते हैं वही हमारी संस्कृति कहलाते हैं।
1: अमीशा, जब हम हमारी संस्कृति, हमारी पहचान की बात करते हैं तो सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या आता है?
0: मेरे मन में सबसे पहले आती है भारत की विविधता, जहाँ अलग अलग भाषाएं, खान पान, पहनावे, त्योहार और परंपराएं हैं। और सबसे खास बात यह है कि इतनी विविधताओं के बावजूद हम सब एक भारतीय पहचान से जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल अमीशा, मुझे लगता है कि संस्कृति को अक्सर केवल त्योहारों या पारंपरिक कपड़ों तक ही सीमित कर दिया जाता है, जबकि संस्कृति उससे कहीं अधिक व्यापक है। यह हमारे व्यवहार, हमारे संस्कार और हमारी जीवन जीने के तरीके में दिखाई देती है।
0: सही कहा, जब हम किसी बड़े व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं, मेहमानों का स्वागत करते हैं या किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तब हम केवल एक काम नहीं कर रहे होते बल्कि अपनी संस्कृति को जी रहे होते हैं।
1: हाँ, और यही छोटी छोटी बातें हमारी पहचान बनाती हैं। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन कुछ मूल्य ऐसे हैं जो समय के साथ और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
0: भारतीय संस्कृति की खूबसूरती ही यही है कि यह हमें आधुनिक बनने से नहीं रोकती बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए आगे बढ़ना सिखाती है।
1: पर अमीशा, आजकल तो युवा पीढ़ी को लेकर अक्सर कहा जाता है कि वे संस्कृति से दूर हो रहे हैं।
0: आद्या, मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे लगता है कि आज के युवा अपनी संस्कृति को नए तरीके से दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। कोई लोक संगीत को नए मंच दे रहा है, कोई क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दे रहा है, तो कोई अपनी लोक कलाओं को डिजिटल माध्यम से पहचान दिला रहा है।
1: और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि संस्कृति को बचाने का मतलब केवल उसे संग्रहित करना नहीं बल्कि उससे आगे बढ़ाना भी है।
0: आद्या, हमारी संस्कृति कोई चीज नहीं होती जिसे केवल किताबों में पढ़ा जाए। संस्कृति को अपने व्यवहार और जीवन में अपनाना भी बहुत जरूरी है।
1: हाँ अमीशा, क्योंकि अपनी संस्कृति अपनाना ही अपनी पहचान को मजबूत करना है।
0: साथियों, अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म उरी से, जिसमें आवाज दी है शाश्वत सचदेव और शांतनु सुदामी ने।

0: साथियों, अब सुनवाते हैं आपको भेंट वार्ता, जिसका विषय है युवाओं में होने वाले श्वसन संबंधी विकार, कारण और बचाव। विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय भारती, जिनसे बात की है नीला बाजपेयी ने।
1: युवा साथियों, समय समय पर हम आपको अपनी भेंट वार्ताओं के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास करते रहते हैं, और ऐसी एक नई जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका विषय है युवाओं में होने वाले श्वसन या सांस संबंधी विकार, कारण, लक्षण और बचाव। और इस विषय पर आज विस्तार से बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में रेस्पिरेटरी मेडिसिन के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संजय भारती जी को। डॉक्टर संजय भारती, आपका हम अपने इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद एवं सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा की शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे कि सबसे पहले हम अपने सुनने वालों के लिए जानना चाहेंगे कि हमारे जो श्वसन तंत्र है उसकी बेसिकली कार्य प्रणाली क्या होती है।
2: देखिए, मैं आप सभी के लिए यदि बहुत सरल भाषा में बताना चाहूँ तो श्वसन तंत्र का कार्य हमें वातावरण से ऑक्सीजन लेना, मतलब हम शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन तंत्र के द्वारा, और जो बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम वातावरण में छोड़ते हैं श्वसन तंत्र के द्वारा। हम इसको सरल भाषा में ऐसे ही समझ सकते हैं, अदरवाइज इसका जो मैकेनिज्म है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
1: ये तो बात हुई डॉक्टर साहब कार्य प्रणाली की। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आजकल ऐसी कौन सी बहुत सारी बीमारियां हैं श्वसन तंत्र से संबंधित जो युवाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं।
2: जी देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि युवाओं में श्वास की संबंधी बीमारियों के क्या क्या कारण होते हैं।
1: जी,
2: एक बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, तो हम इसको ऐसे कारणों को विभाजित करते हैं जैसे श्वसन तंत्र के खुद से उसके संबंधित कारण।
1: जी,
2: जैसे अस्थमा आप सभी जानते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा जिसको कहते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जैसे वायरल निमोनिया, जैसे अभी कोविड हुआ था इस तरह के कोई निमोनिया होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, सीओपीडी थोड़ा सा जल्दी इतनी जल्दी एज में नहीं होती, 40 से 50 के बाद होती है, तो इसलिए, लेकिन उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। एक इंटरस्टिशियल लंग डिसीज होती है जिसे फेफड़े में सुकड़ने की बीमारी कहते हैं, न्यूमोथोरेक्स होती है जिसमें कि फेफड़े में कहना चाहिए हवा भरने की बीमारी कही जाती है, और कुछ ऐसे कारण जैसे बचपन में किसी को बार बार इन्फेक्शन होते थे उसके कारण जो फेफड़े में कुछ बदलाव आ गए जिन्हें ब्रोंकाइटिस कहते हैं, वो भी आगे चल के यंग एज में आपको सांस की बीमारी का कारण बन सकते हैं।
1: जी।
2: फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, जैसे कि फेफड़े की जो नलिकाएं होती है, रक्त वाहिकाएं होती हैं, उसमें थक्का बन जाना वो। उसके अलावा ये तो हो गए फेफड़े से संबंधित कारण, अनेक अलग कारण होते हैं जैसे हृदय संबंधी कारण, उनमें भी आप मरीज को सांस ही फूलती है।
1: जी।
2: वो जब प्रेजेंट करता है डॉक्टर के पास तो सांस फूलती है, लेकिन कारण अलग होते हैं, फेफड़े के नहीं होते, जैसे

0: हृदय संबंधी बीमारियां हो गई, जन्मजात हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं, हार्ट से हार्ट में जो वॉल्वुलर डिसीज होती है जिसमें वॉल्व कहते हैं, उससे संबंधित बीमारियां होती हैं, उसमें भी ऐसे ही होता है। जो रिदम बीट होती है हार्ट बीट की अनियमितता, अरिदमियाज कहते हैं, उससे संबंधित बीमारियां, ये भी सांस से ही प्रेजेंट करेंगी। फिर हेमेटोलॉजिकल बीमारियां जैसे एनीमिया, खून की कमी, आपने सुना होगा सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, कुछ अलग टाइप की बीमारी ये होती हैं, रक्त कणिकाएं अलग तरीके की बनती हैं, उसके कारण भी सांस फूलती है। फिर जैसे अलग कुछ ऐसे कारण हैं जिस पे लोग ध्यान नहीं देते, जैसे थायराइड की बीमारी है, डायबिटीज, कीटोएसिडोसिस हो जाती है, ओबेसिटी, मोटापा, मोटापे के कारण भी सांस फूलती है। कुछ एंग्जाइटी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, जैसे आपको बताऊं पैनिक डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसको आप इग्नोर करते हैं कि नहीं ये तो कोई सोच भी नहीं पाता, वो भी कारण हो सकते हैं सांस बढ़ने के। फिर कुछ और भी न्यूरोमस्कुलर कारण होते हैं, जैसे मायस्थेनिया ग्रेविस हो गई, प्रेगनेंसी में भी होता है, और बहुत आपने देखा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल आजकल लोगों की है कि बिल्कुल बैठे रहना, ऐसे यदि ऐसे लोग कभी थोड़ा सा भी काम करते हैं तो भी सांस फूल सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, वर्तमान में क्या युवाओं में पहले की अपेक्षा सांस संबंधी या श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियां ज्यादा हो रही हैं कि क्या केवल ये एक भ्रांति है?
0: देखिए, आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है, जो कि मुझे लगता है युवाओं को जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आज के समय निश्चित ही श्वास संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। कारण बहुत सारे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल, एक तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हम ज़्यादा मेहनत करते नहीं है, तो हमारा शरीर डीकंडीशन हो जाता है, थोड़े से काम करने में सांस फूलने लगती है, फिर मोटापा बढ़ता है, तो मोटापे के कारण जो है बहुत सारी बीमारियां उसके कारण खुद ही हो जाती हैं, उससे सांस फूलती है। फिर स्मोकिंग का चलन आजकल बड़े जल्दी हो गया है, स्कूलों में लोग बहुत जल्दी एज में स्मोकिंग करने लगे हैं। और एक नई चीज आज कल आई है जिसको बहुत जानना जरूरी, वेपिंग, इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होता है इसके थ्रू लोग निकोटीन लेते हैं। तो ये एक वेपिंग क्या है, ना केवल वेपिंग के बारे में मैं बताऊं कि स्कूलों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। स्कूलों में पहले तो लोग कॉलेज उसके बाद में शुरुआत करते थे, आज के समय में लोग स्कूल में ही वेपिंग शुरू कर देते हैं और उसके कारण ना केवल सांस संबंधी बीमारियां, सांस से मतलब परमानेंट डैमेज भी हो सकता है, मतलब फेफड़े में कुछ ऐसे टाइप के बदलाव आ जाते हैं जो कि जीवन भर के लिए फेफड़े को कमजोर बना सकते हैं।
1: जी।
0: तो इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि लोग इसको समझें। फिर पॉल्यूशन, प्रदूषण बहुत बढ़ गया है
1: जी,
0: वो एक कारण है। फिर कुछ ऐसे कारण जैसे इंडस्ट्री में कई काम करना
1: जी,
0: केमिकल इंडस्ट्री में काम करना
1: जी,
0: फिर सिलिकोसिस, एस्बेस्टस, जो सीमेंट वगैरह जहाँ डस्ट निकलती है ऐसी जगह काम करना
1: जी,
0: ये सब कारण जो है
1: जी,
0: जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ये सब कारणों से सांस की संबंधी बीमारियां निश्चित ही बढ़ रही है।
1: जी जी जी जी जी डॉक्टर साहब, आपने स्मोकिंग और वेपिंग की बात की, तो आप हमारे युवा श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो इन सब चीजों से, श्वसन तंत्र के जो रोग हैं इनसे बचाव के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: देखिए, आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हमको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। जो पहले हम अनुशासन रहा करते थे सभी लोग करीब करीब, कि भाई समय से उठना, समय से अपनी दिनचर्या का यानी निर्वहन करना
1: जी,
0: और दुर्गुणों से बचे रहते थे काफी हद तक
1: जी।
0: लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है कि सब कुछ इजीली एसेसिबल है, तो इस कारण जो व्यसन है उसकी तरफ युवा जो है बड़ी जल्दी आकर्षित हो रहे हैं, उपलब्धता आसानी से हो जाती है
1: जी।
0: तो एक ये बड़ा कारण है
1: जी।
0: दूसरा कि जैसे मैंने कहा था कि मोटापा बढ़ना, ओबेसिटी आजकल, क्योंकि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई, बच्चे जो हैं मैदानों में कम खेलते हैं, मोबाइल में और टैब में अपना समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं, तो उस कारण उनकी जो ऊर्जा है यानी सब कार्बोहाइड्रेट फैट इकट्ठा होता है बॉडी में और धीरे धीरे वो मोटापा बढ़ता जाता है, अनेक रोग उससे उत्पन्न होते हैं, न केवल सांस संबंधित, मानसिक रोग भी उत्पन्न होते हैं, हृदय संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये हमें बहुत इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को हम सभी त्यागें
1: जी,
0: कसरत व्यायाम जो है वो अति आवश्यक है
1: जी,
0: भोजन में जो हम जंक फूड है उस पर हम बहुत ज़्यादा चले गए हैं
1: जी,
0: हमेशा पैक्ड फूड पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बड़े जल्दी हम उसको खाते हैं ज़्यादा
1: जी,
0: तो इसको हमें बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता है
1: जी, जी।
0: सभी अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों को इन सभी चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करें, व्यसनों से तो करना ही है, साथ में घर में भी आप लाइफ स्टाइल उनकी सेडेंटरी ना होने दें, उनका मोटापा ना बढ़ने दें, उनको जंक फूड से बचाएं, क्योंकि जंक फूड कहने के लिए बड़ा लोगों को आसान लगता है, अरे नहीं खाएंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में घुस चुका है
1: जी,
0: और उसके बिना नहीं रहते लोग
1: जी,
0: तो उससे बचना बहुत आवश्यक है
1: जी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें खान पान की या डाइट की, तो आप हमारे सुनने वाले को क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब एक प्रॉपर हेल्दी डाइट स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या जरूरी है?
0: देखिए, जो हमारी भारतीय डाइट शुरू से रही है, प्राचीन काल से जो परंपरा है कि हम पूरी हेल्दी डाइट हमारी थाली में परोसी जाती थी
1: जी,
0: वो सबसे उत्तम है
1: जी।
0: उसके अलावा आप फल, ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध है
1: जी,
0: जो मतलब ऐसी चीजें जो कि पैक्ड नहीं है
1: जी,
0: वो खाना सबसे उत्तम है
1: जी।
0: यदि हम कोई भी चीज, जैसे मान लो हम यही अनाज, ये जो हमने बताया, जैसे हम जो दाल चावल या चपाती या कुछ भी, यदि ये सब पैक्ड वाली खाते हैं
1: जी,
0: तो भी वो नुकसान करती है
1: ओके,
0: क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो नुकसान करते हैं, धीरे धीरे धीरे वो शरीर को बहुत कमजोर करते जाते हैं। और आजकल एक और बीमारी जो कैंसर जो बढ़ी है, कैंसर के बढ़ने का कारण भी यही सब चीजें हैं
1: जी,
0: तो हमें उससे भी सावधान रहना कि सांस संबंधी बीमारी भी बढ़ेगी कैंसर के कारण भी
1: जी,
0: तो हमें उसको बचाने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल करनी है। मतलब खाना पीना हमारा प्राचीन, हमें वहीं लौटना पड़ेगा, हम जहाँ से हम डाइवर्ट हो गए थे, हम रास्ता हमने बदल दिया था
1: जी,
0: हमें वापस वहीं लौटना पड़ेगा, उन्हीं चीज़ों पर आना पड़ेगा। और कोशिश करें घर में बनी हुई साफ सुथरी चीज़ों का सेवन करें, बाजार की चीज़ें कम से कम खाएं और खासकर पैक्ड फूड बिल्कुल ना खाएं
1: जी। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे सुनने वालों को आकाशवाणी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, पुनः मैं वही संदेश देना चाहूँगा कि हम सभी के लिए एक बड़ी आवश्यक चीज़ है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करें, अनुशासन का पालन करें, व्यायाम करें, व्यसनों से दूर रहें
1: जी,
0: भोजन अच्छा लें और पेड़ पौधे लगाएं
1: जी,
0: क्योंकि वातावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ सबसे ज़्यादा आवश्यक है
1: जी। डॉक्टर संजय भारती जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने युवाओं में होने वाले श्वसन रोग, कारण, लक्षण और बचाव, इस विषय पर विस्तार से अपने विचार रखे। हम आशा करते हैं हमारे सुनने वाले इससे जरूर लाभान्वित होंगे। आपको आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसका विषय था युवाओं में होने वाले श्वसन संबंधी विकार, कारण और बचाव। विषय विशेषज्ञ थे डॉक्टर संजय भारती, जिनसे बात की थी नीला बाजपेयी ने। साथियों, अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म गुड न्यूज से, जिसमें आवाज दी है रोचक कोहली, लव और अकाशा ने।

0: दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को पहले से कई ज्यादा आसान बना दिया है। आज हम जो स्मार्टफोन्स, नेविगेशन एप्स और ऑनलाइन सर्विसेज यूज करते हैं, उनमें से कई एआई की मदद से काम करती हैं। और यही है हमारी चर्चा का अगला विषय।
1: बिल्कुल आद्या, एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को सीखने, सोचने और डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी देती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो एआई मशीन्स को स्मार्ट बनाता है।
0: आज एआई हर फील्ड में अपनी जगह बना रहा है, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, एग्रीकल्चर हो या बैंकिंग सेक्टर हो, हर जगह एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है।
1: जैसे कि हॉस्पिटल में एआई डॉक्टर्स को डिजीजेस डिटेक्ट करने में हेल्प करता है और एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है।
0: डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और एआई डेवलपमेंट जैसी फील्ड्स में जॉब्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है।
1: बिल्कुल आद्या, इसीलिए आज के युवाओं के लिए जरूरी है कि वे सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज ही ना करें, बल्कि उसे समझें और उससे रिलेटेड स्किल्स भी डेवलप करें।
0: फ्यूचर उन्हीं लोगों का होगा जो लर्निंग कभी नहीं रोकेंगे। कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे स्किल्स एआई के युग में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं।
1: साथ ही एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज भी बहुत जरूरी है। हमें प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी और फेक इंफॉर्मेशन जैसे इशू के प्रति भी अवेयर रहना चाहिए।
0: दोस्तों, एआई को हमें कंपटीशन नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए।
1: ये हमारी कैपेबिलिटीज को इनहेंस कर सकता है और नए इनोवेशंस को जन्म दे सकता है।
0: क्योंकि आज का युवा ही कल का इनोवेटर, लीडर और चेंज मेकर है।
1: चलिए दोस्तों, आप सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म धड़क 2 से, जिसमें आवाज दी है दर्शन रावल, जोनिता गांधी और रोचक।

0: दोस्तों, वक्त हो गया है कार्यक्रम के शुरुआत में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का। हमारा आज का पहला प्रश्न था, एआई शब्द का पहली बार प्रयोग किस वर्ष में किया गया था, जिसका सही उत्तर है 1956।
1: और आज का हमारा दूसरा प्रश्न था, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है, जिसका उत्तर है परम 8000।
0: साथियों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए आपकी रेडियो दोस्त आद्या नायक
1: और अमीषा पटेल को।
0: हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय, नई चर्चाओं और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति था।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं दिल चाहता है फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत, शंकर महादेवन की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत शंकर एहसान रॉय का।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म चमत्कार से। आनंद बख्शी की रचना है और तर्ज बनाई है अनु मलिक ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम और अगला गीत हमने लिया है फिल्म चमेली से। आवाज़ सुनीति चौहान की है, बोल इरशाद कामिल के और संगीत संदेश शांडिले का।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम के संगीत से सजा गीत, आवाज़ भी सोनू निगम की है। फिल्म का नाम है चंदा की डोली और इस गीत के बोल हैं नुसरत बद्र के।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में अनिश्चितता के बावजूद भारत आत्मविश्वास के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए केंद्र और राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 14 जून को आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित विशेष ऑनलाइन योग सत्र में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। ये सत्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है। राज्य से राज्यसभा की 3 सीटें भाजपा ने जीत ली है। भाजपा के तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। नाम वापसी की अंतिम समय सीमा दोपहर 3 बजे समाप्त होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने तीनों को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपे। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी मारिवेक्स पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। भारत ने इस हमले में अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों की जान गई है। हालांकि 24 भारतीय चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इंदौर में जारी 5 दिवसीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के 3रे दिन भारत समेत 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। कृषि, खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और किसानों की आय बढ़ाने जैसे अहम विषयों पर मंथन किया गया। सब्जी उत्पादन में प्रदेश देश के अंदर 3रे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य सरकार ने बताया कि बीते 4 वर्षों में प्रदेश का सब्जी उत्पादन करीब 21,58,000 मीट्रिक टन बढ़कर 257,99,000 मीट्रिक टन हो गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज MT सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
2: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमेरिकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
1: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेट्टेबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जलक्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को MT मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सदाबहार गीत यानी यादों की वो मीठी खुशबू जो कभी फीकी नहीं पड़ती। दौर बदलता है मगर अच्छे गीत हर दौर में अच्छे लगते हैं, अपने लगते हैं। ये गीत ऐसे लगते हैं मानो चाय की वो प्यारी सी सुगंध। तो आइए सुनते हैं कुछ सदाबहार गीत आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ हूं मैं नूपुर। ये गीत किशोर दा की आवाज में फिल्म

एक और प्यारा सा तराना, फिल्म है तेरे मेरे सपने, आवाज है किशोर दा और साथ में लता मंगेशकर जी की, संगीत एसटी बर्मन, गीतकार नीरज, गीत पहुंच गया आप तक। गीत के बाद ठीक 6:20 पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार।

0: मालदीव्स सर्वकारस्य प्रतिक्रिया उपायान् सुदृढं करिष्यति इति। तस्य नेबरहुड फर्स्ट विजन महासागर इत्येतयोः अन्तर्गतं भारतं मालदीव्स देशेन सह संयुक्त प्राथमिकतासु निकटतया कार्यं कर्तुं प्रतिबद्धम् अस्ति। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अद्य राजस्थाने जैसलमेर जनपदे रामगढ़े 20 किलोवाट क्षमतायुतस्य एफएम प्रेषकस्य आभासीय उद्घाटनम् अकरोत्। जयपुरस्थे आकाशवाणी परिसरे समायोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे उद्घाटन कार्यमिदं सम्पन्नम्। अनेन सह राज्ये एफएम प्रेषकाणां संख्या विवर्ध्य 49 जाता। नूतनः प्रेषकः सीमावर्ती क्षेत्रेषु 80 किलोमीटर परिमिते क्षेत्र रेडियो प्रसारणस्य आवरणं प्रदास्यति। एतेन जनाः विविधाः सूचनाः शैक्षिक सामग्र्यः प्राप्तुं शक्नुवन्ति। सभां सम्बोधयन् श्री वैष्णवः अवदत् यत् देशस्य सीमाक्षेत्रेषु कश्मीरतः कच्छ पर्यन्तम् आकाशवाणी दूरदर्शनयोः प्रसारणसेवायाः विशिष्टाः लाभाः प्राप्स्यन्ते।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधते हैं। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: प्रशासनेन एथोनॉल मिश्रित पेट्रोल उत्पाद शुल्कम अपसारितम्। वित्त मंत्रालयेन एकया अधिसूचनया प्रकाशितम् यत् 20%-30% एथोनॉल मिश्रित पेट्रोल उत्पादं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क श्रेण्यात् पूर्णतया विमुक्तम्। मंत्रालयेन उक्तं यत् अस्य शैथिल्यस्य उद्देश्यं भारतीय एथोनॉल मिश्रण कार्यक्रमं सुदृढीकरणमस्ति। 26,000 वर्षस्य फीफा विश्व चषक क्रीडायाः आरम्भः अद्य रात्रौ मेक्सिको नगरस्य ऐतिहासिके एस्टाडियो एर्जेटेका क्रीडागृहे आरभ्यते। इति वार्ताः।

आरडी बर्मन के संगीत से सजा आप गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था हीरा वन्ना। खूबसूरत आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की और बोल थे आनंद बख्शी के। कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म चश्मे बद्दूर से। इस गीत को गाया है यशुदास और हेमलता ने और संगीत है राजकमल का और बोल इंदु चैन के।

यसुदास और हेमंती शुक्ला की आवाज़ में आप सुन रहे थे बहुत ही खूबसूरत सा गीत। और आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म क्रिमिनल से। कुमार सानू की आवाज़ है, साध्या है अलका याग्निक ने, इंदिवर के बोल हैं और तर्ज बनाई है MM करीम ने।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में दामिनी फिल्म का गीत। गीत है समीर का और संगीत नदीम श्रवण का।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसानवाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
2: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
4: We attach high importance to the welfare and well-being.
5: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
4: Peace and stability in the region.
3: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा है कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलों से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय

अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ओमान के अधिकारी राहत और आपातकालीन समन्वय के प्रयासों में जुटे हैं। टैंकर में आग लगने के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। 8 जून को MT मारिवेक्स अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर आकाशवाणी में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी का प्रसारण किया जाएगा। आप सुनिएगा भेंटवार्ता। विषय रहेगा मानसून के दौरान किचन गार्डन और बगीचे की देखभाल। जानकारी देंगी ममता वाजपेयी। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष साइंस एंड टेक प्रसारित करेंगे रात्रि 8 बजे। 9:30 पर सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात्रि 10:30 पर सुनेगा रहमत अली खान का सरोदवादन, राग होगा बागेश्री। और अब एक नज़र हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह 7:20 पर प्रस्तुत करेंगे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर। गांधी चर्चा का समय रहेगा सुबह 9:15, फिल्म संगीत होगा 9:30 पर। हर रोज की तरह सुबह 10 बजे सुनेगा जिले की चिट्ठी। 10:05 पर बहनें सुनेंगी महिला संसार कार्यक्रम में सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बातें करें। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 पर सुनेगा रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन, राग होगा मंगल भैरव। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में 11 बजे सुनेगा फोन इन कार्यक्रम फोन करें की सुने। 12:30 पर और रात्रि 10 बजे पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुन सकेंगे धारावाहिक जंग लगी तलवार का 7वां भाग। दिन में 1 बजे होगा महिला कार्यक्रम। 1:30 पर सुनेगा लोक संगीत का कार्यक्रम। 1:45 पर पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम और शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:30 पर और रात्रि 9:45 पर। शाम 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा होगा जिसे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रस्तुत किया जाएगा। रात्रि 8 बजे सुनेगा समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष जन विश्वास इज ऑफ ड्राइंग बिजनेस।

रात्रि 9:30 पर प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम खेल जगत, जिसमें आप सुनेगा वार्ता आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप। वार्ताकार होंगी प्राची तिवारी। और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे रोनू मजुमदार का बांसुरी वादन, राग होगा सरस्वती।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक में पीएम मोदी का संदेश, दुनिया की अनिश्चितता के बीच आत्मविश्वास के साथ विकास पथ पर भारत। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल पूरे करने पर पीएम मोदी ने अमेरिका, जर्मनी, इजराइल समेत कई देशों के नेताओं का जताया आभार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 14 जून को आयुष मंत्रालय के ऑनलाइन योग सत्र में जुड़ने की अपील की और प्रदेश की तीनों सीटों पर भाजपा

0: भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित रिटर्निंग ऑफिसर ने सौंपे प्रमाण पत्र। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में अनिश्चितता के बावजूद भारत आत्मविश्वास के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए केंद्र और राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार देना प्राथमिकता बताया। इस वर्ष बैठक का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया भर के नेताओं से मिली बधाइयों के लिए आभार व्यक्त किया है। 10 जून को 12 वर्ष पूरे कर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। श्री मोदी 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए। उन्होंने अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी, इसराइल, इटली, गुयाना और भूटान के नेताओं का धन्यवाद करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 14 जून को आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित विशेष ऑनलाइन योग सत्र में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। ये सत्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है और आज ये एक वैश्विक जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक जन आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के 7वें काउंटडाउन के अवसर पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 बजे से 7:35 तक एक विशेष ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को योग से जोड़ते हुए स्वस्थ, जागरूक एवं निरोग समाज का निर्माण करना।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी मारविक्स पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। भारत ने इस मामले में अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों की जान गई है। हालांकि 24 भारतीय चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव के बावजूद देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है। इंदौर में जारी 5 दिवसीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के तीसरे दिन भारत समेत 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। कृषि, खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और किसानों की आय बढ़ाने जैसे अहम विषयों पर मंथन किया गया। सम्मेलन में शामिल विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने वैश्विक कूटनीति और व्यापारिक संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति की है और अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं। सम्मेलन में शामिल इथियोपिया के एक प्रतिनिधि ने कहा,
2: मैं इंडिया में बहुत बहुत खुश हूँ, भारत में बहुत खुश हूँ। हमारा दोनों देश, प्रधानमंत्री जी भी पिछली बार हमारा देश गया था, तो अच्छा स्टेट विजिट था। हमारा प्रधानमंत्री, इथियोपिया का प्रधानमंत्री भी अच्छे से स्वागत कर दिया मोदी जी के लिए। सो दोनों देशों बीच में अच्छा रिश्ता है।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटें भाजपा ने जीत ली है। भाजपा के तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। नाम वापसी के अंतिम समय सीमा 2:00 PM समाप्त होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने तीनों को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन हलफनामे में अनियमितता के आधार पर मंगलवार को ही खारिज कर दिया गया था। इसे कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने इस याचिका पर कल तक के लिए सुनवाई टाल दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 14 जून का दिन क्षेत्र के किसानों के लिए ऐतिहासिक होगा। इस दिन सुबह 10 बजे विदिशा के बेरखेड़ी जट्टू में कृषि

0: कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा, जिसे भारत का मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों ने इस योजना को अपने जीवन में आए बड़े बदलावों का कारण बताया है। इस योजना के हितग्राही द्रौपदी राय बताती है,
1: उज्ज्वला योजना मिलने से ये फायदा हुआ है कि मेरे घर में अब धुओं से राहत होगी तथा महिला और बच्चों के स्वास्थ्य में बहुत सुधार हो गया है, ज्यादा समय की बचत हो गई है। और प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस योजना से महिलाओं को सम्मान मिला है तथा जीवन यापन में बहुत सुधार आया है।
0: राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव ने आज भोपाल सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया और ट्वीशा शर्मा केस के आरोपी सेवानिवृत्त जज गिरबाला सिंह से मुलाकात की। निरीक्षण के दौरान टीम ने महिला वार्ड, अस्पताल, रसोई घर, पुस्तकालय और आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर का जायजा लिया। सब्जी उत्पादन में प्रदेश देश के अंदर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य सरकार ने बताया कि बीते 4 वर्षों में राज्य का सब्जी उत्पादन करीब 21,58,000 मीट्रिक टन बढ़कर 257,99,000 मीट्रिक टन हो गया है। प्रदेश में इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से आज ग्वालियर, जबलपुर समेत 34 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए भारत की पुरुष अंडर 19 टीम का ऐलान कर दिया है। यशवर्धन सिंह चौहान को कप्तान और लक्ष्य रायचंदानी को उप कप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम अगले महीने 3 वनडे और 2 मल्टी डे मैच खेलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने आज राजस्व अधिकारियों के साथ सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा और खाद वितरण निगरानी की विस्तृत समीक्षा की। खंडवा जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र खालवा में परंपरागत चिकित्सकों भूमका और पढ़िहार के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज भोपाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद आलोक शर्मा ने सीहोर में सीवन नदी के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। शहडोल संभाग के 3 जिलों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 126 नए स्कूल भवन बनाने की तैयारी है। मंदसौर के श्री पशुपतिनाथ मंदिर परिसर स्थित भोजनालय के संचालन की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। श्रद्धालुओं को सस्ती दरों पर भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। राजगढ़ में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और जन जागरूकता संबंधी गतिविधियां निरंतर संचालित की जा रही हैं। नीमच कलेक्टर की पहल पर गंभीर बीमारी से पीड़ित एक बालिका के उपचार के लिए भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी से 1,00,000 रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। सिंगरौली जिले में संचालित 5 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। रायसेन स्थित हजरत पीर फतेहुल्लाह शाह बाबा के दरगाह शरीफ परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। शिवपुरी में थोक उर्वरक विक्रेताओं के पास उपलब्ध स्टॉक की निगरानी और वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए निरीक्षण दलों का गठन किया गया। छिंदवाड़ा के तामिया थाना क्षेत्र के ग्राम सिंथोली में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक किसान की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। अशोकनगर में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों की बैठक ली गई। जबलपुर में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. कैलाश शाटव ने अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण और उत्थान से जुड़े कार्यों की जानकारी ली। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।

0: जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सगाई भैया बहनन खां रूबी बहन की राम राम। और आज हमारे संग बैठे रंगाई भैया, तो रंगाई भैया आपके लिए भी हमारी राम राम।
1: राम राम रूबी बहन और कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन का जय, रंगाई भैया की राम राम। और सुनाओ रूबी बहन,
0: बस का सुनाए भैया। देखो इतनी गर्मी पड़ रही है और गर्मी में तो बिल्कुल धूप में निकलो ही नहीं जाते, और उतना ही भैया देखो घर में भी पसीना पसीना हो जाते हैं, और तो कछु काम में मन ही नहीं लगाते। और जैसा ऐसे ही एकदम से तेज गर्मी लगाते है तो कछु पानी वानी पीवे में भी आ जाते है, तो वो स्वास्थ्य पे भाई असर डालाते है।
1: बिल्कुल सही है ना।
0: और देखो देखो स्वास्थ्य की बात चल रही है, तो देखो भैया अपन के लाने स्वस्थ रहने के लाने का जरूरी है कि अपन जो है अपनी जो अपनी दैनिक चर्या है भाई नियमित और संयमित रखें, है ना। जब अपन अपनी जो अपनी दैनिक जीवन है भाई नियमित और संयमित रखेंगे तो अपन स्वस्थ रहेंगे।
1: बिल्कुल, पर जाके लाने आप देख रहे हैं बहन, बात जा है कि अपने लाने जैसे अपन खा पी रहे तो खूब, पर घूम फिर भी रहे, अगर थोड़ा सो अगर अपन योग कर ले,
0: योग कर ले
1: योग, तो ही अपन निरोग रह पाएंगे। आप समझ रहे हो ना, आजकल निरोग रहने के लाने योग बहुत जरूरी है। तो हम चाह रहे हैं कि अपने भैया से थोड़ी सी योग के बारे में चर्चा करें।
0: जो ही कह रहे थे हम कि काय से भैया अपन देख रहे हैं कि जब भागदौड़ बड़ी जो जिंदगी है, जो जीवन है अपा, तो काम काज के चक्कर में लोग जो है अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बस खाओ पियो जल्दी जल्दी और अपने काम पे लग गए। अगर अपन है ना पुराने समय में जाएं तो अपने जो बुजुर्ग थे, अपने जो पूर्वज थे, वे मेहनत बहुत कराते थे और भैया सुबह जल्दी उठाते थे। और देखो सूर्य का जो सूर्य की जो पहली किरण आता थे वो लेते थे, और भैया संगे ही देखो कछू ना थोड़ा बहुत व्यायाम कराते थे, ध्यान कराते थे, वातावरण शुद्ध रहता।
1: तो आजकल तो आप देख रहे हैं वातावरण भी प्रदूषित जा रहा है,
0: तो ध्यान कराते थे और योग कराते थे। भैया जो योग एक ऐसी क्रिया है जो पुराने समय से चली आ रही है, अबे लोग का है बीच में जवाब को भूल गए थे, पर भैया स्वास्थ्य संबंधी इतनी समस्याएं हो गई हैं कि आज है ना छोटी से छोटी उम्र को आदमी को कोनू ना कोनू बड़ी गंभीर बीमारी हो गई है। और भैया पहले क्या होता तो कि जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं बिनको ही बीमारियाँ लगाता थी, अब तो छोटे छोटे बच्चन का ये बीमारियाँ हो रही हैं। तो भैया यही सब के का है कि अगर अपन चाहते हैं कि आप जो है निरोगी रहें स्वस्थ रहें, जाके लेने भैया योग करना होगा, है ना। तो आप जो कामन के बीच में समय निकाल के योग करना चाहिए, है ना।
1: जाके लाने सीखवे के लाने, तो आप जान तो भैया के सीखवे के लाने आप योग गुरु भी बना सकते हो।
0: हाँ।
1: और जाके जा दिशा में बाबा रामदेव जी ने तो योग के लाने जो योग
0: देखो आप जो जो ऋषि मुनि है,
1: हाँ। उनकी पुरानी परंपरा
0: परंपरा पे अपन को चलना चाहिए,
1: बाबा के आधार पे चल सकते हैं। योग अगर अपन करेंगे तो निश्चित तौर पे अपन तो व्यायाम यानी अपन रोज सुबह उठ के और व्यायाम करें,
0: व्यायाम करें, ध्यान करें, योग करें, योग की कई क्रियाएं होते हैं बिनके लाने करें, है ना।
1: तो अभी तो अपन स्वस्थ रहेंगे,
0: स्वस्थ रह सकते हैं। आजकल का है कि अपन काम काज से जो नेक टाइम मिलो तो वो स्क्रीन पे निकाल देते हैं, मोबाइल पे निकाल देते हैं। तो भैया जो जो स्क्रीन पे टाइम निकालते हैं वो जो है अपने स्वास्थ्य पे बुरा असर डालते हैं, अपनी आंखें खराब होते हैं और अपन टाइम भी कोई पता नहीं चलता। तो अगर अपन सिर्फ आधा घंटा योग के लाने निकाल लें, है ना, तो अपन जो है बहुत कुछ हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। और भैया देखो अब अपन आगे बताएं, सुन लेते हैं जो जरूरी संदेश।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: अब देखो भैया अपन बात कर रहे थे स्वस्थ रहने के लाने योग करना चाहिए, योग करेंगे तो अपन स्वस्थ रहेंगे। संगे भैया आप अपन को लाने आप जो खान पान है बाय भी सही रखना है, है ना। जब आप खान पान सही होगा तो अपन आप भी स्वस्थ रहे,
1: जो भोजन है वो संतुलित मात्रा में लें, भोजन भोजन में
0: साफ सुथरों लें, स्वच्छ लें, यानी कि रखो भावना खाएं,
1: भोजन में विटामिन कार्बोहाइड्रेट बसा इन सब तत्वन को हो वो बहुत जरूरी,
0: बहुत ही जरूरी है।
1: ऐसे की जो विटामिन अगर हमारे शरीर में पूरे होंगे, कार्बोहाइड्रेट होगी, बसा होगा, तो हमारा शरीर है ना संतुलित भोजन करेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा।
0: और भैया ऐसे ही अपन के लाने जब पानी जरूरी है,
1: हाँ।
0: तो पानी जो है स्वच्छ होना चाहिए। आजकल अपन देखते हैं कि अपन के नलन में जो पानी आते हैं या कुआ को तालाब को अपन जो पानी पीते हैं वो भी दूषित होते हैं। और वैसे तो अब एक व्यवस्थाएं हो गई हैं कि हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। तो अगर है ना जैसे जल, जैसे नल से जल जो आ रहा है या हैंडपम्प से जो जल आ रहा है, कभी कभी आपने देखो होगा वहां में सफेद सफेद सो पाउडर सो दिखाते, कभी लाल लाल दिखाते, तो ऐसा पानी अपन को सीधे नहीं पीना है। अपन को क्या करना है कि भाई उबालना है, उबाल के भाई छान ले है ना, और अगर ज्यादा ही गंदो है तो बामे का एक फिटकरी को टुकड़ो डाल लें, जैसे कहो वो कि अपना पानी जो है साफ सुथरा स्वच्छ हो जाए।
1: भी हम बता देते हैं फिटकरी को, तो सीधो सीधो उपाय जो है कि अपन मटका पानी को भर ले,
0: हाँ।
1: और एक डेला लेके और अपने हाथ से फिटकरी को एक डेला अगर घुमा के और बाहर निकाल ले,
0: हाँ।
1: तो वो पानी में का है कि जो भी है ना
0: गंदगी होते
1: है वो अपने आप मटका के नीचे
0: जम जाते हैं।
1: तो सबसे बढ़िया तरीका तो हमें जो
0: अच्छा लगो
1: पर जाम में का है फिटकरी घुमा दे और निकाल लियो फिटकरी, तो वो पानी नीचे जम जाते हैं, उसमें गंदगी जम जाते हैं,
0: गंदगी
1: तो
0: जम जाते
1: हैं। साफ सुथरा पानी पियोगे तो निश्चित तौर पर।
0: और भैया उबाल कर और छान कर ये भी अच्छा है ना, ठंडो करके फिर मटके में डाल दो।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि आप छान के ही पानी भरो,
0: हाँ।
1: और छान के अपन ने भर लो और बाद में अपन उबाल लो तो बढ़िया हो जाए।
0: तो ये काय से कि अपन ने जो भी देखो है कि जो पेट संबंधी बहुत सी बीमारियां होते हैं वो दूषित जल से ही होते हैं, तो जो दूषित जल पीवे से अपन के लाने अपा बचाव करना चाहिए है ना, अपन के लाने स्वच्छ और साफ जल ही पीवे योग्य बनाना चाहिए। और जब अपन है ना दूषित जल से बचेंगे उसके सेवन से तो स्वस्थ रहेंगे है ना।
1: देखो वो कि जैसे उल्टी है, दस्त,
0: हाँ, उल्टी पेट दर्द है,
1: हैजा है, पीली आए, तो ये सब बीमारी जो होते हैं ना इनकी मुख्य जड़ है दूषित जल।
0: दूषित जल
1: आपके लाने भैया ध्यान रखने है कि पानी है ना शुद्ध पानी पीने। आप चाहो तो भैया जामे एक और है जैसे आपके यहाँ ट्यूबवेल या
0: हैंडपंप है,
1: तो जा पानी की आप जांच भी करा सकते,
0: जांच भी करा सकते
1: जिला स्तर पर जाकी जे
0: पानी की
1: पानी हर जिला स्तर पर एक प्रयोगशाला
0: बनी गई
1: सरकार द्वारा, जो पीएचई विभाग होते हैं ना वहाँ में प्रयोगशाला होते है, तो वहाँ में आप अपने
0: पानी
1: अधिकारी से मिलके आप पानी की जांच भी करा सकते हैं कि जामे कौन कौन से तत्वन की कमी है,
0: कमी
1: है,
0: पानी कैसा है पानी,
1: तो आप है ना अपने पानी की जांच करें और बेतत्वन की पूर्ति करने की भी वे सलाह
0: दे थे
1: आपके लाने कैसे पूर्ति करने है।
0: और
1: तो भैया जद साहब जाको अगर पानी की जांच हो जाए तो जो भी है बहुत अच्छी बात रहेगी, आपके तत्वन की पूर्ति हो जाएगी,
0: पूर्ति हो जाएगी। तो भैया अब आप कार्यक्रम को समय भी पूरा हो चलो है, तो अपन जो है आप भैया बहनन से चौपाल कार्यक्रम से ले लेते हैं आज्ञा, तो रूही बहन को
1: और भाई भैया का आज्ञा दे और
0: राम राम जय जवान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: क्या कर रहा है? इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहा है?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे, रे,

0: एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूँगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: जय जवान जय किसान। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सगाई भैया बहनन खा, रूबी बहन और
4: रंगाई भैया की भी
3: राम राम। और रंगाई भैया देखो, अपाई जो सरकार है भारत सरकार माने जो है इतनी योजनाएं चलाई हुई हैं अपाई देश के लोगों के लाने, जैसे कहा है कि सभी लोग अपने जीवन को बेहतर बना सके।
4: बिल्कुल सही बात है ना भाई। किसान भैया के लाने तो बहुत सारी योजनाएं चलाई,
3: हाँ, उनकी समृद्धि के लाने, इनके सशक्तिकरण के लाने बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जिनसे कहा है कि किसान जो है, किसान को जो है सुरक्षा मिली है।
4: बिल्कुल सही
3: है ना। अब जैसे पहले का होता तो कि जैसे फसल खराब हो जाता थी तो किसान को नुकसान हो जाता, तो बाकी लाने फसल बीमा ही चलाई है। ऐसे ही भैया देखो, किसानन के लाने जो छोटे किसान है बिन के लाने चलाई है किसान सम्मान निधि योजना।
4: बहुत अच्छी बात।
3: और ये जो किसान
4: सम्मान निधि योजना एक अच्छी योजना है, जहाँ क्या होता है कि हमारे जो जिन किसान भैया पे जमीन कम है, तो जमीन कम होवे की वजह से क्या है उनकी कभी अकस्मात बिन के घर में परिवार में ऐसे खर्चे आ जाते जिनकी पूर्ति में फसल से
3: नहीं हो पाता थी।
4: तो उन किसान भैया के लाने हमारी सरकार ने एक व्यवस्था करी है जाको नाम है
3: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।
4: तो जहाँ योजना के तहत कहा है की 3 किस्तों में समय समय पे किसान भैयान की आर्थिक सहायता करी जाते
3: हैं। जहाँ भैयान जो आप किसान भैया बहन है बिनके लाने 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं।
4: एक किस्त 2 हजार की दे देते हैं,
3: हाँ, तीन किस्त
4: समय बाद फिर 2 हजार की दे देते हैं।
3: हाँ,
4: तो ऐसे साल में 3 किस्तें
3: दी जाते हैं। कुल मिला के इस वर्ष में जो है 6 हजार रुपये दिए जाते हैं।
4: और भैया वो इन किसान भैया से है की देखो भैया, हो सकता है वैसे तो आप जा किसान सम्मान निधि योजना को लाभ ले रहे होंगे, और हमारे अगर कोई भैया जैसे वंचित हैं जाए योजना से, तो हम इनके लाने बता रहे हैं कि देखो भैया, अगर आप जाए योजना से वंचित हैं और आपके पास जमीन कम है तो आप जा में फार्म अपनो भर के और जा किसान सम्मान निधि को फायदा ले सकते
3: हैं। और भैया जी के लाने कहा है कि आपको जो है जो आपके पास जितनी भूमि है उसकी पूरी जानकारी देनी होगी।
4: भूमि में कहा है जैसे जो भी कागज लगाते हैं, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, जो भी है, तो आप संबंधित जाके अधिकारी से मिलके और जा में काय अपने जमीन के जो कागज खसरा खतौनी आदि लेके और वहाँ के स्थानीय जो पटवारी है आप इनसे संपर्क करके जाके जानकारी लेके और भैया
3: आप जय योजना से जुड़ के
4: लाभ ले सकते
3: हैं। और भैया जी जो जो आपके लाने जो धनराशि मिलेगी बाको भी होगा, आप जो है अपने जो खेती के खर्चा है बिन में कर सकते हैं, जैसे खाद बीज।
4: एक सबसे अच्छी बात जहाँ मैं कहा है कि जैसे मान लियो आपकी जमीन है और परिवार में मान लियो 5 लोगों के नाम है आपकी जमीन, जमीन तो एक ही है पर परिवार के 5 लोगों को नाम जुड़ो है, जहाँ में एक अच्छी बात जाए कि वो 5 ही लोगों का जहाँ में 2-2 हजार रुपया की किस्त मिलता है।
3: किस्त
4: मिले जहाँ से क्या होता है कि जमीन तो एक है,
3: एक जमीन
4: लोग
3: बाकी मालिक है, हिस्सेदार
4: है, तो वो 5 जन के लाने जहाँ में लाभ मिलता
3: लत रहे।
4: बहुत बढ़िया।
3: और भैया जो अपने जो पहल से जा इससे जुड़े भाई हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, तो भैया कहूँ भैया के लाने जो शिकायत रहते हैं कि हमारी किस्त नहीं आई है, तो भैया जाके पीछे पता है क्या कारण है कि वो जो खातो है आप बैंक को जो खातो है वहाँ में जो है EKYC कराना बहुत जरूरी है।
4: आप समय समय पे अपने बैंक में जाके
3: EKYC कराएं,
4: हमारे कागजात पूरे हैं कि नहीं है। अगर भैया आपके कागज पूरे होंगे तो निश्चित,
3: और वहाँ में जो जो आधार आपने जो आधार को लिंक करवाना जरूरी है तब वही
4: तो आधार के लाना है, मोबाइल नंबर वगैरह, ये सब बातन को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी किस्त आ जाए। और जो भैया जा योजना के बारे में नहीं जानत है तो हम बिनके लाने बता रहे हैं कि भैया जा एक बहुत अच्छी योजना है, आप जा से जुड़ के
3: जैसे लाभ उठाएं। और भैया देखो, आप जो बहुत से ऐसे भी किसान हैं जो मछुआ किसान हैं, वो जो मछली पालन कराते हैं, तो बिनके लाने भी अपा जो सरकार है बने ऐसी योजनाएं चलाई हैं जैसे कि अपा जो मछुआ किसान है वे भी लाभ ले सकें। तो भैया जय के और अपन जानकारी के लिए आज अपन भैया के लाने लेकर आए हैं एक बातचीत जी को विषय है मत्स्य संपदा योजना से किसानों को लाभ। और भैया जी पे जानकारी दे रही है श्रीमती पूजा श्रीवास्तव और जिनसे बता रहा है अपा भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो अपन सब मिलकर सुनाते हैं जो बातचीत।
5: किसान श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार का और मध्य प्रदेश शासन का एक लक्ष्य है कि किसानों की आय दुगनी की जाए और अधिक से अधिक धन कमाने के लिए अधिक से अधिक मेहनत करनी होगी और सरकार की कई जो तमाम सारी योजनाएं हैं उस योजना का हमें लाभ लेना होगा। भारत सरकार की एक विशेष

योजना है मत्स्य संपदा योजना, उन किसानों के लिए लाभप्रद है जो किसान खेती के साथ साथ तालाब भी रखे हुए हैं और मछली पकड़ने का काम करते हैं और अधिकाधिक लाभ इस योजना से, या यूं कहें कि मछली पकड़कर वो अपनी आमदनी को दुगनी कर सकते हैं, जैसा कि भारत सरकार की मंशा है। तो मत्स्य

0: इस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या है, या इस योजना से किस तरह से हमारा किसान लाभ ले सकता है और अपनी आमदनी को दुगनी कर सकता है।
1: जी सर, और सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जिस प्रकार से हमारे जो किसान भाई बहन हैं जो मछली पालन का काम करना चाहते हैं, उनके लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये लागू की गई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये बहुत ही अच्छे स्तर पर इससे किसानों को लाभ हुआ है और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इससे अच्छा बेनिफिट भी लें। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे जो पूर्व समय था उसमें किसानों को तालाब जो होता था बस पट्टे पे दे दिया जाता था और वो एक सिंपल तरीके से अपनी पारंपरिक खेती करते थे मछली की, लेकिन ये एक आधुनिक तकनीकी के रूप में उभर कर हमारे सामने आया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसमें जो किसान हैं जो इसमें नई नई योजनाओं से नई नई तकनीकी का उपयोग करके उसका प्रबंधन करके अच्छी तरीके से मछली पालन कर अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं, जिससे मेन उद्देश्य इसका यही है कि वो अपनी आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से वो समृद्ध बनेंगे, उनकी जो स्थिति है बहुत अच्छी हो रही है और हमारे जिले में भी बहुत अच्छी हो रही है। इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है इसके तहत बहुत सारी योजनाएं हमारे में लागू की गई हैं। इसमें एक आता है स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण। स्वयं की भूमि में तालाब जो भी हमारे किसान भाई बंधु हैं जो मछली पालन का काम करना चाहते हैं, अगर उनके पास में भूमि है स्वयं की तो वो उसमें तालाब का निर्माण करा सकते हैं हमारे यहाँ से। तालाब का निर्माण कराने पर उनको जो भी 40% जो है सामान्य वर्ग को और महिला और एसटी जो है उनको 60% सब्सिडी दी जाती। इसके अलावा एक हमारे यहाँ इसमें योजना है केज कल्चर,
0: आपने बताया 40% सब्सिडी और 50% सब्सिडी,
1: 60%
0: 60%
1: जी
0: सब्सिडी दी जाती है।
1: हाँ जी,
0: तो इसकी क्या मैक्सिमम सीलिंग है कि अगर मैंने बताया कि मेरा खर्च 10 लाख हो गया तो मुझे 4 लाख मिल जाएंगे, या मैंने बताया 20 लाख खर्च हुए जबकि हकीकत में 20 लाख खर्च नहीं हुए हैं, तो इसकी सीलिंग भी है क्या?
1: नहीं सर, सीलिंग इसकी नहीं है, इसका डिवाइडेशन एक्चुअली तालाब के बेस पर है कितने हेक्टर में बनाते हैं। जैसे कि अगर ये जो तालाब बनाते हैं वो आधे हेक्टर से लेके 2 हेक्टर तक बनाया जाता है। अगर आप 1 हेक्टर की बात करें तो 1 हेक्टर का तालाब निर्माण कराने पर 7 लाख की लागत आती है।
0: तो सरकार के यहाँ पर यानी कि शासन के यहाँ पर इसकी
1: जी
0: तय है कि एक
1: हाँ
0: हेक्टेयर पर 7 लाख का ही खर्चा
1: जी
0: आएगा,
1: जी बिल्कुल
0: उसी के आधार पर
1: जी
0: सब्सिडी
1: जी
0: दी जाएगी। ऐसा नहीं कि वो कहेगा साहब मेरे तो 10 लाख लग गए,
1: नहीं
0: नहीं,
1: नहीं
0: सात लाख
1: नहीं,
0: ही सरकार
1: हाँ
0: मानेगी।
1: 7 लाख ही मानेंगी, और जिसमें आपको 40% दिया जाता है, 60% जो सब्सिडी दी जाती है वो ही आप देंगे, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें 10 लाख भी लगाएं जो उसको मॉडर्न
0: हाँ,
1: तरीके
0: मैं
1: से
0: वही
1: करना
0: जानना चाह
1: चाहते
0: रहा
1: हो।
0: था, मतलब आपने बताया कि मैक्सिमम सीलिंग नहीं है लेकिन 7 लाख
1: जी
0: का एक प्रतिबंध लगा है
1: प्रतिबंध
0: कि
1: लगा
0: 1 हेक्टेयर 7 लाख, 2 हेक्टेयर 14 लाख।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी
1: एक है हमारे यहाँ पे केज कल्चर,
0: जी
1: केज कल्चर जो योजना है उभर कर बहुत अच्छे तरीके से सामने आई है और किसान इससे बहुत अच्छी आमदनी कर भी रहे हैं। हमारे शिवपुरी जिले में भी अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा पचीबुला जलाशय है, वहाँ पर केजों का निर्माण किया गया है। इसमें जो हमारे ड्रम होते हैं प्लास्टिक के उससे केज का निर्माण किया जाता है, केज मीन्स पिंजरा तरीके का जो
0: जी
1: होता है, और उसमें नेट जो हमारा जाल होता है उसको लगा दिया जाता है और प्रति जो केज होता है उसकी लागत 3 लाख रुपए आती है। ऐसे करके एक पूरी बैटरी बनती है और उसमें 24 केज या से ज़्यादा भी लगा सकते हो आप, तो 1 करोड़ के करीब प्रावधान उसका पूरा रहता है, 1.5 करोड़ का उसमें उनको सब्सिडी मिल जाती है।
0: उसमें सब्सिडी कितनी देती है
1: उसमें भी
0: सरकार?
1: सर 40%, सब में प्रावधान यही है केंद्र
0: 40 और 60।
1: सरकार का। हाँ जी
0: सामान्य वर्ग के लिए 40 है,
1: हाँ
0: अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए 60%,
1: 60% का अनुदान दिया जाता है।
0: जी
1: इसमें जो
0: बीपीएल और एपीएल का इसमें कोई
1: इसमें
0: प्रतिबंध
1: ऐसा कुछ नहीं है
0: प्रतिबंध नहीं है?
1: जी नहीं है।
0: जी
1: बीपीएल के लिए वो अगर हमारे जो शासकीय तालाब लीज पर दिए जाते हैं उनके लिए बेनिफिट रहता है,
0: जी
1: उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं।
0: जी
1: इसमें सर जो मछली पालन किया जाता है वो पंगेसियस मछली का किया जाता है, ये बहुत ही अच्छी मछली है जो उभर कर सामने आई है अभी, क्योंकि ये सघन में भी बहुत अच्छे से क्या है सर्वाइव कर लेती है और इसको ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं होती है, ये एयर वाली होती है तो बाहर लेकर सांस भी ले सकती है और इसीलिए तो बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ होती है सर, तो ये 3-4 महीने में ही काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। इससे हमारे जो किसान हैं वो बहुत अच्छा लाभ कर रहे हैं और जो भी उनसे निकलती है केज से मछली उसको बाहर वो भेज देते हैं।
0: आपने दो तीन चीज़ें बताई हैं, अब कोई किसान है या इस बिजनेस में उतरने वाला हमारा
1: जी
0: कोई भी साथी है ग्रामीण अंचल का, वो अपने खेत में तालाब का निर्माण कराता है, तो आपने बताया है कि अनुदान की योजना इसमें दी
1: जी
0: जाती है, और तो अनुदान के लिए क्या सीधा व्यक्ति आपके कार्यालय में संपर्क करे या उसे समूह बनाना होगा?
1: नहीं, उसके लिए सर ये है कि हमारे यहाँ अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है प्रति हेक्टर के बेस पर।
0: जी
1: अगर कोई जैसे शासकीय तालाब है वो 1 हेक्टर का है तो वो प्रति व्यक्ति को दिया जाता है लीज पर, और अगर जैसे 2 हेक्टर या 5 हेक्टर का कोई तालाब है ग्राम पंचायत का जनपद का तो उसके लिए एक समूह गठित किया जाता है, उस समूह या समिति को बना के हम 10 साल के लिए लीज पर दे देते हैं, उसकी कुछ लीज राशि जमा जमा होती है जिला पंचायत में,
0: सिक्योरिटी

0: सिक्योरिटी होती है बहुत कम होती है, वो 250 रुपये और 500 रुपये के ये होती है, साल भर में उनको जमा करना होता है। बाकी वो 10 साल के लिए हम लीज पर दे देते हैं समूह बनाकर, वो इजीली अपना मत्स्य पालन का काम करते हैं और उसको सेल करके अपनी आय को बढ़ाते हैं।
1: तो लीज पे देने पर वो मछली पकड़ते हैं तो उसमें कुछ हिस्सा सरकार का, शासन का होता है कि पूरी तरह से वो पूरी बिक्री करके अपना मुनाफा और अपनी लागत स्वयं रख सकते हैं?
0: जी नहीं सर, उसमें बस अकेला हमारे यहाँ रॉयल्टी का है, जमा होती है जिला पंचायत में, बाकी सेल्फ उनका है सब कुछ।
1: रॉयल्टी किसे कहेंगे?
0: मतलब जब वो तालाब लेते हैं तो साल भर में कोई लीज राशि जमा करना होता है जिला, जो की शासकीय तालाब है
1: जी,
0: उसको हम जिला पंचायत में, जनपद पंचायत में, ग्राम पंचायत में उसको जमा करना होता है। इसका प्रावधान अलग अलग है, ग्रामीण तालाब में तो 500 रुपए है, 250 रुपए है, ऐसे करके उसकी रॉयल्टी होती है।
1: और फिर
0: है।
1: वो जितनी भी मछली
0: हाँ,
1: पकड़ते हैं
0: जी,
1: कम पकड़े तो उनकी और ज्यादा पकड़े तो
0: बिल्कुल,
1: उनकी, और बेचना भी उनका
0: सब
1: है,
0: सब उनको फ्रीली 10 साल के लिए दिया जाता है। 10 साल जब पूरे हो जाते हैं तो पुनः से वही प्रक्रिया की जाती है,
1: दोबारा से मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू जैसा।
0: हाँ जी,
1: कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू जैसा
0: जी,
1: कि आपका जो है वो दोबारा से हम उसे प्रक्रिया करेंगे। समूह में कितने सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं?
0: समूह में सर आपके ऐसे कि 5 लोग भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, है ना, और इससे ज़्यादा अगर बनाना है आपको तो एक समिति गठित होती है हमारे यहाँ पे, जिसमें 21 लोग होते हैं प्रावधानिक, जो हमारा पंजीयन कार्यालय है समिति गठित का, वहाँ से उसका कोऑपरेटिव सोसाइटी से वहाँ से उसका पंजीयन कराया जाता है। फिर उसको हमारे जो भी तालाब हैं बड़े बड़े जो होते हैं, जिला पंचायत के हैं, मत्स्य महासंघ के हैं, उनको हम 10 साल के लिए उनको लीज पर दे दिया जाता है।
1: वहाँ से वो मछली पकड़कर अपनी बेच सकते हैं और आमदनी दुगनी कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति विशेष है जिसका खेत है और उसके खेत में जमीन है और वो स्वयं अपना तालाब बनाना चाहता है, तब क्या कोई फॉर्मेलिटी शासन के तौर पर करनी होगी?
0: हाँ सर, जैसे कि अगर इस ये योजना है हमारी, ये सभी जाति के वर्ग के जो लोग हैं सभी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें स्वयं की भूमि में तालाब बना सकते हैं वो
1: जी।
0: वो मैंने आपको भी बताया जैसे कि आधे हेक्टर से लेकर 2 हेक्टर तक बना सकते हैं, तो वो बना के आपको उनका जो भी जमीन का खसरा नक्शा होता है, आवेदन होता है, वो हमारे कार्यालय में जमा करते हैं, फिर हम उसका वेरिफिकेशन करते हैं। उनका सॉइल का परीक्षण होता है ग्वालियर से, वहाँ से जब सॉइल ठीक लगती है तो उसके बाद में हमारे उपयंत्री होते हैं वो उसका निरीक्षण करने जाते हैं, फील्ड ऑफिसर जाते हैं, देखते हैं कि वाकई में ये जमीन तालाब बनाने के लायक है कि नहीं है, वहाँ पर पानी की कैसी सुविधा है, लाइट की क्या सुविधा है, क्योंकि पानी होना बहुत आवश्यक है। अगर पानी कम मात्रा में रहेगा तो वो मछली जो है अच्छे से बढ़ नहीं पाएगी, प्रॉपर उसकी पूरी व्यवस्था होना चाहिए। जब वो हो जाता है तो वो उसका एस्टीमेट बना के तैयार किया जाता है, उस बेस से वो अपना तालाब का निर्माण कर लेता है, फिर जब उसमें जो भी मछली होती है या फीड होता है वो सब डालता है, उसके बाद में हम उसको सब्सिडी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
1: बाद में जब अगर निजी तालाब है तो उसमें फिर उसे कोई ज्यादा प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती होगी, अनुदान लेना है तो
0: हाँ,
1: रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी फॉर्मेलिटी करनी
0: हाँ
1: होगी। अब किसी किसान ने आपके यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराया, किसी ने लीज पर लिया और समूह ने लिया, तो मछली के दाने के लिए मतलब मछली के उत्पादन के लिए जो बीज लगता है वो, बाद में मछली के आहार के लिए, इन सब का प्रबंध में कुछ शासन की तरफ से मदद मिलती है?
0: जी बिल्कुल मिलती है। हमारे यहाँ भी हमारा एक पूरा प्रक्षेत्र है, हमारा मसीर प्रक्षेत्र यहाँ पर भगोरा पर है हमारा बना हुआ है, वहाँ पे बीज उत्पादन किया जाता है। तो जो भी किसानों को चाहिए होता है वो जब वो रेयरिंग कराते हैं बीज की अगस्त में, जुलाई अगस्त में, उस टाइम पे उनको हम बीज डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। और इसके अलावा जो हम इसमें से जो इनपुट्स होता है, इनपुट्स के लिए अनुदान देते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि वो खाद के लिए, उनका बीज के लिए, रेयरिंग कराने के लिए, सब के लिए हो रहता है, तो उनको बेनिफिट मिलता है उससे,
1: तो उनको बेनिफिट भी उस समय दिया जाता है।
0: बिल्कुल दिया जाता
1: अब
0: है। आर्थिक फिर अगर कोई समस्या आ गई है, मानो कि कोई आपदा आ गई है, जैसे कि बाढ़ आ गई है, कोई सूखा पड़ गया है, कोई स्थिति ऐसी आ गई है हमारे, प्राकृतिक आपदा है, तो उस समय भी उनका माफ कर दिया जाता है और उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं बहुत ज्यादा
1: कई तरह से। अब शिवपुरी की हम बात करते हैं, शिवपुरी जिले की।
0: हाँ जी।
1: शिवपुरी जिले में किस किस मछली का की संभावना ज्यादा है, यहाँ पर उसकी ग्रोथ ज्यादा है, जिससे मार्केटिंग और व्यवसाय किसान को अच्छा मिल सके?
0: जी बिल्कुल, शिवपुरी जिले में अगर हम बात करें तो यहाँ पर रोहू कतला मृगल जो है उसकी डिमांड ज्यादा है, क्योंकि ये प्रोटीन न्यूट्रिशन लेवल बहुत हाई लेवल का होता है और इजिली ग्रो कर जाती है, ऐसी मछलियाँ होती हैं। इसके साथ साथ पंगीशियस जो मैंने आपको बताया, जो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, ये भी उभर कर एक सामने आई है हमारे पंगीशियस मछली, तो इनके लिए रोहू कतला मृगल जो है डिमांड ज्यादा है। तो किसान भाई, और मैं उनको भी कहना चाहूंगी, यहाँ जिस जगह जिसकी डिमांड ज्यादा हो उसी मछली का क्या है कि उत्पादन अच्छे से करें, मार्केट वैल्यू अच्छी मिलेगी, वही सारी चीजें हैं।
1: मछली को पकड़ने के बाद बाजार में बिक्री अपन अमूमन बाजार में जाते हैं जहाँ पर बिक्री हो रही होती है, तो किसान स्वतः भी बिक्री कर सकता है और मार्केट में बेच भी सकता है।
0: हाँ जी, इसमें क्या है, जो भी वो उत्पादन अपना कर रहे हैं तो वो उसको मार्केट में सेल्फ ले जाता है। यहाँ से जैसे मैं आपको बताया अभी जो केज कल्चर हमारे पचीपुरा में हुआ है, वहाँ से तो काफ़ी स्तर से आपके यूपी में और बाहर भी मछलियाँ भेजी जाती हैं, झांसी से इधर भी ग्वालियर साइड सब जगह जाती हैं, बहुत अच्छे स्तर पर वो कर रहे हैं वो लोग। और इसके लिए हम लोग सर ना शासन की तरफ से इंसुलेटेड वाहन, जो मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसके लिए हम उनको वाहन भी प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए जो इंसुलेटेड वाहन होता है फ्रीजिंग वाला, वो बॉक्सिंग वाला, उसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब हम उनको देते हैं, जिसमें वो पूरा फ्रीजिंग करके बाहर तक ट्रांसपोर्ट कर सकते
1: हैं। देते हैं
0: नो सर, इसमें क्या है कि वो राशि जो वो अपना वाहन खरीदते हैं, इसके बाद में हम उनको 25 लाख का जो भी होता है वाहन एक जो इंसुलेटेड होता है वो सारा सब्सिडी के तौर पर दे दिया जाता है।
1: यानी कि वाहन
0: ऑटो भी देते हैं सर, हम साइकिल भी देते हैं इसके, जो जैसे छोटे ग्रामीण लोग हैं तो वो कैसे ले जाएंगे बिक्री करने के लिए, तो हम उनको साइकिल प्रोवाइड करते हैं सर,
1: कैरी करने के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के साधन में भी सब्सिडी दी जाती है।
0: बिल्कुल दी जाती है सर।
1: अब ये बात भी है कि शिवपुरी जिले में लगभग कितने तालाब होंगे जिन पर जिनमें ये मछली का उत्पादन किया जा रहा है?
0: सर इसमें अगर हम शासकीय की बात करें तो शासकीय तो ग्रामीण है हमारे पूरे जिले में, जैसे कि 1050 के वो तालाब होंगे, ग्रामीण तालाब छोटे तालाब हैं, और जो बड़े आपके जनपद जिला के हैं वो आपके 30 के करीब हैं तालाब हैं, जिनमें से जिनका अभी वो लीज पर चल रहे हैं सारे 10 साल के लिए समितियों के पास में है वो तालाब, और जैसे ही उनका 10 साल पूरा हो जाता है रिन्यू कर दिया जाता है, वो समिति को दिया जाता है, एक तालाब के लिए एक ही समिति गठित होती है,
1: एक तालाब के लिए एक समिति गठित होगी, ये में एक प्रतिबंध है, मतलब एक तालाब में कई समितियां नहीं उतर सकते।
0: वो सर ये जो फॉर्मूला है लागू होगा हमारे मत्स्य महासंघ के लिए, यहाँ पर वाटर ये बहुत ज्यादा है उसमें होता है।
1: जैसे मणिखेड़ा की अगर हम बात करें,
0: जी मणिखेड़ा में क्या है ये मत्स्य महासंघ के अंतर्गत आ जाता है और इसमें 500 हेक्टेयर से ज्यादा का है ये तालाब, तो उसके लिए आप उसमें 2-3 समितियां उसमें काम कर सकती हैं। इसमें प्रति हेक्टर 4 हेक्टेयर जो है प्रति पर्सन के लिए रहता है, तो ऐसे करके आप उसमें 4-5 समितियां जो है इजीली काम कर सकती हैं।
1: बातों ही बातों में कई सारी चीजें उभर कर आई हैं। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना या यूं कहें मत्स्य संपदा योजना, इसमें और कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनका ध्यान जिनकी जानकारी हमारे किसानों को होनी चाहिए, हमारे सुनने वालों को होनी चाहिए?
0: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ये है कि एक पारंपरिक तरीके से जो कृषि कर रहे थे फिशरीज की, ये मॉडर्न तरीके से कर सकते हैं। इससे किसानों को क्या है कि जो कम आमदनी होती थी अब वो उसको आमदनी दुगनी कर सकते हैं, और इसमें जो पहले हमारे यहाँ परंपरागत रूप से बीज मतलब उत्पन्न किया जाता था, जैसे कि हमारे जो नदी वगैरह है वहीं किया जाता था, आज मॉडर्न तरीके से वो बीज भी कर सकते हैं, बीज बना सकते हैं, मतलब आपका प्रोड्यूशन कर सकते हैं, किसी भी सीजन में कर सकते हैं। पहले मौसम होता था कि हाँ रेनी सीजन में ही सीड का प्रोडक्शन करेंगे, वो इसमें हैचरियां बना बना के किसी भी सीजन में साल भर तक, जो मेन समस्या जो हमारे यहाँ सीड की है, क्योंकि सीड अवेलेबल नहीं होगा तो मछली पालन कहाँ हम संचयन करेंगे, कैसे उत्पन्न हो पाएगा, तो किसी भी मौसम में कभी भी वो अपना सीड को संचयन का हैचरी बनाकर उसमें सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं। और मैन ये है कि वो अपनी जो भी एक तालाब है या कहीं भी मत्स्य पालन कर रहे हैं तो उसमें सावधानियाँ बरती जाएँ। सबसे मैंने ये है कि आपका वहाँ पे पानी का स्तर कैसा है, वहाँ पे CO2 होना चाहिए प्रॉपर, जो प्रकाश की मात्रा तो अच्छी होना ही चाहिए, और जो वाटर है वो रेनिंग उसमें होना चाहिए, मतलब वो रिसर्कुलेट होता रहना चाहिए जैसे उनको ऑक्सीजन मिलती रहे। उसकी जो CO2 है उसकी हमको मॉनिटरिंग करना चाहिए, अगर कोई मछलियों में डिसीज़ हो गई है, कोई बीमारी हो गई है तो उसको हमका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह होते हैं वो सॉल्यूशन करके फिश को करके डालना चाहिए हमें, उनको फीड किस टाइम पर देना है ये भी हमको देखना चाहिए, क्योंकि एक फीड जो होता है वो बहुत मायने होता है।
1: भोजन तो हर एक के लिए है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो,
0: है ना, तो केयर जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे हम एक इंसान हैं और सब लोगों को केयरिंग की जरूरत होती है, इसी प्रकार से मछली जो है उसको भी बहुत केयरिंग की आवश्यकता है, उसको किस तरह का हम भोजन दे रहे हैं, उसको अगर कोई बीमारी हो गई तो उसका निदान कैसे कर रहे हैं, इन सब छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है।
1: वैसे ही वो जो कहानी, जो कविता है जो बचपन में सबने पढ़ी है कि मछली जल की रानी
0: जी,
1: है
0: जी,
1: हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, बहुत नाजुक प्राणी होता
0: हाँ,
1: है, उसकी केयरिंग की बहुत हमें ज्यादा जरूरत है। तो श्रीमती पूजा श्रीवास्तव जी, आप मत्स्य संपदा योजना से किसानों को लाभ, इस विषय पर आपने एक अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं हमारे किसान इस बातचीत को सुनकर लाभ ले सकते हैं, अपनी आमदनी को दुगना कर सकते हैं और भारत सरकार की और मध्य प्रदेश शासन की जो योजना है उसके तहत अपने आप को समृद्ध कर मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: थैंक यू सर।
2: भैया बहनों, अभी अपन सुन रहे थे मत्स्य संपदा योजना से किसानों को लाभ जी विषय पर बातचीत, और जी में जानकारी दे रही थी श्रीमती पूजा श्रीवास्तव, और जिनसे बता रहे थे अपन भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो भैया कितने अच्छी जानकारी,
3: बहुत अच्छी जानकारी है ना, और हमारे किसान भैया निश्चित तौर पर जानकारी से लाभ लेंगे। और अब
2: अपन भैया के लाने सुन पाते थे एक अच्छे बढ़िया से लोकगीत, तो सुनाते भैया जो गर्मी को लोग

0: भैया अभी अपन सुन रहे थे रंजना तिवारी पुरोहित को गाँव भाव जो लोकगीत, और भैया अपन जो उम्मीद कराते हैं कि अपन भैयान के लाने जो गीत पसंद आओ ये। और
1: रूही बहन अब जो गीत तो तुमने बहुत अच्छे सुनवा, अब हम चाह रहे हैं अपन किसान भैयान से थोड़ा सा अपन बातचीत और कर ले।
0: बस यही है कि जो गर्मी पड़ रही है तो अपन जामे अपन स्वास्थ्य को ध्यान रखें।
1: हाँ, और अच्छी बात कही आपने कि अब देखो भैया जो गर्मी को टाइम ऐसा

0: चल रहा होगा जामे, अगर हम तनक लापरवाही करेंगे ना खान पान की, तो निश्चित तौर पे कहीं हमें ऐसा ना हो कि बीमारी को सामना करना पड़े। तो जाकिलाने हमें चाहिए कि हम अपने खान पान पर ध्यान रखें, समय समय पे अपन ठंडी चीज़ें भी खा पीत रहें, ताकि क्या है कि बच्चन को भी ध्यान रखें, बिना धूप में बच्चन घाम में ना भेजें बाहर, और अगर भेज भी रहे हैं तो बिना अच्छे कपड़ा
1: पहना के रखे हैं पूरे आस्तीन वाले। और अगर जैसे कहीं वैसे तो बच्चन को निकाले ही नहीं, और कहीं जैसे ले जाना पड़ रहा है मजबूरी में, तो इनको सिर ढक के रखे, अपाओ भी सिर ढक के रखे, और भैया समय समय पर पानी पियत रहे,
0: और ध्यान रखें भैया खाली पेट बिना धूप में ना जाने दें।
1: हाँ, और भैया कहा है कि जो अपाए खाने में ऐसी चीजें इनको इस्तेमाल करें जो कि अपाए शरीर को ठंडो रखें।
0: बिल्कुल सही
1: है ना, और मौसमी फल खाएं।
0: बिल्कुल सही
1: है ना, और अपाए खान पान को विशेष रूप से ध्यान रखें। और भाई
0: साथ में कहा है कि जो पानी हम पी रहे हैं बा को भी ध्यान रखें कि पानी साफ स्वच्छ होना चाहिए, छनो पानी पिलाएं, जैसे कहा है हैजा जैसी बीमारी ना हो सके।
1: और भैया अब आप कार्यक्रम को समय पूरा चलो है, अब हो रही चलवेगी बेला, सो आप सगाई भैया बहन से ले लेते हैं आज्ञा, तो रूबी बहन
0: और सगाई भैया का आज्ञा दे।
1: राम राम, जय जवान जय किसान।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को

0: आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि
1: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
3: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: धन्यवाद आपका।
3: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूँ, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूँ। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
4: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूँ। मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला। उनको बहुत बहुत बधाई।
3: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा हैं, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
4: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और यह भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी, चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है। और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
3: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं, अपने शिवराज से बात कर रहा हूँ। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
4: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा ना चुनाव की बात, ना मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात, यही तो अपनापन है।
3: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
4: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
3: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
4: देखिए, एक तो संकट है
3: जिसको इतिहास याद रखेगा,
4: 25 करोड़, देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि यह दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी, कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय

0: कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब किसान महिला नौजवान सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगी सरकार। मन के बहलाने
0: को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
0: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पकाओ, पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है।
0: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई। दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। CBI को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
0: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की, भरने की कोशिश की गई।
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
0: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
1: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन को?
0: हकीकत तो यही, जनता जान देखिए, हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, NDA शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
0: नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
1: नहीं लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
0: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूँ
1: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इंपोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी, कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है, निरंतर काम राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगह लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या LPG के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
0: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों और अपील की उन कई लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूँ तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, अब एक के बाद एक कदम के बारे में सोची। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूँ। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
0: तत्काल देखिए, मैं तो उनकी हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे। और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता है, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूँ और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं। तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम 3 मंत्री एक साथ गए थे।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़े लक्ष्य हमारे। एक, देश की खाद्य सुरक्षा में सुनिश्चित करना है। दूसरा, पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इसलिए AI का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे AI के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
0: हमने अलनीनो की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण हैं, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये एआई का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो एआई के ऐसे अनेकों उपयोग हैं जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने एआई के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया है। उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी। अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी एआई की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे, इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है, तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहाँ पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहाँ कम संभावना है, कहाँ ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है। उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुदैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
0: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश उसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूँ, जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूँ, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूँ। और वो चीज़ मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक, हम सबको भी एक सीख दी चरे वेती के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
3: मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है। और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय। तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
4: धन्यवाद।
3: भारत किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाहन गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएं, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहाँ से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की जिसपे हम काम कर रहे हैं, वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज़्यादा बेहतर हैं, उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सब को अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे, हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
3: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहाँ किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं, और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने भी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे, और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
4: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा बिहार विश्वविद्यालय चल रहा है जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
3: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेन जी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
4: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए, जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के नेताजी के नाम से द्वीप हुआ, जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल है या जो पुरातत्व स्थल हैं उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ ARVR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे जो हमारे यूथ हैं हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है, ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ और डॉकयार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी, तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान का ज्ञान की प्राप्ति होगी उससे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
3: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेन जीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी और अपने ही सभ्यता अपनी ही संस्कृति अपने ही इतिहास से हम वंचित थे, और आज जब आप इस दौर में है संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खास कर जब भारत की वो पुरानी धरोहर है वो मूर्तियां वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
4: देखिए, मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है, मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है जिसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है बल्कि भारत के सभी मिशन्स, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशन्स, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहां भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
3: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेन जी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था महिलाओं के लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारे दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
4: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली, जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, और इसको हम सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करें, बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिले।
3: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
5: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष साइंस एंड टेक। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में कश्मीर की कली फिल्म का गीत। SH बिहारी के बोल हैं और संगीत OP नैयर का।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ में ममता फिल्म से। मजरू के बोल हैं और रोशन का संगीत।

मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गुमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करती हुई एक समंदर में जाकर मिल जाती है।

0: आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी, वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण

0: और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
1: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से ये जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
7: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
8: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
9: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
8: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
10: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
8: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार

0: तक 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं, प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को तहरीक देती रहेगी, जबकि बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मरकज, आसाम और नागालैंड की हुकूमतों ने खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के सिलसिले में एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत ने उमान के साहिल के नज़दीक तेल के एक जहाज पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाहों की जानें तलब हो गईं। उसने अमरीका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलिया ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और आज रात फीफा आलमी कप 2026 शुरू हो रहा है। मैक्सिको के स्टेडियो एस्टिका में पहले मैच में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक ऐसे वक्त जब दुनिया की बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल और इक्तिसादी चैलेंजों का सामना है, भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को लगातार तहरीक दे रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने खुद किफालत के तईं मुल्क के अज़्म को मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत को उजागर किया और दुनिया की बेहतरीन अमल आवरियों, बिलखसूस काबिल तजदीद तवानाई के शोबे के तौर तरीकों को इख्तियार करने और उन पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि अब जबकि भारत विकसित भारत के तसव्वुर की ताबीर की हुसूलियाबी की जानिब पेशरफ्त कर रहा है, मरकज और रियासतों की इज्तिमाई जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वजीर आजम ने रियासतों से जोर देकर कहा कि वो एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट की स्कीम पर तवज्जो मरकूज करें और इसके ताल्लुक से बरामदात के लिए मौजू हिकमत अमली तैयार करें। उन्होंने दिफाई मैनुफैक्चरिंग के शोबे को एक उभरता हुआ सेक्टर करार दिया, जिसमें भारत अपनी इम्तियाजी शनाख्त कायम कर रहा है, और रियासतों को तरगीब दी कि वो इस तरक्की से रूनुमा होने वाले मौके से फैज उठाने के लिए पॉलिसियां वजा करें। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन

अशोक कुमार लहरी ने आज कहा कि नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल में 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने की गरज से बुनियाद के तौर पर एक हुनरमंद और बाइख्तियार आबादी तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की गई। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मीटिंग के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब लहरी ने कहा कि विकसित भारत एट द रेट 2047 के लिए शमूलियाती इंसानी फरोख के मौजू पर तबादला ख्याल में तमाम 28 रियासतों के वज़राए आला ने शिरकत की। इसमें तालीम, सेहत, देखभाल और रोजगार जैसे कलीदी शोबों का अहाता किया गया। जनाब लहरी ने कहा कि नीति आयोग ने वज़राए आला के बामकसद नजरियात और उनकी मुतालिका रियासतों में किए जा रहे काम से इस्तेफादा किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने इस मीटिंग से तफसीली खिताब किया और इस बात पर जोर दिया कि एक बेहतर तालीम याफ्ता और हुनरमंद आबादी भारत की तरक्की के लिए लाजमी है। मगरबी एशिया के बहरान से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब लहरी ने कहा कि वजारत खारजा सूरत हाल को मुनासिब तरीके से हैंडल कर रही है, जबकि अफरादी कुव्वत की तरक्की पर मरकूज तवज्जो में कोई तब्दीली नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि तबादला ख्याल के दौरान शमसी तवानाई, जोहरी तवानाई और मैनुफैक्चरिंग पर भी खास तौर पर तवज्जो दी गई। नीति आयोग के रुकन राजीव गौबा ने कहा कि तबादला ख्याल में एक और कलीदी शोबा मंसूबा बंद शहरकारी था। उन्होंने वादे किया कि नीति आयोग मुल्क में शहरी हुक्मरानी की काया पलट की गरज से एक एजेंडा तैयार करने के सिलसिले में मुख्तलिफ वजारतों के साथ काम कर रहा है। मरकज और आसाम और नागालैंड की हुकूमतों के दरमियान आज एक सह फरीकी मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए ताकि आसाम नागालैंड सरहद पर खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार की सहूलियात शुरू की जा सकें। इस माहदे पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के वजीर आला निफियो रिव्यो की मौजूदगी में नई दिल्ली में दस्तखत किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने इस माहदे को एक तारीखी कदम करार दिया जो तआवुन पर मबनी वफाकियत और कौमी मफाद के जज्बे का मजहर है। उन्होंने कहा कि इस कदम से खित्ते में तेल और गैस की तलाश को खातिर खा फरोग मिलेगा और इस तरह भारत की तवानाई की यकीनी फराहमी को इस्तेहकाम मिलेगा और दरामदात पर इन्हिसार में कमी आएगी। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि इससे शुमाल मशरक में अमन और इस्तेहकाम में भी बेहतरी आएगी, इससे सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए साजगार हालात पैदा होंगे। भारत ने आज अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया और ओमान के साहिल के करीब पालाउ झंडे के हामिल टैंकर एमटी सेटबेलो पर हुए हमले के सिलसिले में सख्त एहतजाज दर्ज कराया। इस हमले में 3 भारतीय बाशिंदों की जानें तलब हुई हैं। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने खित्ते में जहाजरानी पर जारी हमलों को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया और कहा कि इसका ताल्लुक जारी तनाजे से है। उन्होंने इस तरह के वाकयात पर फौरन रोक लगाने पर जोर दिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बहाल करने की गरज से मुजाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया। खलीजी डिवीजन के एडिशनल सेक्रेटरी असीम आर महाजन ने कहा कि हुकूमत मगरबी एशिया की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए है और भारतीय मिशनों से 24 घंटे हेल्पलाइन चलाई जा रही हैं और ये मिशन मकामी हुक्काम के साथ तालमेल कायम किए हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एमटी मैरीवैक्स पर सवार अमले के सभी 24 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया है और उनके जल्द ही भारत वापस आने की उम्मीद है। इस जहाज को इस माह की 8 तारीख को ओमान के साहिल के नजदीक निशाना बनाया गया था। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी रास्तों की वजारत में एडिशनल सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने कहा कि एमटी सेटबेलो से बहिफाजत निकाले गए अमले के 21 भारतीय अफराद महफूज हैं, जबकि हलाक होने वाले 3 मल्लाहों के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि एमटी जलवीर पर सवार अमले के सभी 22 भारतीय अफराद महफूज हैं और उन्हें बहिफाजत निकालने की कोशिशें जारी हैं। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि कीमियावी खाद और ईंधन की सप्लाई मुस्तहकम रहेगी, इसका खातिर खाद जखीरा दस्तियाब है और मुल्क की रिफाइनरीज अपनी ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश के साथ काम कर रही हैं। शहरियों से जोर देकर कहा जाता है कि वो घबराहट में खरीदारी से गुरेज करें।
وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 14 تاریخ سے فرانس اور سلوواکیا کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں جہاں وہ G7 سمٹ میں شریک ہوں گے. آج سے پہر نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ یہ انتہائی ثمر آور اور وسیع تر معاملات پر مشتمل دورہ ہوگا. انہوں نے مزید بتایا کہ اس دورے میں فرانس کے 3 مقامات نائس، ایویان اور پیرس شامل ہیں. سیکرٹری موصوف نے بتایا کہ

0: इस दौरे से वजीर आजम को G7 समिट में शरीक होने वाले आलमी लीडरों के साथ भारत नीज आलमी जुनूब के लिए अहमियत के हामिल मामलात पर तबादले ख्याल का मौका मिलेगा। हुकूमत ने इथेनॉल मिले पेट्रोल की कई किस्मों पर एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म कर दिया है। एक नोटिफिकेशन में मरकजी वजारत खजाना ने ऐलान किया है कि 22%, 25%, 27% और 30% इथेनॉल मिले पेट्रोल को मरकजी एक्साइज ड्यूटी से मुस्तस्ना कर दिया गया है। वजारत ने कहा है कि ईंधन की इन चारों किस्मों पर अब कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी होगी। इस इकदाम का मकसद भारत के इथेनॉल मिले ईंधन के प्रोग्राम को मजबूत करना है, जिसका मकसद दरामद किए गए खाम तेल पर इन्हिसार में कमी करना, कार्बन अखराजात में तख़फीफ करना और मुल्क में ही तैयार किए गए इथेनॉल की मांग को बढ़ाना है। ये आकाशवाणी है। इत्तिलात नशरियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो ने आज जयपुर में वाकई आकाशवाणी की इमारत में मुनक्किदा एक प्रोग्राम के दौरान राजस्थान के जैसलमेर में रामगढ़ के मकाम पर वर्चुअल तरीके से 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। इस इजाफे के साथ रियासत में FM ट्रांसमीटरों की कुल तादाद बढ़कर 39 हो गई है। नए ट्रांसमीटर से सरहदी इलाकों के 80 किलोमीटर के दायरे में रेडियो नशरियात सुनी जा सकेंगी, जिससे लोगों को वसीतर मालूमात, तालीमी मवाद और तफरीही प्रोग्रामों तक रसाई हासिल होगी। इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए मरकजी वजीर वैष्णो ने कहा कि मुल्क के पूरे सरहदी इलाकों में कश्मीर से लेकर कच्छ तक आकाशवाणी और दूरदर्शन की कवरेज को मुस्तहकम करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत नए FM ट्रांसमीटर और नशरियाती बुनियादी ढांचे की तामीर की जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भारत में सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर फराइज अंजाम देने पर मुबारकबाद दी है, जो कि मुल्क के जमहूरी सफर में एक तारीखी संगे मील है। सोशल मीडिया की एक सीरीज में शेख मोहम्मद ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जदीद भारत की तारीख में हुकूमत के मुंतखब सरबराह के तौर पर सबसे तवील मुद्दत तक खिदमत अंजाम देने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने भारत की क्यादत करने में जनाब मोदी की मुसलसल कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और हालिया बरसों में मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के दरमियान ताल्लुकात में नुमाया पेशरफ्त को उजागर किया। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रुनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बा इख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदामात किए हैं। आकाशवाणी की खबरों का शोभा खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम गरीबों की बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गरीबों की बहबूद और समाजी तहफ़ुज़ को मुस्तहकम करने के लिए बहुत सी अहम स्कीमें नाफिज की हैं। गरीब के लिए मकान मोदी हुकूमत की तवज्जो का अहम शोबा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत रियासतों को 4 करोड़ से ज्यादा मकानात देही इलाकों में इक्तसादी तौर पर कमजोर कुनबों के लिए सौंपे गए हैं। गजा की यकीनी फराहमी के शोबे में हुकूमत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुल्क भर में 81 करोड़ से ज्यादा मुस्तफिदीन को मुफ्त अनाज फराहम कर रही है। आकाशवाणी इसी दौरान PM सेवा निधि स्कीम के तहत अभी तक खांचा फरोशों को 1,12,00,000 से ज्यादा कर्ज फराहम किए गए हैं। भारत के समाजी तहफ़ का अहाता जो 2015 में 19% था, इसमें तेजी के साथ इजाफा होकर 2025 में 64% से ज्यादा हो गया है। आकाशवाणी से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़े हमलों से खबरदार किया है और उसने मुतनब्बे किया है कि वो ईरान के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के अहम हिस्सों का कंट्रोल हाथ में ले लेगा। इस तरह मगरबी एशिया में कशीदगी और ज्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान पर इंतहाई सख्त हमला करेगा और बिलाखिर तवानाई के अहम असासों का कंट्रोल हासिल कर लेगा, जिसमें खर्क जजीरे का ऑयल टर्मिनल शामिल है। ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब अमरीका और ईरान लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इधर ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत, बहरीन और उर्दुन में निशाना बनाकर जवाबी हमले किए और इस तरह खित्ते में

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्मों से ली गई कुछ खूबसूरत गजलें। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं उमराव जान फिल्म से ली गई गजल आशा भोसले की आवाज में। कलाम है शहरयार का और धुन बनाई है खयाम ने। आइए सुने इस प्यारी सी गजल को।

आइए अब सुनते हैं भूपिंदर की आवाज़ में बशर नवाज की लिखी हुई गज़ल। तर्ज बनाई है ख़याम ने और फिल्म का नाम है बाजार।

जगजीत सिंह की आवाज में आइए अब सुनते हैं सरफरोश फिल्म से ली गई गजल। बोल है निदा फासली के और सुरों में ढाला है जतन ललित ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह के संगीत से सजी हुई गजल फिल्म अर्थ से। आवाज़ है चित्रा सिंह की और कलाम है इफ्तिकार इमाम सिद्दीकी का।

कार्यक्रम में अगली गजल हमने ली है फिल्म निकाह से। गुलाम अली की आवाज़ है और संगीत भी गुलाम अली का। कलाम हसरत मोहानी का। आइए सुने ये खूबसूरत गजल।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में अदालत फिल्म से ली गई गज़ल। शायर है राजेंद्र कृष्ण और तर्ज बनाई है मदन मोहन ने।

इस खूबसूरत गज़ल के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10 बज चुके हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में मैं अनुराधा अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित और उनका पूरा परिवार सुनना चाहता है नमक हलाल फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में। अनजान का लिखा हुआ ये गीत है और धुन बनाई है पप्पी लहरी ने। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये प्यारा सा गीत।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में आइए अब सुनते हैं फिल्म हसीना मान जाएगी का ये प्यारा सा गीत। बोल हैं जावेद अख्तर रुमानी के और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीमा बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सलिया, शुएब खान, पोतरा मुजताबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाद अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। और एक और पत्र है हमारे हाथ में जिसे भेजा है गौतम नगर नादेंड से प्रभाकर जोतले और आरती जोतले ने। तो आइए सुनते हैं ये पसंद का गीत।

रिंडी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दंतरेगी से भागवत वर्मा, और एक और पत्र मिला है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा का। हमारे सभी श्रोता सुनना चाहते हैं अभिमान पिक्चर फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में मजरू की बोल है और तर्ज बनाई है एस टी बर्मन ने।

कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पाकिजा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, मजरूह की बोल हैं और संगीत गुलाम मोहम्मद का। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे श्रोता विद्यानगर तेंदुखेड़ा ज़िला दमोह से ओम प्रकाश नीमा, श्रीमती किरण नीमा, आकाश, विकास, नंदनी और पूरा नीमा परिवार, और फरमाइश भेजी है बनियाबारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही, पूजा, छुटकी, शरद, अमित, लक्की, श्रेया, पूनम वाधवानी और पूरा माखीजा परिवार।

गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचालिया, प्रियंका पंचालिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचालिया। हमारे सभी श्रोता सुनना चाहते हैं सुर फिल्म का गीत लकी अली और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। निदा फाजली के बोल हैं और संगीत से सजाया है MM करीम ने।

इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए सुनिए रहमत अली खान का सरोद वादन। राग है रागी श्री। तबले पर संगत की है सलीम अल्लाह वाले ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे रहमत अली खान का सरोद वादन, राग था रागीश्री। तबले पर संगत कर रहे थे सलीम अल्लाह वाले। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में अगला प्रसारण दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार